0: करें, आओ सभी मिलकर योग करें। जी हाँ, जिसमें आपको सभी प्राणायामों की समुचित जानकारी व योग अभ्यास के साथ साथ करते हुए सभी आसनों को भी कराया जाता है और साथ में अष्टांग योग को भी विस्तार रूप से बताया जाता है। तो सुनना ना भूले रोजाना सुबह 6 से 7 अपनी आरजे समता के साथ। जी हाँ, योगशाला।
1: सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योगपाशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियां बहुत प्रचंड रूप अपना ले चुकी हैं। बारिश भी है लेकिन गर्मियों ने अपना पूरा प्रारूप दिखाई दिया है। तो आइए गर्मियों में कुछ ऐसे प्रिकॉशंस जो कि हम हमेशा से आपके लिए लेते आए हैं और आपको बताते आए हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कि गर्मियों में हम अपने आप को कैसे हाइड्रेट रखें, हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट कैसे रखें, हम अपने मूड को किस तरीके से अच्छा रखें। तो सबसे पहले तो जितना हम सर्दियों में खा लेते हैं, पी लेते हैं, वही उसका जो असर है ना, वो गर्मियों में निकलता है। मैं बताऊं कैसे। सर्दियों में हम जितना गर्म चीजों का सेवन करते हैं उसी का असर उतनी ही स्वेटिंग हमें गर्मियों में होती है। लेकिन गर्मियों में हमने जितना पानी पी लिया होता है, सर्दियों में अगर हम पानी नहीं भी पीते हैं तो काम चल जाता है। आपने एक उदाहरण के रूप में आपको समझाने जा रही हूँ। जैसे आपने ऊंट के बारे में सुना होगा, ऊंट को कहा जाता है कि वो 1 महीना लगातार पानी पीने के बाद में वो 3 महीने पानी नहीं पीता है। यानी उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो 3 महीने तक उस पानी को स्टोर करके अपने अंदर रह सकता है। इसीलिए उसे रेगिस्तान का राजा कहा जाता है। ठीक ऐसे ही हम मनुष्यों में भी ये चीज पाई गई है। सर्दियों में अधिकतर लोगों को प्यास कम लगती है सर्दी के कारण से या फिर ज्यादा ऑयली खाने से। लेकिन गर्मियों में जस्ट इसका अपोजिट होता है। पानी की प्यास बहुत लगती है, पसीना हमारे बॉडी से निकलता है। इसका मतलब होता है कि हमें पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो जो हमने खाया होता है गर्मियों में गर्म चीजें, वो पसीने के रूप में निकलती हैं। लेकिन जो हमने पानी पिया होता है वही पानी स्टोर हो करके हमें सर्दियों में हाइड्रेट रहने के लिए काम में आता है। इसीलिए गर्मियां हैं तो पानी का महत्व आज हम आपके लिए बताने आए हैं। गर्मियों के मौसम में हमारे शरीर में पसीने के रूप में बहुत सारा पानी और खनिज तत्व जैसे मिनरल बाहर निकल आते हैं। ऐसे समय में पानी केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं होता है बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन जाता है। योग और सही मात्रा में पानी का सेवन मिलकर शरीर को अंदर से संतुलित रखते हैं। जैसे शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने के लिए ये सबसे ज्यादा मदद करता है। जिन लोगों को हमेशा से थकान, कमजोरी एंड डिहाइड्रेशन होता रहता है, उसके लिए पानी पीना अति आवश्यक हो जाता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जरा सा कुछ हैवी खा लिया, जरा सा कुछ ऑयली खा लिया तो पेट खराब हो जाता है। ये अधिकतर उन लोगों को होता है जो गर्मियों में पानी कम और खाना ज्यादा खाते हैं। पाचन तंत्र को हमेशा से बेहतर बनाने के लिए भी पानी का सेवन हमें जरूर करना चाहिए। जिन लोगों को लगता है हमारी स्किन हमेशा से जवां रहे, हम 45, 46, 47 की एज में भी 25 के लगे, तो उन महिलाओं को भी पानी की मात्रा को अपने जीवन में बढ़ा देना चाहिए जिससे हमारी स्किन में निखार और ताजगी हमेशा बनाए रखता है। मांसपेशियों और जोड़ों के सही कार्य में ये सहायक होता है। अब आते हैं योग के दौरान शरीर में ऊर्जा बनाने रखने के लिए भी पानी का महत्व। योग को करते करते यदि हमें प्यास लग जा रही है, योगा को करते करते अगर हमें बीच में पानी की प्यास लग जा रही है, तो थोड़ा सा विश्राम करके हम पानी ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण की बात यह है कि योग के साथ साथ पानी को भी हमें अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। योग करने से लगभग 20 से 30 मिनट पहले थोड़ा सा पानी पी सकते हैं एंड योग के तुरंत बीच में पानी बिल्कुल ना पिए, थोड़ा सा बचे। योग समाप्त करने के बाद धीरे धीरे पानी पिए। बहुत ठंडा पानी तुरंत पीने के बजाय सामान्य तापमान का पानी बेहतर रहता है। गर्मियों में हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए एक छोटे से योगासन है, जिसको करने से साथ ही साथ हमें पानी को पीने से बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहले सूर्य नमस्कार। पूरे शरीर का व्यायाम एक सूर्य नमस्कार के माध्यम से हो जाता है, शरीर में ऊर्जा और लचीलापन बढ़ाता है। दूसरा आता है ताड़ासन। शरीर का संतुलन सुधारता है और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। फिर उसके बाद आता है भुजंगासन, पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में सहायक होता है। और उसके बाद आता है वज्रासन, भोजन करने के बाद किया जाने वाला सबसे आसान यह आसन होता है, जो पाचन में मदद करता है। उसके बाद आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे हमने आपको कई बार बता के रखा है कि मन को शांत करता है, श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है। शीतली प्राणायाम, जो बिल्कुल भी, ये मैं आपको बता दूं कि इतना ज्यादा आवश्यक होता है गर्मियों में, जिसको करने से गर्मी में शरीर को ठंडक और मानसिक शांति देने वाला यह प्राणायाम माना जाता है। सुबह उठकर सामान्यता से पानी पिएं, फिर हल्का योग और प्राणायाम करें, ये एक स्वस्थ दिनचर्या होती है। दिन भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी लेते रहें और अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज ना करें, प्यास, थकान, कमजोरी। यदि आपको याद न रहे तो थोड़ा सा अपने लिए सचेत हो जाएं, यानी कि टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी शरीर की जरूरत है और योग शरीर व मन का संतुलन, दोनों का साथ गर्मियों में हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रसन्न बनाए रखता है। ऐसे ही बहुत सारी जानकारियों के लिए हम फिर से मिलेंगे एक नए योग सीरीज में। तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो गर्मी का समय है, तापमान है, ये भीषण गर्मी आ चुकी है और इसमें जो भी लोग नित नियम योगा करते हैं उनके लिए थोड़े से प्रिकॉशन करना जरूरी है, क्योंकि जब हम योगा करते हैं तो हमारी बॉडी ऑलरेडी फिट से हीट होने लगती है, जिसके कारण से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसीलिए गर्मी में किए जाने वाले योग भी कुछ अलग हैं और उनसे कुछ सावधानियां भी, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले है सुबह जल्दी उठ करके ही योग कर लेना चाहिए, जैसे सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच योग करना सबसे अच्छा समय माना गया है। इस समय मौसम ठंडा होता है और हमारा शरीर भी फ्रेश रहता है। शरीर को हाइड्रेट रखें, योग से पहले और बाद में पर्याप्त पानी पिएं। नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ भी फायदेमंद होता है, लेकिन ध्यान रखें योग करने के तुरंत बाद नहीं, थोड़ा सा समय का अंतराल 20 मिनट 25 मिनट के बाद में आप नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ ले सकते हैं। दिन में सुबह रात में हल्का ही भोजन करें। योग से पहले भारी या तला भुना खाना न खाएं। फल, सलाद और हल्का भोजन ही लें। कूलिंग योगा करें, जैसा कि बहुत सारी सीरीज में हमने आपको बताया है, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, बालासन, शवासन, ताड़ासन, ये सारे वो प्राणायाम और आसन हैं जो गर्मी में हमारे पूरे शरीर को ठंडक पहुंचा करके फायदा करते हैं। साथ ही साथ कॉटन के हल्के कपड़े और शरीर को ठंडा रखते हैं और पसीना जल्दी सूखता है, इसीलिए गर्मी के दिनों में जब हम योग करते हैं तो ढीले और सूती कपड़े ही पहनने चाहिए। खुली और ठंडी जगह ही चुनें योग करने के लिए, हवादार कमरे या फिर पेड़ पौधों वाली शांत जगह पर ही बैठ करके योग करें। ज्यादा कठिन योगासन से बचें, तेज धूप या बहुत ज्यादा मेहनत वाले आसन गर्मी में थकान चक्कर ला सकते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, ये थोड़े से हैवी आसन होते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं और पूर्ण रूप से इसे कर रहे हैं और इसको करने के बाद में कोई भारीपन या चक्कर नहीं आ रहा है, तो ही आप नियमित रूप से इसको अपनी दिनचर्या में ला सकते हैं, वरना आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। योग के बाद तुरंत तेज धूप में न जाएं, कुछ देर आराम करें ताकि शरीर का तापमान सामान्य हो जाए। गर्मी में कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो और फायदेमंद होते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, जो मन को शांत करने के साथ साथ शरीर को भी ठंडा रखने में मदद करते हैं। गर्मी में योग करें शांत मन ठंडे वातावरण में, जिससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। योग से पहले चेहरा हाथ पैर को धो लेना चाहिए, जिससे शरीर को ठंडक मिलती है और आराम जल्दी मिलता है, और साथ ही साथ आलस भी कम होता है। ज्यादा देर खाली पेट ना रहें। पूरी तरह भूखे रहकर योग करने में कमजोरी महसूस हो सकती है। जरूरत हो तो आप सुबह एक केला या कुछ भीगे बादाम खा सकते हैं। नींद पूरी लें। कम नींद होने पर भी गर्मी में जल्दी थकान और चिड़चिड़ापन होता है। बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात, योग करने से पहले मेडिटेशन जरूर करें। ध्यान 5 से 10 मिनट ध्यान करने से मन शांत रहता है और स्ट्रेस कम होता है। सांसों पर ध्यान धीरे धीरे लगाएं, जैसे धीरे धीरे और गहरी सांस लेने से शरीर में ठंडक और ऊर्जा बनी रहती है। योग के तुरंत बाद ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए। सामान्य या हल्का ठंडा पानी शरीर के लिए बेहतर होता है। योग के बाद थोड़ा वॉक करना जरूरी होता है। यदि आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं तो अपने ही घर में छत पर या आगे कहीं पे भी आप अपने घर के आसपास थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, जिससे आपकी हल्की वॉक शरीर को रिलैक्स करती है और फ्रेशनेस भी देती है। गर्मी में ये चीजें आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरा, तरबूज, पुदीना, दही और नारियल पानी। तरबूज के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मार्केट से लेकर के आ रहे हैं तो तुरंत ही तरबूज को काट करके ना खाएं। उसे कुछ देर के लिए ठंडे पानी में या फिर किसी पानी नॉर्मल पानी में भी आप रख सकते हैं और उसके बाद ही आप उसका सेवन करें। ज्यादा चाय, कॉफी, जंक फूड, धूप में तुरंत एक्सरसाइज, बहुत टाइट कपड़े, इन सब चीजों से गर्मी में आप बच सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप जो आपका समर योगा रूटीन होगा वो होने वाला है 5 मिनट डीप ब्रीथिंग, 10 मिनट हल्के आसन, 5 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट मेडिटेशन और अंत में शवासन। योग केवल शरीर को नहीं मन को भी ठंडक देता है। इसीलिए इस दिनचर्या को हम पूरी गर्मी भर अपना करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है। योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सकें। और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। नमस्कार दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियों ने अपना रूप ले लिया है, यानी कि प्रचंड रूप में गर्मियाँ आ चुकी हैं। इसमें आप सभी को ऐसे योग आसन की जरूरत है जो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट के साथ में आपकी स्किन को भी एक तरोताजा रखे, क्योंकि ये कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और साथ ही साथ में जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा चेहरा खिल के आता है।

ठीक वैसे ही शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी जो कोशिकाएं हैं, उन्हें भी कभी न कभी व्यायाम की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला व्यायाम हम अपने चेहरे को करने के लिए एकाग्रचित होकर के कहीं भी ऐसे स्थान पर बैठ जाएं जहां पर आपको शांति का वातावरण मिले। सबसे अच्छा समय व्यायाम करने का होता है सुबह, क्योंकि उस समय हम अंदर से भी और वातावरण भी बहुत ज्यादा शुद्ध और इस तरीके से होता है कि आप सब कुछ नया और पहली बार देख रहे हैं। आंतरिक शक्तियों का ध्यान रखते हुए हम कई बार ये सोचते हैं कि हम अपने लिए क्यों नहीं समय निकाल पाते, हम अपने लिए क्यों नहीं जी पाते। तो आज अपने चेहरे को सबसे पहले तरोताजगी करने के लिए सबसे पहला प्राणायाम और व्यायाम। वैसे तो प्राणायाम की श्रृंखला में हमने कई बार प्राणायाम बताए हैं कि चेहरे के लिए, आंखों के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम और कपालभाति, जो कि हमारे पूरे शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी सुंदरता को बाहर निखारने में काम करता है। साथ ही साथ अनुलोम विलोम का समय, अनुलोम विलोम की गति और अनुलोम विलोम का सही उच्चारण करने से मैं आपको बताऊंगी कि समय आपको क्या होना चाहिए। समय आपका 5 से 6 मिनट होना चाहिए और उसको करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मन चित्त को शांत करके बैठ जाना होता है। साथ ही साथ में एक एक्सरसाइज आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि ये लड़कियों में बहुत ज्यादा समस्या पाई जाती है। कम उम्र में हो या ज्यादा उम्र में हो, लड़कियों के गाल जो पिचके होते हैं, पिचके इन द सेंस अंदर धसे होते हैं, उन गालों को और उभारने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने मुंह में पूरी तरीके से हवा भर लेनी है, जैसे आप कोई बैलून फुला रहे हो। पूरा मुंह में हवा भरने के बाद में 2 उंगलियों से अपने होठों पर रखें, टैप करें और फिर छोड़ें। टैप करें मतलब उसको दबाएं अपने फिंगर से अपने लिप्स को और फिर छोड़ दें। पहले दबाएं फिर छोड़ दें। ये करने से आपकी जो आंतरिक ग्रंथियां हैं, आपके चेहरे की ग्रंथियां हैं, वो खुलती हैं, जिसके कारण से जिनके भी चेहरे इस तरीके से डल होते हैं, गाल दबे हुए होते हैं, वो निकल के बाहर आते हैं और बहुत ही अच्छा सा एक चेहरा भी निखर के आता है। साथ ही साथ एक उंगली और अंगूठे की सहायता से, जैसे हम किसी को बाय बाय करते हैं, ठीक वैसे ही वो अंगूठा अंदर और 4 उंगलियां बाहर की तरफ खोल करके वो 4 उंगलियां दोनों हाथों की, दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखते हुए अंदर से बाहर की ओर खींचे। जिन लड़कियों को, जिन महिलाओं को रिंकल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि झुर्रियों की समस्या हो जाती है, यह प्राणायाम और आसन और एक्सरसाइज करने से समय से पहले झुर्रियां ठीक होती हैं। एक्सरसाइज 3, आपको क्या करना है, दोनों उंगलियों को, यानी कि 2 और 2 4, दोनों हाथों की उंगलियों को लेकर के अपनी आंखों के नीचे हल्के हाथों से बाहर से अंदर की ओर और अंदर से बाहर की ओर ले जाते हुए एक्सरसाइज करें। ये सारी एक्सरसाइज हमारे चेहरे की ग्रंथियों को ठीक करती है, उसे खुलने और उसे अच्छे से विकसित करने के लिए प्रभावित करती है। तो आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे टिप्स जो कि आप सुबह उठकर के अपने स्किन को और सुंदर बना सकती हैं। योग प्राणायाम और एक्सरसाइज करने के साथ साथ यदि आप इस टिप्स को भी अपनाएंगे तो आपका चेहरा बिल्कुल खिल करके आएगा। सुबह उठ करके सादे पानी की बजाय यदि हम चावल के पानी से मुंह धोएं तो हमारा चेहरा बहुत ज्यादा चमकने लगेगा। इसके कई फायदे हैं, आइए हम आपको बताने जा रहे हैं इसके फायदे। सुबह उठने के बाद ताजे पानी से मुंह धोना एक हेल्दी केयर रूटीन का हिस्सा है, लेकिन यदि हम स्किन हमारी ठीक नहीं है तो आपको स्किन से जुड़ी समस्याएं भी हैं, जैसे टैनिंग, झाइयां, झुर्रियां या कोई समस्या और हो रही है, तो सिर्फ सादे पानी से काम नहीं।

चलेगा। आजकल लोगों को स्किन से जुड़ी समस्याएं होना आम बात है और समय व जानकारी के अभाव में महंगे महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन कई बार प्रोडक्ट्स काम नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि कुछ मामलों में तो साइड इफेक्ट्स भी होने लगते हैं। ऐसे में देसी नुस्खे इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आइए हम बताने जा रहे हैं कि आपको सवेरे अपने स्किन को कैसे साफ करना है। स्किन के लिए चावल का पानी मानो रामबाण है। आप अपनी स्किन को हेल्दी रखने और निखार को बनाए रखने के लिए चावल के पानी का उपयोग कर सकते हैं। चावल के पानी में कई ऐसे खास तत्व पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को कई तरह से अलग अलग फायदे पहुंचाते हैं और कई बार डैमेज होने से भी बचाते हैं। जिस तरीके से सादे पानी से मुंह धोने के बजाय अभी हमने आपको बताया कि चावल का पानी हमारी स्किन केयर के रूटीन का सबसे पहला काम होना चाहिए, लेकिन अगर आप सुबह सादे पानी की बजाय पानी को यानी कि चावल को हम रात में भिगो दें और मॉर्निंग उठने के बाद में आपने अपनी फ्रेश होने के बाद में जब भी आपने कुछ खा पी लिया, अब आप फ्री हैं, उसके बाद में आपने उस चावल को छान लिया और वो पानी बहुत ही ज्यादा इतने ज्यादा तत्वों से मिलकर बना होता है जो कि आपकी सारी स्किन की प्रॉब्लम्स को दूर करता है। अगर आप धूप व पसीने के कारण स्किन टैनिंग होने लगी है, नेचुरल निखार जो है वो गायब होने लगा है, तो चावल का पानी चेहरे पर लगाने से समस्याएं दूर होने लगती हैं और नेचुरल निखार मिलने लगता है। साथ ही चावल के पानी के सही इस्तेमाल से ड्राई स्किन की समस्या भी दूर होती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सादे चावल के पानी के साथ साथ अगर आप ये दो चीजें उसमें मिला दें, फिर तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। चावल के पानी में आप अगर एक विटामिन ई कैप्सूल और थोड़ा सा गुलाब जल मिला दें और इसको कॉटन की सहायता से अपने फेस पे लगाने के बाद में 10 से 15 मिनट रखने के बाद इसको सादे पानी से धुल दें, आपकी स्किन मानो कि उसे एक औषधि मिल गई है। तो साथ ही साथ आज हमने उपयोग भी बताया है और बहुत सारी समस्याओं का निवारण भी। बहुत सारी ऐसी फेस की एक्सरसाइजेस आज हमने आपको बताई जो कि हमारे चेहरे की कोशिकाओं को खोलती है। चेहरे की कोशिकाओं को खोलने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम कोई महंगी महंगी चीजों में जाकर के एक्सरसाइज करें। हम सिंपल से अपने घर में भी बैठ करके ये सारी एक्सरसाइज और प्राणायाम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की प्रक्रिया में हमने अपने चेहरे की यानी कि समर स्पेशल चेहरे की योग और स्किन टिप्स हमने जाने। आगे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योगपाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। योगशाला में आप सभी के लिए हर बार कुछ न कुछ नया और कुछ न कुछ आप सभी के लिए बेहतर हम लेकर के आते हैं। जैसा कि शरीर को स्वस्थ कैसे बनाया जा सकता है, अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारा जा सकता है, साथ ही साथ हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी डिजीज, ऐसी बीमारियां जो अनचाहे में लग जाती हैं। अनचाहे का मतलब है हमें पता ही नहीं चलता है। उनका निवारण सिर्फ और सिर्फ आजकल सभी को पता है कि एक योग के माध्यम से बताया जाता है। आप सभी को पता है कि हम कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास चले जाएं, कभी ये होता है कि जब हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे अगर हमें कान में दिक्कत है तो हम कान के डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें आँख में दिक्कत है तो हम आँख वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें दांत में दिक्कत है तो हम दांत वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। पर आपने कभी ये सोचा है कि पूरे संपूर्ण शरीर का एक डॉक्टर मात्र एक आयुर्वेदिक उपाय और इलाज योग है। योग से जुड़ना हम सभी के लिए फायदेमंद और उपयोगी माना गया है। योग हम हर प्रकार से, हर समय और अपनी सुविधा अनुसार, जिस भी समय आपको लगे कि हमें योग की आवश्यकता है, आप आसन बनाकर कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे 12 ऋतुएं होती हैं, हर बार हर ऋतु अपना एक नया रूप लेके आती है। सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में ठंडक का एहसास, गर्मियां आती हैं तो गर्मियों में भीषण गर्मी, पसीना और चिपचिप होती है।
हर एक मौसम हमारे शरीर के लिए जिस तरीके से उपयोगी है, वैसे ही योग हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, चाहे हम अपने लिए या फिर अपनों के लिए योग से जुड़ना अति आवश्यक है। तो आज का जो टॉपिक है, हम जो योग एक साथ अभी सभी मिलकर करेंगे, वो है ऋतुओं के साथ योग का अभ्यास। यानी कि हर एक ऋतु के लिए, हर एक मौसम के लिए एक योग जुड़ा हुआ है। महीनों के हिसाब से हम आज आपको योग क्या है और किस तरीके से करना चाहिए और उन महीने में आपको क्या खान पान करना चाहिए, सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए महीने के हिसाब से, वसंत ऋतु फरवरी से लेकर के अप्रैल तक, ये मौसम इतना सुखद और इतना प्यारा होता है, जिसमें ना सर्दी होती है और ना ही संपूर्ण रूप से गर्मी। ये वो एहसास होता है जिसमें हम कुछ भी खा लें, कहीं भी घूमने चले जाएं, हमारा मन प्रसन्न होता है। हल्की ठंड के बाद सुखद समय, प्रकृति में एक नयापन दिखने लगता है और जैसे जैसे गर्मियां अपना प्रकोप करने लगती हैं, फिर से हम परेशान होने लगते हैं। हल्की ठंडी के बाद ये सुखद समय प्रकृति में एक नयापन तो लाता ही है, साथ ही साथ हमारे व्यक्तित्व, हमारे हृदय और हमारी खुशियों में भी एक नयापन लाता है। तो ये तो रहा मौसम की जानकारी। अब योग अभ्यास, हमें इस महीने में यानी कि वसंत ऋतु में फरवरी से लेकर के अप्रैल तक कौन सा ऐसा योग अभ्यास है जिसे करना चाहिए। फरवरी से अप्रैल के बीच में सबसे उपयोगी हमारे शरीर के लिए सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए हमने कई बार आपसे बात करी है।

अंधेरों से उजालों की ओर, भटकाव से सत्य की ओर और भ्रम से ज्ञान की ओर ले जाने वाली ये है पहली किरण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजी आकांक्षा। और आज की इस पावन सुबह में हम बात करेंगे उस संत की जिसने शब्दों से नहीं बल्कि सच्चाई से दुनिया को आईना दिखाया, जिनकी वाणी में सरलता थी पर अर्थ गहरे, जिनके दोहों में जीवन का सार छुपा है। जी हाँ, आज की पहली किरण समर्पित है संत कबीरदास जी को। कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई। ये कहते हैं कबीरदास जी। तो दोस्तों, आज की सुबह हम खुद से मिलने की कोशिश करेंगे, कबीर की नज़र से दुनिया को समझेंगे और अपने भीतर छुपे सत्य को पहचानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक शो नहीं, ये है आत्मा जो जगाने वाली है आपकी, हमारी, हम सबके भीतर की वो किरण जो कहलाती है पहली किरण।

संत कबीर दास जी का जन्म 1398 में हुआ और इनकी मृत्यु मानी जाती है 1518 में, यानी कि 15वीं सदी के एक महान भारतीय कवि, रहस्यवादी और समाज सुधारक थे हमारे कबीरदास जी। इन्होंने निर्गुण राम की भक्ति पर जोर दिया और जाति भेद, अंधविश्वास व आडंबरों का कड़ा विरोध किया। उनकी रचनाएं साखी, सबद और रमैनी, जो कि एक पुस्तक का जब उसको रूप दिया गया और नाम रखा गया बीजक, मुख्य रूप से सधुक्कड़ी भाषा में है, जो हिंदी साहित्य के भक्ति काल की ज्ञान मार्गी शाखा का हिस्सा है। इनके जन्म की बात की जाए तो माना जाता है 1398 में काशी के वाराणसी में इनका जन्म हुआ, लहर तारा तालाब के पास। जुलाहा दाम्पत्य नीरू और नीमा द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। स्वामी रामानंद इनके गुरु थे और मगहर में 1518 के आसपास इनकी मृत्यु हुई। और अगर इनके भाषा शैली की बात करें तो मुख्य रूप से इन्होंने सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है अपनी रचनाओं के लिए, और साथ ही साथ अवधी, पंचमेल, खिचड़ी, बोलचाल की भाषा को इन्होंने अपनाया है। चलिए इनके बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन उससे पहले इन्हीं के द्वारा रचित एक निर्गुण सुनते हैं।

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं पहली किरण भोरे भोरे की सुबह की, और उसमें आज हम बात कर रहे हैं संत कबीरदास जी की। तो इनकी अगर सिद्धांत और शिक्षाओं की बात करें तो ये निराकार ईश्वर को मानते थे, यानी निर्गुण भक्ति करते थे। कबीर ईश्वर को निर्गुण मानते थे, जो हर कण में व्याप्त है, ना कि केवल मंदिर या मस्जिद में। और इसके साथ में उन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और धर्म के नाम पर पाखंड का कड़ा विरोध किया। कबीर ने प्रेम, भाईचारे और सादगीपूर्ण जीवन पर जोर दिया। कबीर ने गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया। कबीर जी के कुछ प्रसिद्ध दोहे हैं जिनके अलग अलग रूप हैं। अगर मैं ज्ञान की महत्ता की बात करूं तो इनकी एक रचना है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। यानी सज्जन की जाति नहीं, उसका ज्ञान देखना चाहिए। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। इसी प्रकार इन्होंने जब प्रेम पर अपनी पंक्ति दी तो वो कुछ इस प्रकार थी, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। किताबें पढ़कर कोई ज्ञानी नहीं बनता, जो प्रेम के ढाई अक्षर पढ़ ले वही सच्चा ज्ञानी है। और सच में अगर आपकी जीवन में, आपकी लाइफ में प्रेम है ना, तो उससे आप सब कुछ सरल बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ज्ञान इनकी पिटारी से ज़रूर लेंगे, लेकिन उससे पहले ये निर्गुण।

जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कबीर दास जी की। तो कबीर दास जी ने ज्ञान प्रेम के अतिरिक्त और भी कई सारे विषयों पर अपनी बातें कही हैं। उनमें से एक और है, जी हाँ, हम सभी इंसान हैं ना, और इंसानों में सबसे बड़ी कमी पाई जाती है आचरण को लेकर। तो आचरण के बारे में कबीर दास जी का क्या कहना है, आइए आपको बताते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। जब मैंने दूसरों में बुराई खोजी तो कोई नहीं मिली, लेकिन जब मैं खुद के अंदर झांकने को चला तो मुझसे बुरा कोई नहीं दिखा। और ये बिल्कुल सत्य है। कहते हैं ना कि जब हम किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो उससे पहले चार उंगली हम पे खुद पे उठती है। तो बिल्कुल सही कहा हमारे कबीरदास जी ने। और किसी को कुछ भी कहने से पहले हमें खुद के अंदर झांक के जरूर देखना चाहिए। इसके अतिरिक्त इन्होंने सादगी का महत्व बताया है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसे बड़े होने का कोई फायदा नहीं जिससे किसी का भला ना हो सके। बिल्कुल, अगर आप बड़े हैं और अगर आप बड़े बनते हैं तो सच में बड़ा वही होता है जिसका हृदय विशाल हो, जिसकी सोच विशाल हो, जो दूसरों का भला करना जानता हो। चलिए फिलहाल के लिए एक निर्गुण सुन लेते हैं, इसी से जुड़ा हुआ।

जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं कबीरदास जी की, और इनका कहना है कि धर्म हमें जोड़ने के लिए बना है, लेकिन जब वही धर्म हमें बांटने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हम धर्म नहीं अहंकार निभा रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगा तोहे, यानी अंत में सब एक ही मिट्टी में मिल जाना है, फिर ये ऊंचा नीचा हिंदू मुस्लिम का भेदभाव किस बात का, सोचने की बात है। तो आप सोचिए, तब तक हम सुन के आते हैं प्यारा सा निर्गुण।

जी हाँ दोस्तों, आप शो सुन रहे हैं पहली किरण। आपने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो ज्ञानसली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। और आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, जी हाँ, आपके अपने भक्तिमय कार्यक्रम में, वो हैं कबीर दास जी। और कबीर दास जी की अगर मैं बात करूं तो उनके हर एक पहलू पे जिंदगी के बड़े ही चर्चे हुए हैं। और जो सबसे ज़्यादा चर्चित विषय और मुद्दा रहा है इनके जीवन का, वो थी इनकी मृत्यु। वो क्या थी, चलिए एक कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं। और ये कहानी कोई कहानी नहीं है, सत्य घटना पर आधारित कहानी है। जी हाँ दोस्तों, संत कबीर दास जी ने पूरी जिंदगी एक ही बात सिखाई, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का। लेकिन जब उनके अपने जीवन का अंतिम समय आया तो वही समाज जिसे उन्होंने जोड़ा था दो हिस्सों में बट गया। कहानी कुछ यूं है कि जब कबीर जी ने अपने प्राण त्यागे तो हिंदू अनुयायी बोले, हम उनका अंतिम संस्कार करेंगे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। और मुसलमान अनुयायी कहने लगे, नहीं, उन्हें दफनाया जाएगा इस्लामी तरीके से। बहस बढ़ने लगी, विवाद गहरा होने लगा। और वो संत जिसने जीवन भर भेद मिटाने की कोशिश की, उसके जाने के बाद भी भेद सामने खड़ा था। तभी एक चमत्कार हुआ। चमत्कार, वो चमत्कार आप विश्वास भी नहीं करेंगे। चलिए बताते हैं क्या हुआ। जब चादर हटाई गई तो वहां शरीर था ही नहीं, सिर्फ फूल का ढेर था। दोनों पक्ष शांत हो गए और समझ गए कि कबीर का अंतिम संदेश क्या था। फिर क्या हुआ, आधे फूल हिंदुओं ने लिए और आधे मुसलमान भाइयों ने, और दोनों ने अपने अपने तरीके से उन्हें विदाई दी। दोस्तों, कबीर जी ने जाते जाते भी यही सिखाया कि हम चाहे किसी भी धर्म से जन्म लें, लेकिन अंत में हम सब एक ही सच्चाई के हिस्से हैं। वो शरीर नहीं, विचार बनकर जीना चाहते थे, और शायद इसलिए वो फूल बनकर खुशबू बन गए।

दोस्तों, कबीर अंधविश्वास, व्यक्ति पूजा, पाखंड और ढोंग के विरोध में हमेशा आपको दिख जाएंगे। उन्होंने भारतीय समाज में जाति और धर्मों के बंधनों को गिराने का काम किया। वह हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी उप शाखा के महान कवि थे। इनकी रचनाओं ने उत्तर और मध्य भारत के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनकी रचनाएं सिखों के गुरु ग्रंथ आदि ग्रंथ के भीतर पाई गईं। वे एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराई की कड़ी आलोचना की। उनके जीवन काल के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों में उनका अनुसरण पाया जाता है। कबीर पंथ नामक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें मस्त मौला कहा। क्षिति मोहन सेन जी ने कबीर साहिब द्वारा लिखित मुख्य रूप से 6 ग्रंथ बताए हैं। पहला, कबीर साखी। इस ग्रंथ में कबीर साहिब जी साखियों के माध्यम से सुरता यानी आत्म को, यानी आत्मा को और परमात्मा को समझाने का प्रयास किया है। कबीर बीजक, कबीर की वाणी का संग्रह। उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नामक से सन 1464 में किया। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 में किया। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से पद्य भाग है। बीजक के 3 भाग हैं, जो कि है रमायणी यानी रामायण, चौपाई और दोहे का पद जो कि लिखित है ब्रजभाषा और पूर्वी बोली में, सबद ये गेय पद है जो कि ब्रजभाषा और पूर्वी बोली में ही रचित है, साखी यानी साक्षी पद जो कि दोहों में रचित है और इसकी भाषा की अगर बात करें तो राजस्थानी, पंजाबी, मिली खड़ी बोली। इसके अतिरिक्त कबीर

भागोदास और धर्मदास ने उनकी साहित्यिक विरासत को संजोया। कबीर के छंदों को सिख धर्म के ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित किया गया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संत कबीर के 226 दोहे शामिल हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल सभी भक्तों और संतों में संत कबीर के ही सबसे अधिक दोहे दर्ज किए गए हैं। क्षिति मोहन सेन ने कबीर के दोहों को काशी सहित देश के अन्य भागों के संतों से एकत्र किया था। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इनका अंग्रेजी में अनुवाद किया और कबीर की वाणी को विश्व पटल पर ले गए। हिंदी में बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी सहित अनेक विद्वानों ने कबीर और उनकी साहित्यिक साधना पर ग्रंथ लिखे हैं। वाकई बहुत महान हस्ती थी कबीर साहब। आइए चलते हैं इन्हीं के एक और निर्गुण की ओर।

जी हाँ दोस्तों, कबीर साहिब जी के यहाँ साधु संतों का जमावड़ा रहता था। कबीर साहिब जी ने कलयुग में पढ़े लिखे ना होने की लीला की, परंतु वास्तव में वे स्वयं विद्वान हैं। इनका अंदाज और इस बात का अंदाजा अगर आपको लगाना है तो उनके दोहों से आपको साफ साफ लग सकता है। जैसे मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, उन्होंने स्वयं ग्रंथ न लिखने की भी लीला तथा अपने मुख कमल से वाणी बोलकर शिष्यों से उन्हें लिखवाया। और कई दफा तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं ये ईश्वर के अवतार थे। आप इस बात का अनुमान इनकी मृत्यु की कहानी से बेशक लगा सकते हैं। अगर चमत्कार है नहीं, अगर वो ईश्वर थे नहीं, तो फिर इतना बड़ा चमत्कार हुआ कैसे? आपके समस्त विचारों में राम नाम यानी पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम देखा जाता है और इसकी महिमा प्रतिध्वनित होती है। कबीर परमेश्वर एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्म कांड के घोर विरोधी थे। मूर्ति पूजा, रोजा, ईद, मस्जिद, मंदिर, उनका विचार था कि इन क्रियाओं से आपका मोक्ष संभव नहीं। वे कहते हैं, हरि मोर पियो मैं राम की बहुरिया, तो कभी कहते हैं हरी जननी मैं बालक तोरा, और कभी बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। उस समय हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के लोग ही कबीर साहिब जी को अपना दुश्मन मानते थे, क्योंकि वे अपना एक तारा लेकर दोनों धर्मों को परमात्मा की जानकारी दिया करते थे। वे समझाते थे कि हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। उन्होंने अपनी भाषा सरल और सुबोध रखी ताकि वे आम आदमी तक पहुंच सके। कबीर साहिब जी को शांतिमय जीवन प्रिय था और वे अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। अपनी सरलता, साधु स्वभाव और संत प्रवृत्ति के कारण आज विदेशों में भी उनका समादर हो रहा है। कबीर साहिब जी सिर्फ मानव धर्म में विश्वास रखते थे। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहार, वाते तो चाकी भली पी सिखाए संसार, माया पापड़ी सब जग तो फांधे पड़िया गया कबीरा काटी। कबीर दास जी कहते हैं कि ये जो पापिनी माया फंदा लेकर बाजार में आ बैठी है ना, इसने बहुत लोगों पर फंदा डाल दिया है, पर कबीर उसे काटकर साफ बाहर निकल आए हैं। हरि भक्ति पर फंदा डालने वाला खुद ही फंस जाता है, ऐसा इनका मानना है। चलिए फिर एक और निर्गुण की ओर आगे बढ़ते हैं।

जी हाँ श्रोताओं, आप शो सुन रहे हैं भोरी भोरे का भक्तिमय कार्यक्रम पहली किरण, और अब बारी है उन प्रसिद्ध दोहों की जिससे चलते चलते हम कुछ ज्ञान लेके चलेंगे। वाकई बहुत कुछ है जो हम अपने जीवन में अगर कबीर दास जी के जीवन से उतार लें तो हमारा जीवन बहुत ही सरल और वाकई जीने लायक हो जाएगा। चलिए चलते हैं उन दोहों की ओर जो आज भी उतना ही जीवंत है जब ये लिखित हुआ था। कबीर हार चाम लहू न मेरे, जाने कोई सतनाम उपासी, तारन तरन अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। कबीर दास जी कहते हैं कि मेरा शरीर हड्डी और मांस का बना नहीं है, जिसको मेरे द्वारा दिया गया सतनाम और सार नाम प्राप्त है वो मेरे इस भेद को जानता है। मैं ही सबका मोक्षदायक हूँ तथा मैं ही अविनाशी परमात्मा हूँ। क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, एक लख पूत सवा लख नाती, उस रावण घर दिया न बाती। यदि एक मनुष्य अपने एक पुत्र से वंश की बेल को सदा बनाए रखना चाहता है तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। जैसे लंका के राजा रावण के 1,00,000 पुत्र और 1,25,00,000 नाती थे, वर्तमान में उसके कुल वंश यानी उसके वंशजों की अगर बात करें तो उसमें कोई भी उसके घर में इस वक्त दीप जलाने के लिए भी नहीं है, सब नष्ट हो गए। इसलिए हे मानव, परमात्मा

कबीर दास जी कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। यहाँ पर कबीर दास जी अपनी उपरोक्त वाणी के माध्यम से उन लोगों पर कटाक्ष कर रहे हैं जो लंबे समय तक हाथ में माला तो लेकर घूमते हैं पर उनके मन का भाव कभी नहीं बदलता, उनके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर जी ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन को सांसारिक आडंबरों से हटाकर भक्ति में लगाओ ताकि जीवन सरल हो सके। इसके अतिरिक्त मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुरी न लागे डारी। परमात्मा कबीर जी हिंदू और मुस्लिम दोनों को मनुष्य जीवन का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि मानव जन्म पाना बहुत कठिन है, ये शरीर बार बार नहीं मिलता, जो फल वृक्ष से नीचे गिर पड़ता है वह पुनः उसकी डाल पर नहीं लगता। इसी तरह मानव शरीर छूट जाने पर दोबारा मनुष्य जन्म आसानी से नहीं प्राप्त होता और पछताने के अलावा फिर कोई चारा नहीं होगा। इसलिए आप जब तक हैं सत्कर्म करें, लोगों का भला करें और अपने जीवन के साथ साथ सभी के जीवन में आनंद भरे। इसके अतिरिक्त इनका एक और दोहा है कि पानी केरा बुदबुदा, असमानस की जात, एक दिना छिप जाएगा ज्यो तारा प्रभात। कबीर साहिब लोगों को नेकी करने की सलाह देते हुए इस क्षणभंगुर मानव शरीर की सच्चाई लोगों को बता रहे हैं कि पानी के बुलबुले की तरह मनुष्य का शरीर क्षणभंगुर है, जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं वैसे ही ये देह भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो जब तक आप जीवित हैं सदाचार करें, सदाचरण अपनाएं और अपने जीवन को सुखद और सरल बनाएं और इस समाज में कुछ तो नेकी करके जाएं।

दोस्तों, आज की सुहानी सुबह में हमने संत कबीर दास जी के शब्दों में छुपे जीवन की सच्चाई और उसके अर्थ को महसूस किया। कबीर कहते हैं, काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। यानी जो करना है अभी करना है, खुद को बदलना है तो आज से ही शुरू करना है। जिंदगी की इस दौड़ में, इस भागा दौड़ी भरी जीवन में थोड़ा ठहर कर अपने भीतर झांकना है, क्योंकि असली शांति हमारे खुद के भीतर है, बाहर नहीं, आपके अंदर ही। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा, और अब लेती हूं आपसे विदा। लेकिन याद रखिए, हर नई सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद जरूर लेकर आती है। फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और एक नई रोशनी के साथ आपके अपने शो पहली किरण में। तब तक मुस्कुराते रहिए, जागते रहिए और सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्ली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। और हाँ, राधे राधे, जय जिनेंद्र, रब राखा तो सब राखा, खुदा हाफिज़।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: आज से हमारा रिश्ता खत्म और चलो एक दूसरे के सारे गिफ्ट वापस करते हैं।
1: हाँ? तो ठीक है, शुरुआत रिचार्ज से करते हैं।
0: अरे जानू, अब क्या मैं तुमसे मजाक भी नहीं कर सकती।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निःशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वही श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
2: हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु। आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे, प्यार भरी कहानियों के साथ ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में, जहाँ से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम, जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां, जो टटोल देंगी आपका अंतर मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी, आंखों की गुस्ताखियां। आगे चलकर जीवन भर साथ रहने वाले लोग जब पहली बार एक दूसरे की आंखों में देखते होंगे, तो वो ऐसा क्या देखते होंगे जो वो बाकी लोगों की आंखों में नहीं देख पाते? शायद वो आंखों ही आंखों में देख जाते होंगे कई अनकही कहानियां। शायद वो देख जाते होंगे समर्पण, शायद वो देख लेते होंगे सच्चाई, शायद वो देख लेते होंगे अपने लिए ठहराव। नवंबर का महीना था, दिल्ली हड्डियों को जमा देने वाली ठंड के साथ इश्क में थी। 10 नवंबर की रात बॉयज हॉस्टल में खबर फैल गई कि अगले दिन शिवम का जन्मदिन है। देर रात बधाई देने के साथ सब ने शिवम को अगले दिन कैंटीन में पार्टी देने के लिए तैयार कर लिया था। अगली सुबह जहां शिवम के दिन की शुरुआत हुई ढेर सारी बधाइयों से और शोरगुल से, वहीं गर्ल्स हॉस्टल की मेघा ने अपना दिन मंदिर जाकर शुरू किया था। दोपहर में मेघा ने भी सहेलियों को कैंटीन में पार्टी दी थी, क्योंकि आज उसका भी बर्थडे था। शिवम और मेघा कुछ ही दूरी पर अलग अलग टेबल्स पर बैठे थे, अपने दोस्तों से घिरे हुए। शिवम के दोस्तों ने उसके लिए केक मंगाया, नाश्ते और ड्रिंक्स का ऑर्डर भी दे दिया गया। मेघा ने भी अपनी सहेलियों के लिए बहुत सारी चीजें मंगवाई थी। कुछ ही देर में जब वेटर शिवम को केक देने आया, तो उसके दोस्तों ने देखा कि उसके हाथ में एक दूसरा केक भी है। उन लोगों के पूछने पर वेटर ने बताया कि लड़कियों के टेबल में से भी किसी का केक का ऑर्डर है, शायद किसी लड़की का जन्मदिन है। ये बात सुनकर शिवम को उत्सुकता हुई, आखिर मैं भी तो देखूं वो लड़की है कौन जिसका बर्थडे आज मेरे ही साथ है। उसने एक नजर लड़कियों की टेबल की तरफ देखकर अंदाजा लगाने की कोशिश की कि आखिर वो लड़की है कौन। ब्लू कलर के नए शलवार सूट और बालों को इकट्ठा करके बनाई गई एक हाई पोनीटेल वाली लड़की शिवम की तरफ ही देख रही थी। लड़की के नए कपड़ों से शिवम ने अंदाजा लगाया कि शायद आज उसी का बर्थडे है। शायद वो भी यही सोचकर इस तरफ देख रही थी कि मैं भी तो जानूं आज उसके साथ और किस लड़के का बर्थडे है। फिर शिवम के हाथ में केक लगा चाकू देखकर उसे भी अंदाजा हो ही गया होगा। ये मेघा और शिवम की पहली मुलाकात थी, सिर्फ आंखों ही आंखों में।

89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है आंखों की गुस्ताखियां। अब तक आपने सुना उस दिन शिवम और मेघा दोनों का ही बर्थडे था और दोनों ही अपने अपने फ्रेंड्स को पार्टी देने के लिए कॉलेज कैंटीन में आए थे। सेम डे बर्थडे होने की उत्सुकता में उन्होंने भीड़ में ही सही चोरी छुपे एक दूसरे को देख लिया था। अब आगे जोड़ियां बेशक आसमान में बनती होंगी लेकिन धरती पर कॉलेज इसलिए बनाए गए ताकि वो जोड़ियां आपस में मिल सकें। वरना एक पंजाब का लड़का किसी राजस्थान की लड़की को अपना दिल कैसे दे बैठता? एक साउथ इंडियन लड़की किसी मुंबई के लड़के से कैसे शादी कर लेती? और फिर उत्तर प्रदेश का लड़का शिवम मध्य प्रदेश की मेघा से कैसे मिलता? शिवम और मेघा एक दूसरे की आंखों में ऐसा ही कुछ खोजने की कोशिश में थे जब शिवम के दोस्त ने उसे क्या देख रहा है कहकर मेघा की आंखों से बाहर खींच लिया। उसके साथ ही मेघा भी शिवम की आंखों से बाहर चली गई। शिवम ने कोई जवाब नहीं दिया। जल्दी ही लड़कियों का ग्रुप कैंटीन से बाहर जा चुका था। देर शाम दिल्ली ठंड की आगोश में घुलती रही। कोहरे की चादर शहर को अपने आप में समेटती रही। शिवम ने नजदीक के एसटीडी बूथ पर जाकर घर पर फोन करने का विचार किया और फिर अपना पर्स जेब में डालते हुए बाहर की तरफ निकला। जब वो बूथ के अंदर से अपनी माँ से बात कर रहा था तभी उसने देखा कि एक लड़की खुद को शॉल में लपेटे शिवम के फोन रखने का इंतजार बूथ के बाहर कर रही थी। ये वही सुबह कैंटीन वाली लड़की थी। शिवम माँ की बातों को भूलकर उसे देखता रहा। लड़की इस बात से अनजान थी कि कोई उसे देख रहा है। वो बस उसके बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी। शिवम उसे देखे जा रहा था। करीब 5.5 इंच का कद, कमर तक लंबे बाल, ठंड से गुलाबी पड़ चुका चेहरा, गुलाबी ही रंग का शलवार सूट जो उस लड़की के चेहरे को और भी गुलाबी बना रहा था। उसने गुलाबी कपड़ों के ऊपर काली रंग का शॉल ओढ़ रखा था। वो बीच बीच में अपनी हथेलियों को आपस में रगड़कर गर्म करने की कोशिश कर रही थी। शिवम अपनी बात पूरी करके पीसीओ बूथ से बाहर आ गया। शिवम के बाहर आते ही मेघा अंदर चली गई और किसी से फोन पर बात करने लगी। शिवम सामने चाय की दुकान पर पहुंचा और चाय पीते हुए उसको ही देखे जा रहा था। शिवम चुपचाप उसे देख रहा था जब अचानक मेघा ने भी उसकी तरफ देख लिया। मेघा कुछ और देर तक बात करती रही फिर फोन रखकर बाहर आ गई। उसके फोन रखते ही शिवम वापस हॉस्टल की तरफ चल पड़ा। मेघा भी उससे कुछ दूर पीछे पीछे ही आ रही थी तभी उसने खुद ही शिवम को आवाज दे दी। अरे सुनो। मेघा के इतना कहते ही शिवम के कदम ठहर गए। उसने पीछे की तरफ पलटते हुए मेघा को देखा और बोला, मैं? मेघा ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया तो शिवम अपनी ही जगह पर रुक गया। हाँ बोलो। हैप्पी बर्थडे। बस कुछ नहीं, यूं ही अच्छा लगा देखकर कि तुम्हारा भी बर्थडे मेरे ही साथ है, शिवम बोला। सेम पिंच। हैप्पी बर्थडे टू यू टू।

है ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है आंखों की गुस्ताखियां। अब तक आपने सुना, उस दिन शिवम और मेघा दोनों का ही बर्थडे था और दोनों ने ही अपने अपने दोस्तों को कॉलेज कैंटीन में पार्टी दी थी। वहीं पर पहली बार एक दूसरे को उन्होंने देखा। शाम को उनकी मुलाकात पीसीओ बूथ पर हुई जब वो अपने अपने घर फोन करने गए थे। वहां से लौटते वक्त मेघा ने आवाज लगाकर बातों की शुरुआत भी कर दी, एक दूसरे को बर्थडे विश करके। अब आगे शिवम बोला, हर साल कितना कुछ होता था घर पर, लेकिन इस साल मैं बिल्कुल अकेला हूं। तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मैंने अपना बर्थडे आज से पहले इतना अकेले घर से दूर कभी नहीं मनाया। थैंक यू सो मच, सच में मुझे भी इस वक्त बहुत अकेला लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था, मेघा बोली। अच्छा, मतलब तुम भी इसी साल घर से आई हो? शिवम बोला, हाँ कुछ ही महीने पहले दिल्ली आई हूँ। फिर दोनों ने ही एक दूसरे को अपना अपना डिटेल्ड इंट्रोडक्शन दिया। मेघा बोली, वैसे देखो हम दोनों लगभग एक साथ ही दिल्ली में आए हैं, एक ही कॉलेज में हैं, लेकिन आज तक मिलना तो दूर, टकराए भी नहीं, और मिले भी तो आज के दिन जब हमारे बर्थडे हैं। कैसा इत्तेफाक है ना? शिवम बोला, इत्तेफाक नहीं, शायद भगवान भी नहीं चाहते थे कि आज के दिन हम दोनों अकेले बोर होते रहें, इसीलिए हम दोनों मिल गए। वैसे मेरा हॉस्टल आ गया है, मेघा ने रुकते हुए कहा। बाय एंड हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, कहते हुए मेघा अपने हॉस्टल की तरफ जाने लगी, फिर पलटी। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मेरा नाम शिवम है, उसने थोड़ी दूर खड़े होकर ऊंची आवाज में बताया। नाइस टू मीट यू एंड माय नेम इज मेघा, गुड नाइट। मेघा ने भी ऊंची आवाज में जवाब दिया और मुस्कुराते हुए गर्ल्स हॉस्टल की तरफ चल पड़ी। एक ही कॉलेज में होने की वजह से वो दोनों कभी ना कभी टकरा ही जाते थे, कभी कॉरिडोर में, कभी कैंटीन में, कभी मार्केट में, लेकिन हर मुलाकात में बस थोड़ी हाय हेलो हो जाती। आज के जमाने की तरह तब रोज रोज मिल पाना, मिलते ही नंबर एक्सचेंज कर लेना, ये सब पॉसिबल नहीं था। छोटी सी मुलाकात के लिए भी महीनों भटकना पड़ता था। कई महीने बीत गए। एक बार फिर शिवम घर पर बात करने के इरादे से पीसीओ बूथ पहुंचा और बात खत्म करके निकल ही रहा था कि उसे सामने से मेघा आती हुई दिखाई दी। वो बाहर ही रुककर उसका इंतजार करने लगा। जब वो बाहर आई तो शिवम ने ही बात शुरू की। वो बोला कि मैं सोच रहा था कि अगर तुम बुरा ना मानो और खाली हो तो कल कॉफी पीने चलें। ओके, मेघा ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया। मेघा की हाँ होते ही शिवम के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो जोर से उछलना चाहता था लेकिन खुद को कंट्रोल किया। ठीक है, तो फिर कल 2 बजे मिलते हैं कैंटीन में। उस दिन उन दोनों ने पहली बार एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताया। शायद मन ही मन वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे।

रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है आंखों की गुस्ताखियाँ। अब तक आपने सुना शिवम और मेघा की पहली मुलाकात कॉलेज कैंटीन में हुई। उस दिन उन दोनों का बर्थडे था और उन्होंने इस उत्सुकता से एक दूसरे को देखा कि देखें तो हमारे साथ किसका जन्मदिन पड़ता है। फिर कुछ दिनों तक कभी कहीं टकरा जाते, कभी हाय हेलो हो जाती और फाइनली एक दिन शिवम ने उसे कॉफ़ी के लिए इनवाइट किया। वो उनकी पहली सोची समझी मुलाकात थी। उस दिन उन दोनों ने एक दूसरे के साथ काफ़ी समय बिताया। अब आगे कॉलेज कैंटीन में होने वाली मुलाकातें जल्द ही बाहर कैफे तक पहुंच गईं। समय बीतता रहा और दोनों नज़दीक आते रहे। 2 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। कॉलेज पूरा होते होते दोनों एक साथ रहने का और एक साथ जीवन बिताने का निर्णय ले चुके थे। दिल्ली ने कई सारे मौसम देखे थे और उनमें से एक मौसम मेघा और शिवम के प्यार का भी था। दोनों की शादी हो गई। दोनों एक ही स्वभाव के थे और दोनों ही उम्र भर एक दूसरे के साथ इश्क में रहे। समय पंख लगाकर उड़ गया। शादी को 22 साल बीत गए। 22 सालों में दोनों ने खूब तरक्की की। 2 बच्चों के माता पिता बने। बच्चे बड़े होकर बाहर रहने लगे। दोनों के बीच प्यार तो रहा पर अब उसको प्रदर्शित करने का तरीका दोनों ही भूल चुके थे। उस दिन सुबह से शिवम कुछ ढूंढने में लगा था, तभी अचानक मेघा उसके पास आई। उसके हाथ में पूजा की थाली थी। उसने शिवम को टीका लगाया और बोली, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मेघा, कहकर शिवम ने प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेर दिया। शिवम को जाने क्यों आज वही पहले वाला अकेलापन महसूस हो रहा था। रिश्तों के नाम पर आज उसके पास सब कुछ था, लेकिन आज अपने खास दिन पर वो फिर भी अकेला था, एकदम अकेला। मेघा के पास भी हर चीज थी, लेकिन वो भी अपने बर्थडे पर उतना ही अकेला महसूस कर रही थी जितना उस रात को जब वो पहली बार पीसीओ बूथ पर मिले थे। शिवम ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप ऑफिस निकल गया। शाम को वापस आते ही उसने मेघा से कहा, चलो आज कहीं बाहर डिनर करने चलते हैं। डिनर के बाद दोनों वापस घर आने को चल पड़े थे। वापसी में शिवम ने कार सड़क के किनारे रोककर शीशे नीचे उतार दिए। ठंडी हवा कार के अंदर आने लगी थी। मेघा ने कुछ नहीं कहा। वो समझ रही थी कि शिवम कुछ परेशान है। आइसक्रीम खाओगी? शिवम ने कार का इग्निशन ऑफ करते हुए कहा। सर्दियों में आइसक्रीम खाना मेघा को बहुत पसंद था। उसने तुरंत हाँ कर दी। शिवम जाकर 2 आइसक्रीम ले आया और मेघा ने बिना कुछ कहे आइसक्रीम उसके हाथ से ले ली। मेघा, क्या अब हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते? कुछ देर की खामोशी के बाद शिवम ने कहा। मेघा शिवम के चेहरे को देखकर उसके सवाल की गहराई को नापने की कोशिश करने लगी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है आंखों की गुस्ताखियां। अब तक आपने सुना शिवम और मेघा कॉलेज में मिले और एक दूसरे को पसंद करने लगे, फिर उनकी शादी हो गई। शादी के 22 साल बीत गए। अब उनके रिश्ते में नयापन जैसा कुछ भी नहीं था। उस दिन उन दोनों का ही बर्थडे था और वो एक बार फिर बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। शिवम रात को मेघा को लेकर डिनर पर गया और लौटते समय रास्ते में रुक के वो आइसक्रीम खा रहे थे, तभी शिवम ने मेघा से कहा, मेघा क्या अब हम एक दूसरे को प्यार नहीं करते? अब आगे। अच्छा, और ऐसा अचानक क्यों लगने लगा तुम्हें? मेघा ने उसकी तरफ देखा। नहीं, पहले तुम बताओ, मेरे सवाल का जवाब दो, क्या अब हम एक दूसरे से पहले जैसे प्यार नहीं करते? हाँ शिवम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करते हो। अचानक ये क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो? मेघा बोली, तो फिर हम जताते क्यों नहीं? तुम्हें याद भी है कि आखिरी बार कब मैंने तुम्हें कॉलेज के दिनों की तरह गले लगाकर आई लव यू कहा था? शिवम बोला, नहीं वो तो याद नहीं, और जताते इसलिए नहीं है क्योंकि जताने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। जताया तो तब जाता है जब सामने वाले को पता ही ना हो कि हम उससे प्यार करते हैं। तुम्हें याद है कई साल पहले आज के ही दिन लगभग इसी वक्त मैं और तुम पहली बार मिले थे और फिर साथ ही हॉस्टल तक गए थे। उस दिन भी मैं और तुम ऐसे ही अकेले थे। उस दिन मैं तुम्हें जानती नहीं थी। उस दिन के बाद हम प्यार करने लगे। जताने की जरूरत तब थी जिस दिन हमने ये कबूल किया था कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। उस दिन से जताने की जरूरत कभी पड़ी ही नहीं। हमारा इतने सालों का साथ, प्यार नहीं तो और क्या है? उस रात तुमने सोचा था कि आज से 22-24 साल बाद ठीक इसी वक्त मैं इस लड़की के साथ होऊंगा? नहीं ना, लेकिन आज हम साथ हैं तो इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, और वो है हमारे बीच का प्यार। तुम्हें सर्दियों में आइसक्रीम खाना पसंद नहीं, फिर भी तुम खा रहे हो क्योंकि ये मुझे पसंद है। यही तो प्यार है ना? तुमने देखा कि मेरे बाल सफेद होने लगे हैं, लेकिन क्योंकि तुम अपने बालों में कलर नहीं करते तो मैं भी नहीं करती। यही प्यार है शिवम। उम्र के एक पड़ाव के बाद प्यार दिखाया नहीं जाता, उसे सिर्फ साथ रहकर निभाया जाता है, जो तुम बहुत अच्छे से निभा रहे हो। अब प्लीज शीशे ऊपर कर दो, मुझे ठंड लग रही है। मेघा ने आइसक्रीम का कोन होल्डर में रखकर अपनी हथेलियों को रगड़ते हुए कहा। शिवम ने गाड़ी का शीशा बंद कर दिया और हीटर चला दिया। शिवम मुस्कुरा रहा था, मेघा मुस्कुरा रही थी। दोनों को अच्छा लग रहा था कि शादी के इतने सालों बाद भी दोनों का प्यार उतना ही बना हुआ है। आज भी उसमें उतनी ही नवीनता है।

रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी आंखों की गुस्ताखियाँ। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट कर सकते हैं। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन।

0: डिलिशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45। अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

आप कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

0: भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: अरे सुना
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब?
3: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
5: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
6: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
7: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
8: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
7: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
9: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
10: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
9: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
10: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रांग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
9: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
10: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
11: आज का नया प्रोग्राम है गांव की गूंज की टीम का। अप्रैल का महीना चल रहा है, पर गर्मी का सितम इतना ज्यादा है कि कुछ करने का मन ही नहीं करता है।
12: आप सबने बेंगलोर की न्यूज़ पढ़ी? अरे वही शहर जो IT कैपिटल ऑफ इंडिया है, पानी के भयंकर संकट से जूझ रहा है। अरे मेरा भाई इंफोसिस में काम करता है, वो बता रहा था कि हम लोगों ने मांग की है कि ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम दिया जाए।
13: अरे जिम्मी, तुम सुनो, अब की गर्मी में तुम बैंगलोर जाना चाह रही थी? देखो हरिओम क्या बता रहा है कि बैंगलोर के लोग छुट्टी लेकर अपने गांव आ रहे हैं, वहाँ पानी की बहुत प्रॉब्लम हो गई है।
14: हरिओम सही कह रहा है, स्विमिंग पूल पर तो रोक लगा दी गई है, कार वॉशिंग नहीं कर सकती, यहाँ तक कि लोग 2-3 दिन में एक बार नहा रहे हैं, और कपड़े धोना तो जैसे भूल ही गए हैं।
15: हाँ यार, कल रात मैं और साक्षी भी न्यूज देख रहे थे, बता रहे थे कि बैंगलोर में पहले पॉपुलेशन करीब 80 लाख की थी, अब 1.5 करोड़ पहुंच गई है। जिस फ्रेंड के पास हम सभी जा रहे थे, वो वापस आ रही है, अब अपने गांव से ही काम करेगी।
12: बैंगलोर को सिटी ऑफ गार्डन बोला जाता था एक टाइम पर आज कंक्रीट का पूरा जंगल बन गया है। किरण दीदी, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप अपने गानों को तैयार कर लीजिए और मैं गांव के सभी लोगों से मिलकर पानी की समस्या पर काम करता हूं।
14: ठीक है हरिओम, बीच में मैं गाने सुना सुना कर तुम लोगों की स्ट्रेस दूर करती रहूंगी।

0: गांव की गूंज की टीम का उद्देश्य था कि हमारे गांव वीरान न हो, लोग उसकी मिट्टी से जुड़े रहें। और देखो, जब कोरोना हुआ तब हम सब ने देखा कितने गांव की मिट्टी से जुड़े हैं, उनको कम नुकसान हुआ। गांव के दौर में जब हम लोग सब मुसीबत में थे आदि, तब भी सबको आने वाली गांव की मिट्टी ही याद आई।
1: इसलिए तो हमारी टीम कहती है कि अपनी मिट्टी की खुशबू कम ना होने दीजिए, उसे आबाद रखिए, उसे ना भूलिए। मुसीबत के समय, परेशानी के समय सिर छुपाने आप वहीं जाते हैं।
2: जब से आप लोगों के गांव की गूंज की टीम के साथ जुड़े हैं, तब से बराबर देख रहे हैं। जब दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है तो लोग अपने गांव वापस आ जाते हैं। कोरोना में तो लाखों लोग अपने घर वापस लौट आए थे। अब बेंगलोर में पानी की समस्या, सुकून तो अपने गांव की मिट्टी में ही मिलता है।
3: हमारी जिम्मी कितनी सयानी हो गई है, कितनी समझदारी की बातें करने लगी है। चलो, हमारे दूसरे गाने की धुन भी तैयार हो गई है, सुन लो तुम लोग।

0: पता है जब हमारे बड़े भैया बैंगलोर जा रहे थे तो बहुत दुखी मन से जा रहे थे, पर भाभी को गांव में रहना पसंद ही नहीं है। जब कभी बेचारी गांव में रही ही नहीं तो गांव की वैल्यू क्या ही जाने।
1: हाँ हरिओम भैया, कल भाभी ने हमको भी फोन किया था और कह रही थी कि जब हम लोग बैंगलोर जा रहे थे तब बहुत खुश थे कि चलो गांव से पीछा छूटा, पर दादी साथ समझा रही थी कि गांव की मिट्टी को बंजर मत होने देना, घर की चौखट को हमेशा बनाए रखना, जब भी छुट्टी हो घर आती रहना। पर बहू, समय के चक्र को तुम जानती नहीं, और ये याद रखना कि जितनी भी परेशानी आए गांव की मिट्टी कभी भूखा नहीं रहने देगी।
2: सच कह रही हैं आप। सोचिए आज बेंगलोर में लाखों कमाने वाले लोग भी पानी के लिए लाइन में खड़े हुए हैं, करोड़ों के घर हैं लोगों के पास, एक से बढ़कर एक बाथरूम है, पर एक बाल्टी पानी के लिए लोग तरस रहे हैं।

0: और गोरखपुर पर एक गाना है, वह भी सुनते जाओ।
1: गोरखपुर के
0: अरे क्या,

0: सबसे पहला काम हम सबको करना है कि पानी को बचाना है। पूरे पृथ्वी का 3/4 भाग पानी से ढका है, पर पीने योग्य पानी अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 1% है। पूरी पृथ्वी का 97% पानी समुद्री है यानी खारा, 2% ग्लेशियर और पर्वत है। बचा जो 1% है वो हम पीने के काम में लेते हैं और घर के बाकी काम में लेते हैं।
1: इतना कम पानी है हम लोगों के पास, हम अब गिलास में उतना ही पानी देंगे जितना पीना है, नहीं तो 2 घूंट पीते हैं और बाकी सब फेंक देते हैं।
2: ठीक कह रही हैं समता दीदी। अभी कल ही मैं एक शादी में गई थी और वहाँ जैसे ही बारात वाले पहुँचे सबको एक एक बोतल पकड़ा दी। अब सभी ने बस 1 या 2 ही घूंट पानी पिया और बाकी पानी फेंक दिया। अब किसी को दोबारा प्यास लगे तो वो दूसरी बोतल ले लिया करता था। अब इस पे देखिए पानी कितना ज्यादा वेस्ट हुआ।
3: अरे हाँ, आज तक तो हम भी यही करते थे, पर अब से नहीं करेंगे। किसी भी पार्टी में जाएंगे, जब तक एक खत्म नहीं हो जाएगी तब तक दूसरी नहीं लेंगे, और दूसरों से भी यही कहेंगे कि जितना पानी पीना हो उतना ही ग्लास में लीजिए।
4: गांव की गूंज की टीम का सेव वाटर की मुहिम का ये पहला कदम, और दूसरा कदम ब्रश करते समय नल चलाकर छोड़ नहीं देंगे, नहाते समय बेकार में पानी बहने नहीं देंगे, समय समय पर लोगों को भी समझाते रहेंगे ज्ञानस्त्री रेडियो के माध्यम से। जल ही जीवन है, लो यह गाना सुनो और लहसुन की चटनी के साथ घुघरी खाओ।

0: 30% शुद्ध जल हमें अंडरग्राउंड वाटर से मिलता है, पर अंडरग्राउंड वाटर का मुख्य सोर्स जो है वो वर्षा है। और आप सभी न्यूज में सुनते ही रहते होंगे कि वर्षा प्रतिदिन कम होती जा रही है, जिसमें अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो नहीं पाता, और वर्षा का पानी सोखने के लिए जमीन ही कितनी कम बची है। हर जगह तो घर, सड़क, पुल बनते जा रहे हैं, और वर्षा का पानी सोखने के लिए जमीन ही कितनी कम बची है। हर जगह तो घर, सड़क, पुल बनते जा रहे हैं, करोड़ों का घर बनवाएंगे, पर बरसात में अपने घर में पानी का संचय कैसे होगा इसका कोई भी उपाय नहीं करेंगे। आजकल गमले का फैशन चलने लगा है, घर में पेड़ पौधे लगाने का फैशन चला है, तो अगर घर आप बनवा रहे हैं तो घर में एक छोटा सा हिस्सा छोड़ दें, जिससे क्या हो बरसात का पानी सोख कर जमीन के अंदर चला जाए।
1: हमारे एक अंकल हैं, उन्होंने छत के पानी को पीवीसी पाइप लगाकर बड़े बड़े टैंक में स्टोर कर लिया था और कई दिन तक उसी पानी से कार को धोने का काम, बगीचे में डालने का काम करते हैं। देखो, हमारे पास फोटो भी है। तब हम सोच रहे थे कि ये सब बेवकूफी है, पर आज समझ आ रहा है कि कितना अच्छा काम किया है उन्होंने।
2: आज ही हम घर जाकर पापा से बोलेंगे कि क्या पापा, इस बरसात में हम लोग बारिश के पानी को बचा सकते हैं? एक बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी है हम लोगों ने। अपना जो लान था ना, उसको हमने भैया से कह के बहुत ही जिद करके बोला कि भैया इंटरलॉकिंग वाला टाइल्स लगवा दीजिए, जबकि भैया भाभी दोनों बहुत मना कर रहे थे इसको लगवाने के लिए।
3: श्वेता मैम, जब जागो तभी सवेरा, अभी काम शुरू नहीं हुआ है, रुकवा दीजिए। जब हम सही होंगे तभी तो लोगों को अच्छी बातें सिखा पाएंगे।
4: अपने घर के पास पानी से भरी बाल्टी या नादा लगवा दीजिए, जिससे सड़क के कुत्ते, आवारा जानवर प्यास से ना मरे, और छत पर एक मिट्टी के बर्तन में पानी रखें, जिससे चिड़ियों को पानी मिले और हम सब की बूंद बूंद की कोशिश और कितने को जीवन दान मिलेगा।

0: ये गाना किरण दीदी बिट्टू की शादी के लिए तैयार किया गया है। बहुत ही ज्यादा सुंदर है। गांव में छोटे छोटे गड्ढों में पानी डालने के लिए सरकार पैसे भी देती है और साथ में ताल भी खुदवाती है सरकार, पर प्रधान पैसे खा जाते हैं और उतना अच्छा काम तो करते नहीं है। और गाँव के लोग बेचारे ठहरे सीधे साधे, प्रधान से पूछ भी नहीं पाते हैं। और हम लोग की टीम का काम है जागरूकता फैलाना और लोगों को बताना कि उनका अधिकार क्या है।
1: हमारी नदियों और झीलों की गहराई इतनी कम होती जा रही है क्योंकि इतना कंस्ट्रक्शन होता जा रहा है। गहराई कम होने के कारण बरसात के पानी इकट्ठा होने की जगह से बहुत जगह भी कम होती जा रही है। बेंगलोर में भी न्यूज में था कि जो लेक थे उस पर बिल्डिंग बन गई। इन्हीं सब कारणों से पानी की कमी हो रही है। अरे हाँ यार, यहाँ पर भी तो पीछे तालाब था जिसमें बरसात का पानी चला जाता था। पिछली बार तो बरसात में करीब एक महीने तक कॉलेज और गली में पानी भरा हुआ था। लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था।
2: अपनी परेशानियों का कारण हम स्वयं हैं। अब बेंगलोर में ही देखो, हर किसी को वही नौकरी करनी है। वहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, पर कल ही हमने देखा कि वहाँ का तापमान लखनऊ से 1 डिग्री ज्यादा था। बर्फ के गोले खाते खाते यह लोकगीत सुनो, हम नहीं खाएंगे।

0: पानी की परेशानी को दूर करने के लिए पेड़ों का बहुत बड़ा महत्व होता है। जहाँ पेड़ हमें गर्मी से राहत पहुँचाते हैं, वहीं गांव और शहर के तापमान में कम से कम 2-3 डिग्री का अंतर होता है। हवा को शुद्ध रखते हैं पेड़। जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ एसी कूलर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। रात में तो आज भी लोग छत पर, आंगन में या बाहर चारपाई लगाकर मच्छरदानी के अंदर सोते हैं और सुबह सूरज उगने से पहले ही उठ जाते हैं। बिल्कुल हेल्दी लाइफ होती है उनकी।
1: पता है, पेड़ लगाने से उस एरिया में वर्षा ज्यादा होती है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा चेरापूंजी के जंगल में होती है। फिर जब हम सबको पता है कि जहाँ ज्यादा पेड़ होंगे वहाँ ज्यादा वर्षा होगी, तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, उसकी सेवा करते और रक्षा करें, जिससे हमारे यहाँ कभी पानी की समस्या ही ना हो।
2: समता मैम, आजकल मौसिन राम करके जगह है, वहाँ माना जाता है कि चेरापूंजी से भी ज्यादा बारिश होती है। दोनों बहुत पास हैं, पर अभी इस बात पर विवाद ही चल रहा है कि कहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है।
3: हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हमारे यहाँ जब भी वर्षा हो और वर्षा के पानी को हम लोग संचित करें, पानी को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। अगर पानी के मूल्य को नहीं समझेंगे तो हम भी और हमारी भी सिचुएशन बेंगलोर वासियों की तरह हो जाएगी। पानी के लिए हमें भी लाइन लगाना पड़ेगा।
4: और इस महंगाई के युग में पानी को हर काम के लिए खरीद रहे होंगे। हम सबको पानी को बचाना है, उसके मूल्य को समझना है। गांव की गूंज की पूरी टीम संकल्प लेती है कि पानी की हर बूंद बचाएंगे। पानी का हर बूंद बचाते चलो, जीवन का हर जश्न मनाते चलो।

गुड आफ्टरनून एवरीवन। भाई बज चुके हैं 12 और वक्त हो चुका है आपके अपने शो ज्ञानस्त्री लाइव का। जी हाँ, ज्ञानस्त्री लाइव, और आज हम सुन रहे हैं स्वास्थ्य संगिनी। जी हाँ, स्वास्थ्य संगिनी, क्योंकि आज दिन शनिवार और शनिवार के दिन हम बात करते हैं आपकी सेहत की। आपकी सेहत यानी कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए हानिकारक हैं और किन किन चीज़ों से आपको अवेयर होना चाहिए। ऐसे ही आज हम भी कुछ चीज़ें लेकर आए हैं जिसके बारे में आप जानते तो हैं, लेकिन आपको असल में उसका कारण, वो क्यों होता है, कैसे होता है, किस लिए होता है और उसका क्योर क्या है, वो आपको अभी तक नहीं पता है। और हम उसे बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करते रहते हैं, टालते रहते हैं कि यार छोटी मोटी प्रॉब्लम ही तो है, लेकिन ये छोटी मोटी प्रॉब्लम ना बहुत बड़ी हो सकती है। आज हम बात करने वाले हैं

0: बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ की। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, आप सब अपना ख्याल रख रहे होंगे और सबसे ज़रूरी बात, आपका पेट ठीक होगा। हाँ दोस्तों, आज आपके पेट पे ही आज हम बात करने वाले हैं। आप सुन रहे हैं अपना प्रोग्राम स्वास्थ्य संगिनी और मैं हूँ आपकी आरजे आयुषी, आपकी दोस्त, आपके आज के कार्यक्रम की होस्ट। आज का टॉपिक है दोस्तों फूड पॉइजनिंग। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो बड़ा ही बोरिंग टॉपिक लग रहा है, लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। ये टॉपिक उतना बोरिंग नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपकी ज़िंदगी से सीधा जुड़ा हुआ है और मैं ये गारंटी देती हूँ कि आज के कार्यक्रम के बाद आप बाहर का खाना खाने से पहले एक बार ज़रूर सोचेंगे। देखिए दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनिए। मान लीजिए रविवार की छुट्टी है, आप परिवार के साथ बाहर गए हैं, मज़ेदार खाना खाया है, गोलगप्पे खाए हैं, चाट खाई है, पानी पूरी है और साथ में एक कटोरी दही बड़ा मिल गया। भाई वाह, दिन ही बन गया मान लो। शाम को घर आकर आप सीधा सो गए, रात में अचानक उठे और पेट में ऐसा दर्द हो रहा है, ऐसा मरोड़ उठ रहा है कि आपसे सहन नहीं हो रहा है। उसके बाद उल्टी, दस्त, बुखार ये सब चालू हो गया और आपके मन में तुरंत यही ख्याल आएगा कि अरे ये क्या हो गया मुझे। बस दोस्तों, यही है फूड पॉइजनिंग। और ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक लाखों भारतीयों की, कह सकते हैं उनकी अधिकतर हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन होने वाली एक प्रॉब्लम है। जी हाँ, भारतीय, जहाँ पे भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे तेल मसाला बाहर का खाना और ये चटपटी चीज़ें का सेवन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूँ कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिर्च मसाले खाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हंसी मजाक एक तरफ और फूड पॉइजनिंग एक तरफ, क्योंकि भाई फूड पॉइजनिंग एक बहुत ही गंभीर समस्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक दुनिया भर में हर साल लगभग 60 करोड़ लोग, सोचिए 60 करोड़ कितनी बड़ी संख्या होती है, ये लोग दूषित खाने की वजह से बीमार हो जाते हैं और इनमें से लगभग 4,20,000 लोगों की तो मौत भी हो जाती है। है ना ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा डरावना। जी हाँ, सिर्फ एक मामूली सी फूड पॉइजनिंग जिसे आप सोचते हैं बहुत ही छोटी मोटी समस्या है, लेकिन देखिए लगभग 4,20,000 लोगों की मौत इससे हो जाती है। भारत में हर साल लाखों मामले सामने आते हैं और ये सिर्फ वो रिपोर्ट हैं जो रिपोर्ट होती हैं, यानी कि जो दर्ज हुई होती हैं। जो घर पर ठीक हो जाते हैं वो, उनकी गिनती अभी हमारे पास नहीं है। तो चलिए सबसे पहला सवाल पे हम चलते हैं, जो कि है फूड पॉइजनिंग आखिर होता क्या है। सरल भाषा में अगर हम आपको बताएं तो जब हम कोई ऐसा खाना खाते हैं या पीते हैं जिसमें हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, परजीवी या जहरीले केमिकल्स मौजूद होते हैं और वो हमारे शरीर के अंदर जाकर तबाही मचा देते हैं, तो उसे हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग। जी हाँ, फूड पॉइजनिंग, इसे मेडिकल भाषा में फूड ब्रोन इलनेस भी कहा जाता है। हिंदी में इसे विषाक्त भोजन रोग भी कहते हैं, लेकिन हम आम भाषा में इसे पेट का खराब होना कहते हैं। अब दोस्तों, खाना खराब होता कैसे है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये इसको थोड़ा सा हम बहुत ही ज़्यादा डीप समझते हैं कि आखिर ये क्या होता है। देखिए, जब आप खाना बनाते हैं तो वो गर्म होता है और उसमें बैक्टीरिया नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे खाना ठंडा होने लगता है और खुले में रखा होता है वैसे ही बैक्टीरिया की पार्टी शुरू हो जाती है। जी हाँ, बैक्टीरिया इतने मेहनती होते हैं कि वो हर 20 मिनट में अपनी पॉपुलेशन को डबल कर देते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि एक बैक्टीरिया से दो, दो से चार, चार से आठ और कुछ ही घंटों में इनकी जनसंख्या लाखों में हो जाती है। काश इतना मेहनती हमारा इंसान भी होता कि जितनी रफ्तार से ये बढ़ रहे हैं वैसे ही जो है हमारी तरक्की भी आगे बढ़ती। दोस्तों, आप समझते हैं कि ये फूड पॉइजनिंग के कितने प्रकार होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। हाँ, ये एक नहीं होते बल्कि कई तरह के होते हैं। पहला प्रकार इसका है बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग, ये सबसे आम है और सबसे ज़्यादा केसेस भी इसी से होते हैं। देखिए, कई प्रकार के बैक्टीरिया हमारे खाने में छुपकर बैठ जाते हैं और मौका मिलते ही वो अपना हमला भी शुरू कर देते हैं और उन्हीं को हम बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग के नाम से जानते हैं। दूसरे प्रकार की हम बात करें तो वो वायरल फूड पॉइजनिंग होता है, जिसमें हेपेटाइटिस ए जैसे वायरस दूषित पानी और खाने के जरिए शरीर में पहुंच जाते हैं। ये सारे जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, ये इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि इनका इन्फेक्टेड जो इंसान होता है, जिसको इसने उन्हें इन्फेक्ट किया होता है, वो एक दूसरे में भी फैल सकता है। उसके बाद अगर हम तीसरे प्रकार का जिक्र करें तो इसे हम कहते हैं पैरासाइटिक फूड पॉइजनिंग। इसमें छोटे छोटे परजीवी खाने या पानी के जरिए पेट में पहुंचते हैं। ये ज़्यादातर दूषित पानी पीने से होता है। उसके बाद अगर चौथा प्रकार की हम बात करें तो केमिकल या फिर टॉक्सिक फूड पॉइजनिंग। ये तब होता है जब खाने में कोई मिलावट हो, जैसे दूध में यूरिया, मिठाई में हानिकारक रंग, सब्जियों में अत्यधिक पेस्टिसाइड। ये सबसे खतरनाक है क्योंकि इसका असर लंबे समय तक हमारी बॉडी पे रहता है। तो दोस्तों, एक मज़ेदार बात मैं आपको अब बताती हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग जब बीमार पड़ जाते हैं तो कहते हैं, यार पिछले हफ्ते शादी में कुछ खाया होगा, शायद उसी में कुछ गड़बड़ हो गया होगा, कुछ ज़्यादा खा लिया होगा या कुछ बेकार सा खा लिया होगा। लेकिन उनके साथ बैठे दूसरे लोग को कुछ भी नहीं हुआ होता है। ऐसा क्यों? आपको लगता है कि आपने भी ये नोटिस किया होगा कि एक ही घर में चार लोग, चारों ने एक ही पार्टी से खाना खाया, और पार्टी से आते हैं तो दो लोग बीमार हो जाते हैं, दो बिल्कुल चंगे रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये क्यों होता है मैं आपको बताती हूँ भाई। देखिए, ये इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों, हर इंसान की इम्यूनिटी अलग अलग होती है। कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, वो उसी खाने को खाकर ठीक रहते हैं, लेकिन कुछ लोग का इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा वीक होती है कि वो बीमार पड़ जाते हैं। एक और ज़रूरी और फ़र्क समझिए, लोग फूड पॉइजनिंग और स्टमक फ्लू को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग होते हैं। स्टमक फ्लू वायरल इन्फेक्शन है जो धीरे धीरे आता है 24 से 48 घंटे में, जबकि फूड पॉइजनिंग के लक्षण तेज और अचानक आते हैं। खाने के कुछ घंटों में ये अपना असर दिखाने लगते हैं। और एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भाई, ये फूड पॉइजनिंग का मतलब ये नहीं है कि खाने में लिटरली जहर ही डाल दिया गया हो, बस खाना थोड़ा सा दूषित हो जाता है, बस इतनी सी ही ये बात है। लेकिन ये दूषित खाने खाकर जो हमारी हालत होती है, अगर उसको हम गंभीरता से ना लें तो ये बहुत ज़्यादा गंभीर रूप ले सकती है, आपकी डेथ भी इससे हो सकती है। दोस्तों, अब एक चौंकने वाली बात भी मैं आपको बताती हूँ, वो ये है कि क्या आप जानते हैं कि जो खाना दूषित होता है उसका कोई टेस्ट नहीं बदलता, कोई स्मेल नहीं आती और कोई रंग नहीं बदलता। जी हाँ, सबसे बड़ा धोखा यही होता है। आप खाना खाएंगे, आपको बिल्कुल नॉर्मल लगेगा, कुछ घंटों बाद आपका पेट बोलेगा कि यार आपने क्या ही खिला दिया मुझे। इसीलिए फूड पॉइजनिंग इतनी ट्रिकी होती है कि आप समझ नहीं पाते कब, कैसे, क्या और क्यों हो गया ये। दोस्तों, आज हम सबसे पहले खंड में हमने ये समझा कि फूड पॉइजनिंग क्या होती है, कितनी सीरियस प्रॉब्लम है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और ये कैसे होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि खाना बाहर से नॉर्मल दिखे तो भी वो दूषित हो सकता है। अब थोड़ा सा ब्रेक की तरफ चलते हैं, हम वापस आएंगे और आपसे बात करेंगे लक्षणों की, यानी शरीर में ये कैसे सिग्नल देता है कि भाई कुछ गड़बड़ हो गई है। बने रहिए हमारे साथ अपने प्रोग्राम स्वास्थ्य संगिनी में। हम आते हैं ब्रेक के बाद और बातें करते हैं इस बहुत ही गंभीर विषय पे। शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
4: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
5: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10 प्लस 2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
2: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरण नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
6: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन,
7: गोंडा शहर की धड़कन।
0: वेलकम बैक लिसनर्स, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट लेके आपका अपना प्रोग्राम स्वास्थ्य संगनी, क्योंकि आज शनिवार और हम आज के दिन बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। अभी तक हमने जाना कि फूड पॉइजनिंग क्या है और अब हम बात करेंगे इसके लक्षणों की, यानी कि भाई जब हमारा शरीर आपको सिग्नल देता है कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा जो बॉडी होता है वो हर चीज़ के लिए, जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है, कुछ टॉक्सिक हो जाता है हमारे लिए, तो हमें सिग्नल ज़रूर देता है। लेकिन भाई हमारा जो दिमाग है वो कहता है अरे छोड़ो, थोड़ी सी ही तो प्रॉब्लम है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम समझते हैं कि ये फूड पॉइजनिंग के मुख्य लक्षण क्या हैं। देखिए, सबसे पहला सिम्टम है पेट में दर्द और मरोड़। सबसे पहले और सबसे आम संकेत यही है। ये दर्द ऑर्डिनरी पेट दर्द जैसा नहीं होता, ये एक ऐसा दर्द होता है जैसे कोई अंदर से कस कर आपका पेट पकड़ रखा हो और मरोड़ रहा हो। ये दर्द आता जाता रहता है और आपको परेशान भी करके रख देता है। आपको नींद नहीं आती, आप सही से कुछ खा नहीं पाते, आपके मूड बदलते रहते हैं और कई सारी आपको प्रॉब्लम होती है। कभी कभी पेट इतना फूला हुआ लगता है कि बैठना भी मुश्किल हो जाता है, और ये दर्द नाभि के पास या उसके आसपास हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड सिम्टम्स की, तो सेकंड सिम्टम है जी मचलाना या फिर उल्टी होना। दोस्तों, उल्टी को सुनकर लोग अक्सर बुरा मानते हैं, लेकिन एक्चुअली उल्टी आपके शरीर का हीरो है। जी हाँ, शरीर खुद ही जहरीले पदार्थ को आपके बॉडी से निकाल देता है, उसी को हम उल्टी कहते हैं। और हम सोचते हैं अरे यार उल्टी आ रही है, अरे हटो, लेकिन एक्चुअल में उल्टी आपका सबसे बड़ा साथी होता है, आपको ज़्यादा बीमार होने से यही बचाता है। लेकिन अगर उल्टियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हों, बार बार हो रही हों और पानी भी ना रुके, तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद चलते हैं हम अपने थर्ड सिम्टम पे, वो है डायरिया। जी हाँ, डायरिया यही है फूड पॉइजनिंग का सबसे आम और सबसे खतरनाक लक्षण। बहुत ही ज़्यादा आपको बार बार आपको दस्त आ रहा है, आपके पेट में डायरिया जो है वो बढ़ती जा रही है, शरीर से पानी जो होता है वो बहुत तेज़ी से निकल रहा होता है, और पानी के साथ साथ आपकी बॉडी से सॉल्ट भी निकलता रहता है। अगर ये चीज़ आपके साथ बार बार हो रही हो तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, तुरंत आपको अस्पताल जाना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अपना सही प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम पूरी तरीके से अपने डॉक्टर को बतानी है। उसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ सिम्टम की, तो फोर्थ सिम्टम है हमारा बुखार। जी हाँ, फीवर। देखिए, फूड पॉइजनिंग में अक्सर बुखार आ जाता है, शरीर इन्फेक्शन से लड़ रहा होता है, इसीलिए टेम्परेचर भी हमारा बढ़ जाता है। ये बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म है। हल्का बुखार जो कि 99 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है तो ठीक है, घर पे ये बुखार मैनेज हो सकता है, लेकिन अगर ये बुखार 102 से लेकर के 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाए तो डॉक्टर के पास जाने का टाइम आ चुका है। उसके बाद फिफ्थ सिम्टम की अगर हम बात करें तो वो है कमजोरी और चक्कर आना, साथ ही साथ आपको थकान महसूस होना। देखिए, जब उल्टी और डायरिया से शरीर का पानी निकल जाता है तो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन फैल जाता है, और डिहाइड्रेशन में जो कमजोरी आती है वो अलग ही तरह की होती है। आंखें भारी हो जाती हैं, सर घूमने लगता है, उठने का मन नहीं करता है। और दोस्तों, डिहाइड्रेशन फूड पॉइजनिंग में सबसे बड़ा खतरा होता है, खासकर बच्चों में और बुजुर्गों के लिए। इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, इसके लिए आपको ORS का घोल पीते रहना चाहिए। उसके बाद सिक्स्थ सिम्टम की अगर हम बात करें तो सिक्स्थ सिम्टम है हमारा सर दर्द और बॉडी पेन। देखिए, बुखार और डिहाइड्रेशन की वजह से पूरे शरीर में दर्द होता है, सिर भारी होने लगता है, मसल्स में तकलीफ होती है, ऐसा लगता है जैसे पूरा बदन टूट रहा हो। तो अगर आपको ये चीज़ हो रही है तो आपको ये क्लियर समझ जाना चाहिए कि आपको जो है ये फूड पॉइजनिंग ने अटैक कर दिया है। दोस्तों, अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, कि लक्षण कितनी जल्दी आते हैं, ये डिपेंड करता है कि किस चीज से आपको पॉइजनिंग हुई है। अगर आपको बैक्टीरिया से हुई है तो सिर्फ 30 मिनट से 8 घंटे में ये सबसे ज्यादा तेज हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई वायरस से हुई है तो ये 12 से 48 घंटे लगाएंगे। अगर आपको केमिकल से हुआ है, कोई फूड पॉइजनिंग हुई है केमिकल से, तो आपको 1 से 4 हफ्ते के बीच में ये प्रॉब्लम नजर आएगी और ये सबसे स्लो और डेंजरस वे है इसके लक्षण का सामने आने का। यानी दोस्तों, अगर आप आज बीमार हुए हैं तो जरूरी नहीं है कि खाना आपने आज ही खाया हो। हो सकता है कि आपने 3 दिन पहले खाया हो, या हो सकता है आपने हफ्ते भर पहले खाया हो और उसके सिम्टम आज नजर आ रहे हैं। अब एक जरूरी सवाल, ये लक्षण दिखे तो फौरन हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहला काम है आपका घबराइए नहीं, पैनिक मत करिए, क्योंकि 80% फूड पॉइजनिंग के केस में 1 से 2 दिन में ये खुद ही ठीक हो जाते हैं। उसके बाद आपको दूसरा काम करना है, ORS का पानी आपको पीना शुरू कर देना है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन आपको हमेशा जो है लगातार आपको पीते रहना है, ये आपका सबसे बड़ा दोस्त है इस सिचुएशन में। आप इसे घर पर भी बना सकते हैं, जैसे आप 1 लीटर साफ पानी लें, उसमें 6 चम्मच चीनी डालें और 1/2 चम्मच नमक डाल लें, यह आपका घर बैठे एक ORS का घोल बन जाएगा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके आपको हर 15 से 20 मिनट में इसको कंज्यूम करना है। उसके बाद तीसरा काम आपको करना है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है आराम। जी हाँ, आराम करना है आपको। देखिए, इस टाइम पे शरीर लड़ रहा होता है, उसे एनर्जी चाहिए होती है, और इसमें आपका आराम करना इसके लिए बेनिफिशियल भी होगा। उसके बाद अगर हम चौथे काम की बात करें तो खुद से दवाई आपको नहीं खानी है। ये एक बहुत बड़ा काम है जो आपको हमेशा जानना चाहिए, समझना चाहिए। हम काफ़ी बार करते हैं कि अरे भाई, नुक्कड़ की दुकान है, जाओ वहाँ से दवाई ले आओ, या हमें फूड पॉइजनिंग हो गई है, या हमें बुखार लगे हैं, डायरिया हो गया है, या ये सारी चीज़ें। लेकिन आपको इस टाइम पे बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवाई नहीं खानी चाहिए। और दोस्तों, मैं आपको कुछ 5 सिचुएशंस बताती हूँ जिसमें आपको डॉक्टर के पास तुरंत भाग के जाना चाहिए। वो सिचुएशंस हैं बुखार 102 फ़ारेनहाइट से ऊपर हो जाना, आपको डायरिया में खून आना, 24 घंटे में कुछ भी अंदर ना रुके, यानी आप कुछ भी खा रहे हैं वो तुरंत ही बॉडी से निकल जा रहा है, बच्चे या बुजुर्ग को बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होना, बार बार आपके पेट में मरोड़ उठना, और आप सही से आप में बेचैनी बढ़ जाना। दोस्तों, लक्षण को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितनी जल्दी पहचानेंगे नहीं, उतनी जल्दी हम इसके लिए सही कदम नहीं उठा पाएंगे। तो इसे जल्दी जानें, जल्दी पहचानें और सही कदम उठा के अपने आप को इस फूड पॉइजनिंग से बचा लें। देखिए, हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई बीमारी होती है, तो हमारी बॉडी हमें ज़रूर कोई ना कोई संकेत ज़रूर देती है। तो शरीर के संकेतों को आपको सुनना है, क्योंकि वो झूठ कभी भी नहीं बोलता है। अब हम एक और ब्रेक लेते हैं और वापस आकर आपसे बात करेंगे इसके कारणों की, यानी ये सब तो होता है, क्यों होता है, कहाँ से होता है, और ये बैक्टीरिया क्या होती है, ये सब तो हम लोग जान गए, लेकिन इसके मुख्य कारण क्या हैं ये हमें ज़रूर जानना चाहिए। आपकी रसोई में भी ये हो सकता है। ये सुनकर आप चौंके नहीं, क्योंकि ये जो फूड पॉइजनिंग होती है सिर्फ बाहर के खाने से नहीं बल्कि घर के खाने से भी हो सकती है।

0: watch more, log on to www.erosnow.com.
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब?
1: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
4: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: वेलकम बैक लिसनर्स, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम स्वास्थ्य संगिनी। और आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा गंभीर प्रॉब्लम के बारे में, वो है फूड पॉइजनिंग। अभी तक हमने जाना कि ये क्या होती है और साथ ही साथ इसके सिम्टम्स क्या हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे कि ये आखिर होता क्यों है, क्या कारण है और क्या इसके पीछे का रहस्य है। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप में से बहुत लोग ये सोचते होंगे कि मैं तो घर का ही खाना खाता हूँ, मुझे ये नहीं हो सकता या ये कैसे होगा। अरे दोस्तों रुकिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि फूड पॉइजनिंग घर में भी हो सकता है। जी हाँ, आपके घर में आप ही की वही रसोई जहाँ पे आप बहुत खुश होके बहुत ही अच्छे मन से आप घर में खाना बनाते हैं और आपकी रसोई में एक कुछ ऐसी आदतें हो सकती हैं जो आपको पता नहीं है, लेकिन जो फूड पॉइजनिंग को डायरेक्टली न्योता देती हैं, यानी कि इनविटेशन देती हैं। तो चलिए आज हम थोड़ा जासूसी करते हैं आपकी रसोई की। जी हाँ, आपकी रसोई की, तो दिल थाम के बैठ जाइए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको अब पता चलने वाली हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़े कारण की हम बात करते हैं, वो है बैक्टीरिया से दूषित खाना। दोस्तों, ये विलेन नंबर एक है और इसके कई सारे कैरेक्टर भी हैं, जैसे सेल्मोनेला। आपको ये नाम थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये एक बैक्टीरिया है, और या फिर ये कहें कि ये बैक्टीरिया का सुपरस्टार है जो फूड पॉइजनिंग में होता है। ये मिलता है कच्चे अंडे में, कच्चे मुर्गे में या फिर बिना पैश्चराइज किए हुए दूध में। अगर अंडे की भुर्जी आधी कच्ची रह गई हो तो ये वायरस आपको सामने से आपको हेलो बोलेगा और आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे इकोली की। इकोली शहर की बात नहीं हो रही भाई, ये इकोली है, जो कि एक बहुत बड़ा वायरस है। ये भी बहुत बदनाम किस्म का वायरस है दोस्तों। देखिए, ये कच्चे अधपके मांस में, बिना धुली सब्जी में और दूषित पानी में मिलता है। 2024 में अमेरिका के एक फेमस बर्गर चेन की वजह से सैकड़ों लोगों को इकोली से बीमारी हो गई थी। अब बात करते हैं हम ओरेस से। ओरेस एक बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया है। ये तब खाने में आता है जब बनाने वाले के हाथ साफ नहीं होते हैं, और सबसे खतरनाक ये है कि ये बैक्टीरिया खाने में टॉक्सिन्स यानी जहर छोड़ता है। खाना गर्म करने पर बैक्टीरिया मर जाते हैं, लेकिन जहर नहीं। खाना गर्म करने से हमेशा बचाव नहीं होता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम गर्म गर्म खाना खा रहे हैं, इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं होगा, कोई वायरस नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके घर में सही मात्रा में साफ सफाई नहीं रखी जाती है, बाहर से चीज़ों को लाकर धुला नहीं जाता है और जो चीज़ें अधपक्की हैं उन्हें सही से पका के नहीं खाया जाता, जैसे मांस, अंडा, ये सारी चीज़ें, तो आपको भी फूड पॉइजनिंग हो सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे कैंपिलोबैक्टर की। ये एक बहुत ही बड़ी बैक्टीरिया का नाम है। ये बैक्टीरिया कच्चे मुर्गे में बहुत ही ज्यादा कॉमन है। यूके में तो ये फूड पॉइजनिंग का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। उसके बाद अगर हम दूसरे बड़े कारण की बात करें तो वो है गलत तापमान पर खाना पकाना। जी हाँ दोस्तों, ये सुनिए और थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। बैक्टीरिया की ग्रोथ सबसे ज़्यादा तेज होती है 4 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच में। यानी कि अगर आपका तापमान या उस खाने का तापमान जिस पर आप पका रहे हैं वो 4 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री के तापमान पे है, तो इसे एक्सपर्ट कहते हैं टेम्परेचर डेंजर जोन। मतलब जो खाना ना तो फ्रिज में ठंडा है ना गैस पर गर्म है, तो वो डेंजर जोन में कंसीडर होता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि भाई गर्मियों में हमारे देश में तो गर्मी जो होती है ये 9 महीने से भी ज़्यादा टिकती है, और हमारे देश में अगर खाना हम अभी बना रहे हैं तो 2 घंटे बाद वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, और अगर रात में बचा हुआ खाना है और सुबह हम उसे बिना गर्माए खा रहे हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और शादियों में जो खाना बाहर घंटों तक रखा रहता है उसमें भी बैक्टीरिया की पार्टी चल रही होती है। जी हाँ, बैक्टीरिया आपको बिल्कुल बुला रहे होते हैं अपने करीब की, आओ आओ मैं अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। उसके बाद तीसरा कारण है क्रॉस कंटेमिनेशन। ये टर्म थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है लेकिन ये कंसेप्ट बिल्कुल इसका सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आपने कच्चा चिकन काटा, ठीक है, उसी चाकू को बिना धोए उसी से आपने सलाद काट लिया, उसी कटिंग बोर्ड पे आपने रोटी का आटा गूंद लिया, बस उसी कच्चे चिकन से जो बैक्टीरिया होता है वो सलाद में आ गया। सलाद पकता नहीं तो बैक्टीरिया भी आपके पेट में डायरेक्टली चला जाता है। एक गोल्डन रूल भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो है कच्चे मांस और पकी हुई चीज़ों को हमेशा अलग अलग रखें, अलग चाकू, अलग बोर्ड और अलग बर्तन में उसे रखें। उसके बाद अगर हम चौथे कारण की बात करें तो वो है दूषित पानी। दोस्तों भारत में आज भी कई शहरों में, गाँव में क्वालिटी वाला पानी, क्वालिटी वाले पानी का मतलब ये नहीं है कि आप बड़ी बड़ी बॉटल्स में पानी पिएं, बल्कि आप पीने लायक पानी पिएं, ये पानी की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, वो नहीं उपलब्ध है कई शहरों में, कई गाँव में। आज भी नदी नालों में और नहरों में घर के वेस्ट आते हैं, फैक्ट्री के वेस्ट आते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है वो गंदा हो जाता है, और इसी गंदे पानी की वजह से हेपेटाइटिस ए और फूड पॉइजनिंग जैसी गंभीर समस्या हो सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें पांचवें कारण की, तो देखिए बाहर का खाना और स्ट्रीट फूड एक बहुत बड़ा कारण बनता है। अगर मैं आपको सीधा बात बताऊं तो मैं स्ट्रीट फूड की दुश्मन नहीं हूं। चाट, गोलगप्पे और चाउमीन मिल जाएगी, बर्गर मिल जाएगा, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है, ऐसा मुझे भी लगता है और मुझे भी ये बहुत ज़्यादा पसंद भी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बीमारी इन्हीं सब खानों के ज़रिए भी होती है। लेकिन देखिए सच्चाई यही है कि जहाँ हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता वहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा होता है। खुले में रखा हुआ खाना, कटा हुआ खाना, फल, उस पर मक्खियाँ बैठती हैं, मक्खियाँ गंदगी से आती हैं और खाने पे बैक्टीरिया छोड़ जाती हैं, फिर वो फल आप खा लेते हैं। देखिए सिंपल इक्वेशन है, बड़े शादी समारोह में हज़ारों लोगों के लिए खाना बनाया जाता है जहाँ टेम्परेचर कंट्रोल मुश्किल होता है, इसीलिए शादी के अगले दिन हॉस्पिटल में भीड़ लग जाती है। छठे कारण की अगर हम बात करें तो वो है एक्सपायरी डेट को इग्नोर करना। जी हाँ, खाना खाने से पहले जो पैकेट वाले फूड्स होते हैं, जो पैक्ड होते हैं, उनकी एक्सपायरी डेट चेक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों पैकेट बंद खाने पर जो डेट लिखी होती है वो डेकोरेशन के लिए नहीं होती है, और उसे हमें देखना होता है, उसे सही से परखना होता है, कहीं पुराना दही तो नहीं है, बासी दूध तो नहीं, एक्सपायर तो नहीं हो चुका है, कहीं ये बिस्किट ख़राब तो नहीं हो गया है, और न जाने से कितनी चीज़ें होती हैं जिसमें एक्सपायरी डेट लिखी होती है, ये सब फूड पॉइजनिंग का एक बहुत बड़ा कारण बन सकते हैं। उसके बाद अगर हम सातवें कारण की बात करें तो वो है मिलावट। भारत में फूड एडल्ट्रेशन एक बड़ी समस्या है। दूध में पानी और यूरिया, मिठाई में सिंथेटिक कलर, सब्जियों में केमिकल स्प्रे, ये सब धीरे धीरे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। ये केमिकल पॉइजनिंग होती है जो इमीडिएट भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म तक चल सकती है। अब बात करते हैं कि कौन लोग सबसे ज़्यादा खतरे में हैं, यानी कौन सा वर्ग सबसे ज़्यादा खतरे में है। देखिए अब इसमें मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं करूँगी, इसमें मैं उम्र विशेष की बात करूँगी। जी हाँ, उम्र विशेष, जिसमें छोटे बच्चे आते हैं जो कि 5 साल से कम के बच्चे होते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हुआ होता है, उनके लिए फूड पॉइजनिंग बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे बुजुर्गों की, जिनकी उम्र के साथ इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। डायबिटीज, किडनी की बीमारी वाले बुजुर्ग को तो और भी ज्यादा एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे गर्भवती महिलाओं की। देखिए, गर्भवती महिलाओं के लिए जो सॉफ्ट चीज़ या रॉ मिल्क होते हैं वो उन्हें बहुत कम कंज्यूम करना चाहिए, बिल्कुल ना के बराबर। गर्भवती महिलाओं के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं, इससे गर्भपात तक हो सकता है। तो जो भी खाएं वो थोड़ा सतर्कता से खाएं। पहले से बीमार लोग जो होते हैं, जो कि कैंसर से पीड़ित होते हैं, HIV से पीड़ित होती हैं, कोई ऑटो इम्यून डिजीज होता है, उनके लिए ऑर्डिनरी फूड पॉइजनिंग भी जानलेवा हो सकता है। तो दोस्तों, अभी हद तक हमने जाना कि इसके कारण क्या होते हैं और उनमें से कई हमारी अपनी आदतों में भी छुपे हुए हैं। लेकिन घबराइए नहीं, इसका जो ट्रीटमेंट है, जो उपचार है, जो इलाज है, वो मुमकिन है। और सही समय पर अगर हमने ध्यान दिया तो हमारा ना तो गर्भपात होगा और ना ही हमारी जान जाएगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आएंगे और बात करेंगे इसके इलाज के बारे में, घरेलू उपाय के बारे में और बचाव के बारे में।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निःशुल्क डेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891414 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: भारत में जैसे ही किसी दंपत्ति की शादी होती है, सब पूछने लगते हैं अच्छी खबर कब आएगी। लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर जोड़े जल्दबाजी में माता पिता बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें गर्भ निरोधक के सभी विकल्पों की सही जानकारी नहीं होती। जब दंपत्तियों को अपने सभी विकल्पों की पूरी जानकारी मिलती है तो वो मिलकर फैसला ले सकते हैं कि वो कब और कितने बच्चे चाहते हैं। वो आर्थिक रूप से तैयारी कर सकते हैं और अपने आजीविका पर ध्यान दे सकते हैं, साथ ही अपने बच्चों को बेहतर शुरुआत दे सकते हैं, ताकि हर बच्चा किसी मजबूरी से नहीं बल्कि सोच समझ कर लिए गए फैसले से जन्म ले। तो झिझके नहीं, अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और जानें कि आपके लिए कौन सा आधुनिक गर्भ निरोधक तरीका सही है। आज ही बातचीत करें।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आ चुकी हूँ वापस। मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका अपना कार्यक्रम स्वास्थ्य संगिनी, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं फूड पॉइजनिंग की। अभी तक हमने जाना कि ये क्या होता है, इसके सिम्टम क्या होते हैं और इसके कॉज क्या होते हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। भाई देखिए, मुसीबत तो बहुत बड़ी है लेकिन इसका इलाज मुमकिन है, जो कि हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए, और कब तक हम अपने घर में ही उपचार कर सकते हैं ये भी हमें समझना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि किसी भी बीमारी को हमें कम में नहीं आंकना है। खैर, ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है रे, हल्का सा पेट दर्द ही तो है, थोड़ा सा डायरिया हो गया, क्या हुआ, अभी दो चार ORS का घोल पिलाओ, अभी ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कि इंसान की हालत खराब होती जा रही है तो उसे बिल्कुल घरेलू उपचार पे आपको नहीं छोड़ना है, आपको उनका ध्यान रखना है और उनको डॉक्टर के पास सही समय में आपको लेके भी जाना है। उसके बाद हम बात करेंगे आज उपचार के बारे में। देखिए, उपचार के बारे में अगर मैं बता रही हूँ तो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, बैठिए और हो सके तो कोई डायरी उठा लीजिए और इन सभी चीज़ों को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया में। देखिए, ये जो अभी मैं बताने वाली हूँ ये वो पार्ट है जो आपको सबसे ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि यहाँ हम बात करेंगे क्या करें जब फूड पॉइजनिंग हो जाए और कैसे करें बचाव ताकि ये और ज़्यादा ना बढ़े। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, दवाई से बेहतर है परहेज। जी हाँ, और परहेज के लिए चाहिए सही जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट को, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला हिस्सा है फूड पॉइजनिंग होने पर क्या करें। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको घबराना नहीं है। 80% फूड पॉइजनिंग केस माइल्ड होते हैं और 1 से 2 दिन में खुद ही ठीक हो जाते हैं, तो पैनिक बटन को बिल्कुल ना प्रेस करें। उसके बाद आपको पहला काम करना है पानी। जी हाँ, पानी पानी पानी। गर्मी भी पड़ रही है, आपको पानी पीते रहना चाहिए, लेकिन अगर आपको फूड पॉइजनिंग हुआ है तो भी आपको पानी की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। दोस्तों, उल्टी और डायरिया से शरीर से काफी ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर आ जाते हैं और पानी की कमी हो जाती है, सॉल्ट जो है वो आपकी बॉडी से निकल जाता है, इससे भरना बहुत ज्यादा जरूरी हो रखा है। तो आपको ORS का घोल यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना है, उसे पीना है। ये हर एक मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता है, बहुत ही कम दाम में ये आपके लिए अवेलेबल है हमारी मार्केट। नहीं मिला, चलिए हम बताते हैं कि इसे घर पे कैसे बनाना है। आपको बस 1 लीटर उबला हुआ पानी लेना है, फिर उसे ठंडा कर लेना है, उसमें 6 चम्मच आपको चीनी डालनी है और 1/2 चम्मच आपको नमक डालना है। बस हो गया ये आपका होममेड ORS रेडी। देखिए, थोड़ा थोड़ा करके आपको इसे पीते रहना है, हर 15 से 20 मिनट में आपको 1-2 घूंट इसको पीते रहना है। एक साथ अगर आप ज्यादा पानी पीते हैं तो आपको उल्टी भी हो सकती है। उसके बाद नारियल पानी। देखिए, नारियल पानी भी इस सिचुएशन के लिए बहुत बड़ा आपका दोस्त साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें नेचुरल पोटेशियम और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। उसके बाद आपको दूसरा काम करना है खाने से सावधानी। जी हाँ, खाने से आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। सावधानी का मतलब ये नहीं कि खाने को बिल्कुल टाटा बाई पे बोल देना है। जब बहुत ज़्यादा आपको उल्टी और डायरिया हो रहे हों तो पहले कुछ घंटे बना हुआ खाना आपको तुरंत बंद कर देना है, शरीर को रेस्ट देना है, थोड़ा सा बेहतर लगे तो आपको खाना खाना है। तो शुरुआत करते हैं आपके ब्रैड डाइट से। जी हाँ, BRAT डाइट से। ब्रैड का मतलब है बी यानी कि बनाना, आर यानी राइस, ए यानी कि एप्पल सॉस और टी यानी कि टोस्ट, जिसे हम प्लेन ब्रेड के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा आपको दलिया, उबले हुए आलू, खिचड़ी, ये सब हल्के और आसानी से पचने वाले भोजन होते हैं और इनके सेवन से आपकी बॉडी को, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे आपको दूर रहना है। वो क्या है मैं आपको बताती हूँ भाई। सबसे पहले तला भुना नहीं खाना है, मसालेदार नहीं खाना है। हाँ, इस टाइम पे ऐसा लगेगा कि आपको उल्टी हो रही है, कुछ चटपटा खाना चाहिए और कुछ ऐसा जो आपका मन खुश कर दे, लेकिन भाई इस टाइम पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है और इन खानों को अवॉइड करना है। साथ ही साथ डेयरी प्रोडक्ट्स, कॉफी, शराब और कोल्ड ड्रिंक को आपको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। ये सब पेट को और भी ज्यादा इरिटेट कर देते हैं। उसके बाद अगर हम तीसरे काम की बात करें तो वो है सबसे बड़ा और सबसे बेहतर, सबसे आसान और सबसे मजे का काम, वो है सिर्फ और सिर्फ आराम। शरीर बैक्टीरिया से लड़ रहा होता है इस टाइम और उसे एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जितना ज्यादा आराम उतनी ही जल्दी रिकवरी। ऑफिस जाने की, स्कूल जाने की, घर के काम करने की, सबसे छुट्टी लेकर के आपको सिर्फ आराम करना है। चौथा और बहुत जरूरी काम दोस्तों ये है कि खुद से दवाई आपको नहीं लेनी है। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा कॉमन मिस्टेक है। बुखार हुआ तो पैरासीटामोल ले लो, डायरिया हुआ तो डायरिया की कोई भी दवाई ले लो, पेट दर्द हुआ तो एंटासिड ले लो, लेकिन ये सब बिना डॉक्टर की सलाह से लेना डेंजरस हो सकता है। खासकर एंटीबायोटिक ये कभी भी खुद से नहीं लेना चाहिए। एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर काम करती है, वायरल पर नहीं। मतलब गलत एंटीबायोटिक लेने से आपके पेट के अच्छे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। डायरिया की दवाइयाँ जो कि स्टूल बंद करती हैं वो भी खुद से नहीं लेनी चाहिए। अगर शरीर में टॉक्सिन बाहर निकल रहा है तो उसे बाहर निकलने देना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल आपके जहन में यही आएगा कि डॉक्टर के पास तुरंत कब जाएं। दोस्तों ये लिस्ट याद कर लीजिए कि अगर आपको बुखार 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के यानी कि 38.9 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो तो आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। आपको अगर डायरिया हो रहा है, आपको 24 घंटे से उल्टियाँ ही हो जा रही हैं, कुछ भी अंदर रुक नहीं रहा है और आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रही है, आपको जो है बहुत ज़्यादा धुंधलापन हो चुका है आपकी आँखों में, आपको चक्कर ज़्यादा आ रहे हैं और ये लक्षण जो हैं वो 3 दिन से ज़्यादा हो गए हैं तो आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। मुद्दा ये बनता है कि इस सिचुएशन में डॉक्टर आखिर करते क्या है। मैं बताती हूँ कि आखिर डॉक्टर करेगा क्या। देखिए डॉक्टर सबसे पहले एग्जामिनेशन करता है, कभी कभी स्टूल टेस्ट और ब्लड टेस्ट भी डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं, फिर जरूरत के हिसाब से आईवी ड्रिप यानी कि नसों में सीधा पानी और सॉल्ट चढ़ाते हैं, एंटी नोसेट इंजेक्शन लगाते हैं, दवाइयाँ देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन कन्फर्म हो जाता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पे, फूड पॉइजनिंग से बचाव के गोल्डन रूल। दोस्तों WHO ने फूड सेफ्टी के लिए 5 कीज दिए हैं। चलिए एक एक को समझते हैं कि आखिर ये क्या है। गोल्डन रूल नंबर 1 की अगर हम बात करें तो वो है हाथ धोना। ये सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है ना, लेकिन इस एक आदत से लाखों बीमारियां रोकी जा सकती हैं। आपको कब कब हाथ धोना है ये भी मैं आपको बताती हूँ भाई। आपको खाना बनाने से पहले और खाना बनाने के बाद में हाथ धोना है, खाना खाने से पहले हाथ धोना है, टॉयलेट से आने के बाद आपको हाथ धोना है, कच्चा मांस छूने के बाद आपको हाथ धोना है और किसी बीमार इंसान को टच करने के बाद आपको अपना हाथ जरूर धोना चाहिए। और अब बात करते हैं कि हाथ आखिर धोया कैसे जाए। बस पानी से, साबुन से, कम से कम 20 सेकंड तक। वो आपने ऐड तो देखा होगा ना, बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या जस्ट, बिल्कुल उसी की हम बात करें तो 20 सेकंड तक आपको जरूर अपना हाथ धोना है। उंगलियों के बीच में, नखूनों के बीच में, सब जगह आपको अच्छे से रगड़ रगड़ के अपने हाथ को साफ करना है। रगड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल बर्तन धुलने वाले स्क्रबर से आप अपना हाथ रगड़ डालें, आप सॉफ्टली लेकिन साबुन से अच्छे से अपने हाथों का हर एक कोना जिसमें आपकी उंगलियों के बीच और नखून जो होता है, जो आप नखून की गंदगी होती है उसे हटाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें गोल्डन रूल नंबर 2 की तो वो है खाना अच्छे से पकाना। कच्चा खाना, अधपका मांस सबसे बड़ा खतरा होता है। मुर्गे का मांस पूरी तरीके से वाइट होना चाहिए, अंदर से गुलाबी बिल्कुल भी नहीं। मछली फ्लेकी होनी चाहिए। अंडे का योग सेट होना चाहिए। एक थर्मोमीटर आप अपने पास रखिए। जी हाँ, देखिए किचन का थर्मोमीटर अलग आता है और बुखार नापने का थर्मोमीटर अलग आता है, तो आपके घर में ये चीज़ आप बिल्कुल सुनिश्चित कर लीजिए कि ये दोनों ही ज़रूर हों। मास्क की अंदरूनी टेम्परेचर जो होता है वो कम से कम 75 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। गोल्डन रूल नंबर 3 की अगर हम बात करें तो वो है खाना सही तरीके से स्टोर करना। पका हुआ खाना 2 घंटे के अंदर ही फ्रिज में रख देना चाहिए। फ्रिज का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होना चाहिए। फ्रीजर में रखना है तो -18 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बचे हुए खाने को गर्म करते समय पूरी तरह अंदर तक गर्म होने देना चाहिए। बस ऊपर से ही गर्म नहीं बल्कि पूरी तरीके से उसे गर्म करना है। उसके बाद अगर हम चौथे गोल्डन रूल की बात करें तो वो है सेफ पानी और रॉ मटेरियल। घर में फिल्टर या आरओ का पानी इस्तेमाल करें, नहीं है तो पानी को उबाल लें। 1 मिनट तक जरूर उसे उबालें, इससे पानी सेफ हो जाता है और पीने लायक हो जाता है। फल और सब्जियां खाने से पहले साफ कर लें, अच्छे से धुल लें। बेहतर होगा कि अगर आप नमक के पानी में इसको 10 मिनट तक भिगो के रखें। उसके बाद गोल्डन रूल नंबर 5 जो कि आखिरी रूल है वो है क्रॉस कंटेमिनेशन से बचें। कच्चे मांस और पकी हुई चीजों को अलग अलग चाकू से अलग अलग कटिंग बोर्ड पे काटें, ठीक है। और फ्रिज में कच्चा मांस हमेशा सबसे नीचे रखें ताकि उसका रस ऊपर की चीजों पर ना गिरे। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा टिप भी मैं आपको देना चाहूंगी, वो ये है कि बाहर खाते समय कुछ बातों का हमें जरूर ध्यान रखना है। खाना ताजा बना हो और वो आपको मतलब आपको खुद ये चीज श्योरिटी हो कि वो खाना ताजा बना है। जहाँ बनता है वहाँ पे लोगों के हाथ गंदे तो नहीं है, सिंक ना हो उसके आसपास, खाना घंटों तक खुले में ना रखा हो, वहाँ से आपको जो है वहीं से आपको खाना खाना चाहिए। बीमार हो तो खाना ना बनाए। जी हाँ, देखिए बीमारी में खाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि कुछ बीमारियों में आपके जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जब आप छींकते हैं खांसते हैं तो वो खाने में गिर जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। और अगर आपको फूड पॉइजनिंग है या कोई स्टमक इलनेस है तो किसी और के लिए खाना ना पकाएं, आप दूसरों को भी बीमार कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मार्केट में खरीदारी की। देखिए रॉ मीट को प्लास्टिक बैग में अलग रखें, टूटे या बल्गिंग कैंस में मत खरीदें। वेजिटेबल्स ताज़े होने चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगी। देखिए अपने हाथों को धोना है, खाना ताज़ा खाना है और पानी साफ पीना है। अगर आप इतना कर रहे हैं तो आप लगभग 70% केसेस फूड पॉइजनिंग के रोक सकते हैं। और याद रखिए स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है। एक बार बीमार हो जाए और तकलीफ हो जाए तो भाई दवाइयों पर ज्यादा खर्च होता है, इसीलिए दिन बर्बाद ना करें, पैसे खराब ना करें, अपने जो रोग है उसको पहले ही उसका रोकथाम कर लें जिससे कि आपको वो रोग ना हो। आज की ये जानकारी अपने परिवार को जरूर बताइएगा, अपने बच्चों को सिखाइएगा और पड़ोसियों से भी इस चीजों को शेयर करिएगा, क्योंकि अगर हम साथ मिलेंगे एक दूसरे की मदद करेंगे तभी हम एक दूसरे की हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, खासकर अपनों का। तो भाई ये थी आज का विषय, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, आपने कुछ समझा होगा, सीखा होगा और इसे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट भी ज़रूर करेंगे।

हम सफर पर निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं। नए स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं। तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, आ गई 1 फरवरी जब सुन पाएंगे आप ये नई कड़ी। सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
2: सभी श्रोताओं का हमारी सेहत की श्रृंखला सेहत सही लाभ कई के नए एपिसोड में स्वागत है। मैं हूं आपकी आरजे आकांक्षा। दोस्तों, आजकल हर जगह पोषण माह की चर्चा हो रही है, लेकिन सच बताऊं हम अक्सर पोषण शब्द सुनते तो हैं पर समझते कम हैं।

0: स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार हमारे देश में 6 महीने से 5 साल तक के 67.1% बच्चे एनीमिया से प्रभावित हैं। इतने छोटे बच्चों में खून की कमी, ये कैसे हो सकता है?
1: यही तो पोषण की असली तस्वीर है और ये समस्या है सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है। 15 से 19 साल के किशोर लड़कियों में 61% से ज्यादा एनीमिया और गर्भवती महिलाओं में लगभग 52%। इसका मतलब है कि हमारे भोजन में कहीं ना कहीं बड़ी कमी है।
0: तो क्या इसका मतलब ये है कि हम खाना तो खा रहे हैं लेकिन सही पोषण नहीं मिल पा रहा?
1: बिल्कुल, पोषण सिर्फ खाना नहीं, सही संतुलित भोजन है। शरीर को ऊर्जा, ताकत, दिमागी विकास और बीमारी से बचाव सब भोजन से ही मिलता है। जो भोजन हम खाते हैं वही हमारे खून, हड्डी, मांसपेशियां और दिमाग बनाता है।
0: तो सबसे आसान भाषा में बताइए कि आखिर में पोषण है क्या?
1: पोषण का मतलब ऐसा संतुलित भोजन जो शरीर की जरूरत पूरी करे। भोजन से मिलने वाले तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट।
0: मतलब कहने का आपका है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट, क्यों भैया?
1: जी हाँ,
0: ये थोड़ा कठिन लग रहा है, जरा आसान करके समझाइए।
1: देखिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी बड़े पोषक तत्व तथा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये शरीर को ऊर्जा देते हैं और शरीर का ढांचा बनाते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी विटामिन और खनिज जैसे आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, जिंक, ये कम मात्रा में चाहिए लेकिन बहुत जरूरी होते हैं।
0: मतलब ये भैया कि अगर भोजन में विविधता नहीं होगी तो शरीर कमजोर हो जाएगा।
1: बिल्कुल, स्वस्थ आहार 4 सिद्धांतों पर आधारित होता है, पर्याप्त संतुलन, संयम और विविधता, यानी भोजन इतना हो कि जरूरत पूरी हो, ऊर्जा संतुलन हो, हानिकारक चीजें सीमित हो और खाने में विविधता हो।
0: और गांव में लोग कहते हैं कि पोषण वाला खाना महंगा होता है,
1: ये सबसे बड़ा भ्रम है। हमारे गांव की दाल, बाजरा, ज्वार, हरी सब्जियां, मौसमी फल, दूध, ये सब सबसे अच्छा पोषण देते हैं। महंगा फैट वाला खाना पोषण नहीं देता है बल्कि कई बार बीमारी देता है।
0: तो शरीर को ऊर्जा सबसे ज्यादा किससे मिलती है?
1: कार्बोहाइड्रेट से। साबुत अनाज, दालें, फल और सब्जियां ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कुल ऊर्जा का लगभग आधा हिस्सा इन्हीं से आना चाहिए।
0: और प्रोटीन?
1: प्रोटीन शरीर की मरम्मत करता है, मांसपेशियां बनाता है। दाल, चना, दूध, अंडा सब अच्छे स्रोत हैं। शाकाहारी भोजन से भी पूरा प्रोटीन मिल सकता है।
0: हाँ, ये सब तो ठीक है भैया, लेकिन एक बात और आपसे पूछूंगी मैं कि आखिर में वसा यानी फैट को लोग अक्सर बुरा क्यों मानते हैं?
1: जरूरी नहीं है शरीर को कुछ वसा चाहिए, लेकिन सही वसा सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी तेल बेहतर है। ज्यादा घी, तला भोजन और ट्रांस फैट नुकसान करते हैं।
0: आजकल गांव में ब्लड प्रेशर और डायबिटिक बढ़ रहा है, क्या इसका संबंध भोजन से है?
1: बहुत गहरा संबंध है। ज्यादा नमक, चीनी और प्रोसेस्ड भोजन बड़ी वजह है। नमक दिन में 5 ग्राम से कम होना चाहिए। ज्यादा नमक दिल की बीमारी बढ़ाता है।
0: और फल और सब्जियों का कितना सेवन जरूरी है?
1: हर व्यक्ति को रोज कम से कम 400 ग्राम फल और सब्जी लेनी चाहिए। इससे शरीर को फाइबर, विटामिन और खनिज मिलते हैं।
0: अच्छा भैया, बच्चों के लिए पोषण कितना महत्वपूर्ण है?
1: जीवन के पहले 1000 दिन गर्भावस्था से लेकर बच्चों के 2 साल तक सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इसी समय दिमाग और शरीर का विकास सबसे तेज होता है।
0: तो शिशु को क्या खिलाना चाहिए?
1: पहले 6 महीने केवल माँ का दूध, इसके बाद घर का बना अर्ध ठोस भोजन, खिचड़ी, दाल, सब्जी, फल, नमक और चीनी नहीं डालनी चाहिए।
0: अच्छा भैया, गांव में एक धारणा है कि कुपोषण प्रोटीन की कमी से होती है, ऐसा है क्या?
1: असल में अधिकतर मामलों में ऊर्जा की कमी होती है, यानी बच्चा पर्याप्त मात्रा में खाना ही नहीं खा रहा होता है। दाल रोटी भी सही मात्रा में मिले तो बच्चा स्वस्थ रह सकता है।
0: और गर्भवती महिलाओं को पपीता या केला नहीं खाना चाहिए, ये बात कितनी सही है?
1: नहीं, बिल्कुल गलत है। ये फल सुरक्षित हैं और विटामिन से भरपूर हैं। ऐसे मिथक महिलाओं को पोषण से दूर कर देते हैं।
0: सरकार इस दिशा में क्या कर रही है?
1: 2018 में पोषण अभियान शुरू किया गया। इसका उद्देश्य बच्चों

0: में ठिकानापन, कुपोषण, एनीमिया और कम जन्मोजन कम करना। आंगनबाड़ी केंद्रों में हर महीने पोषण गतिविधियां होती हैं, पोषण बैठक, स्वास्थ्य जांच, जागरूकता कार्यक्रम।
1: अच्छा भैया, सुना है कि तकनीक का भी इस्तेमाल काफी हो रहा है।
0: हाँ, पोषण ट्रैकर ऐप से बच्चों और माताओं की जानकारी रियल टाइम में दर्ज होती है, इससे सेवाएं सही लोगों तक पहुंचती है।
1: महिलाओं और बच्चों के लिए भोजन कैसा होना चाहिए?
0: अनाज, दाल, दूध, हरी सब्जियां, फल रोजाना भोजन का हिस्सा हो, तेल सीमित मात्रा में लें, तला हुआ ज्यादा मीठा और पैकेट स्नैक्स कम करें।
1: आजकल बच्चे जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं भैया।
0: यही भविष्य की बीमारी है, बचपन की आदतें पूरी जिंदगी चलती हैं, इसलिए घर का खाना सबसे बड़ा निवेश है।
1: अच्छा से आती है भैया, क्या भोजन से गंभीर बीमारियां रोकी जा सकती हैं?
0: स्वस्थ आहार मधुमेह, दिल की बीमारी को, स्ट्रोक और कैंसर तक के खतरे को कम करता है, यानी सही भोजन दवा से भी बड़ा बचाव है।
1: सेहतिया भैया, आपने अभी कहा कि सही पोषण सिर्फ शरीर नहीं बल्कि पूरी जिंदगी बदल देता है। क्या आपके पास कोई ऐसी सच्ची घटना है जिससे हमारे श्रोता जुड़ सके?
0: आरजे कांचा जी, मैं आपको हमारे ही इलाके की एक लड़की आरती की कहानी सुनाना चाहता हूँ।
1: बिल्कुल।
0: ये कहानी सिर्फ आरती की नहीं बल्कि हमारे देश के हजारों बेटियों की कहानी है।
1: जरूर जरूर जरूर, मैं सुनना चाहूंगी और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता भी ध्यान से सुनेंगे।
0: आरती एक छोटे से गांव में रहती थी, पढ़ाई में अच्छी, काम में तेज और हमेशा हंसती रहने वाली लड़की है, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। घर में अक्सर यही सोच रहती थी कि पेट भर खाना मिल जाए वही काफी है।
1: यानी भोजन तो मिल रहा था लेकिन पोषण पर ध्यान नहीं था।
0: बिल्कुल। आरती सुबह चाय और बची हुई रोटी खाकर स्कूल चली जाती थी। दिन में कभी नमक रोटी, कभी सिर्फ चावल, हरी सब्जियां या फल बहुत कम मिलते थे। परिवार को लगता था कि ये सब शौक की चीजें हैं, जरूरी नहीं।
1: और भैया, इसका असर कब दिखना शुरू हुआ?
0: धीरे धीरे आरती जल्दी थकने लगी, सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलती थी, अक्सर चक्कर आते थे, लेकिन घर वाले कहते थे कमजोरी तो लड़कियों में होती है।
1: ये बात तो आज भी कई जगह सुनने को मिलती है।
0: हाँ, और यही सबसे बड़ा खतरा है। कुछ साल बाद आरती की शादी हो गई, शादी के बाद वह गर्भवती हुई, लेकिन उसकी शरीर में पहले से ही खून की कमी थी, इससे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया।
1: क्या उसने जांच नहीं करवाई?
0: पहले नहीं, उसे लगता था सब ठीक है, लेकिन गर्भावस्था के दौरान चौथे महीने में उसे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। एक दिन खेत में काम करते करते वह बेहोश हो गई।
1: फिर क्या हुआ भैया?
0: उसे तुरंत सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। वहां जांच हुई तो डॉक्टर ने बताया कि उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, गंभीर एनीमिया। डॉक्टर ने परिवार से कहा अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो माँ और बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है।
1: फिर तो ये सुनकर परिवार घबरा गया होगा।
0: हाँ, पहली बार उन्हें समझ आया कि पोषण कोई छोटी बात नहीं है। डॉक्टर ने आयरन की गोलियां दी और पोषक आहार समझाया, हरी सब्जियां, दाल, गुड़, चना, मूंगफली, दूध और नियमित जांच।
1: अच्छा, क्या आरती ने फिर सलाह मानी?
0: शुरू में मुश्किल हुई, उसे गोलियां से हल्की मिचली होती थी, लेकिन आशा दीदी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने समझाया कि यह सम्मान और दवा जारी रखना जरूरी है। परिवार ने भी धीरे धीरे भोजन में बदलाव किया।
1: मतलब पूरा परिवार सीखने लगा।
0: जी हाँ, घर में पहली बार रोज हरी सब्जी बनने लगी, गुड़ और चना नाश्ते में शामिल हुआ, आरती को आराम करने दिया जाने लगा।
1: क्या बात है। फिर प्रसव के समय क्या हुआ?
0: नियमित देखभाल और बेहतर पोषण की वजह से स्थिति संभल गई। कुछ महीने बाद आरती ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर ने कहा अगर समय पर सुधार नहीं होता तो परिणाम बहुत गंभीर हो सकते थे।
1: वाह, यानी सही समय पर पोषण ने दो जिंदगियां बचा ली।
0: बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, आरती खुद अब गांव में महिलाओं को समझाती है। वह कहती है मैंने कमजोरी को सम्मान समझकर गलती की है, अब कोई और यह गलती ना करे।
1: वाह भैया वाह, ये तो सच में प्रेरणादायक कहानी है।
0: हाँ, आज आरती अपने बच्चे को समय पर स्तनपान कराती है, पूरक आहार देती है और हर गर्भवती महिला को जांच और पोषण की सलाह देती है।
1: तो भैया, इस कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या है?
0: सीख बहुत साफ है, कमजोरी किस्मत नहीं होती, अक्सर पोषण की कमी होती है
1: जी।
0: सही भोजन, समय पर जांच और सरकारी सेवाओं का उपयोग जीवन बचा सकता है।
1: तो दोस्तों, आरती की कहानी हमें बताती है कि पोषण कोई बड़ी या महंगी चीज नहीं है, ये रोज की छोटी छोटी आदतों से बनती है।
0: और याद रखिए, स्वस्थ माँ ही स्वस्थ पीढ़ी की नींव है।
1: धन्यवाद सेहतिया भैया, सच में ये कहानी दिल को छू गई और बहुत बड़ी सीख भी दे गई।
0: बिल्कुल, स्वस्थ माँ मतलब स्वस्थ पीढ़ी।
1: तो सेहतिया भैया, अब अंत में श्रोताओं के लिए आपका संदेश।
0: देखिए, विविध भोजन खाइए, गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त भोजन दीजिए, 6 महीने तक केवल स्तनपान कराइए, बच्चों को घर का पौष्टिक भोजन दीजिए, नमक चीनी कम कीजिए और रोज सक्रिय रहिए।
1: तो दोस्तों, हम अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेंगे, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएंगे, साफ सफाई अपनाएंगे, नियमित जांच करवाएंगे और संतुलित आहार अपनाएंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ होगा तभी देश मजबूत बनेगा।
1: इसी संदेश के साथ मैं आपकी अपनी आरजे आकांक्षा अब आपसे विदा लेती हूँ, पर जाने से पहले लेंगे हम सेहत की शपथ।
2: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का, सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा सेहत सही तो लाभ कई

0: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
1: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
0: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
1: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
0: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत। हम सफर पर निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं। नए स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं, तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझकिए नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक के विकल्प जानें।

0: छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,

0: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
1: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियाँ, सूट, कुर्तियाँ और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
0: और जेंट्स के लिए,
1: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
1: संपर्क करें 9125707093 और 9696674406। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
2: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
3: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
4: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऑल्टस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
5: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
4: विजिट करें ऑल्टस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
6: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाई ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है। छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण पूरा करने के लिए दिसंबर माह को टीकाकरण उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अपने 5 साल तक के नन्हे मुन्ने बच्चों को 12 खतरनाक बीमारियों से बचाइए और उनके भविष्य को सुरक्षित कीजिए। याद रखिए, 5 साल 7 बार 12 बीमारियों पर वार। यदि छूटे न टीका एक भी बार, टीका लगवाने के लिए आपके आस पड़ोस में ANM बहन जी द्वारा हर बुधवार व शनिवार में आयोजित किए जा रहे टीकाकरण सत्रों में जाए व अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जनहित में जारी।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है, तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं,
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें। संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
3: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 88403395 84। अब सपने होंगे साकार।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद न आना, घबराहट, काम में मन न लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: डिलिशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतुराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
5: गोंडा शहर की धड़कन।
6: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
7: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता। और नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आ गई हूँ, यानी आपकी आरजे समता आ गई है। और आज फिर से हमारे साथ हमारी एक नई दोस्त, हमारी एक नई सहेली है, जिसका नाम है निधि, जो कि कल आपके साथ, मेरे साथ, हम सभी के साथ में यहाँ बैठी और बहुत सारी चीज़ों को आप तक पहुँचाने का काम किया। तो आपका पसंदीदा शो शुरू हो गया है, जिसका नाम है सुन सहेली। आइए एक ही साथ, एक ही फ्रेम में दोनों एक साथ क्या बोलेंगे, शुभ दोपहरिया एक साथ बोलेंगे, ठीक है निधि?
8: यस मैम।
7: 1 2 3 स्टार्ट।
8: शुभ दोपहरिया।
7: शुभ दोपहरिया। अंशिका को सीखते सीखते शुभ दोपहरिया मेरे साथ 6 महीने लग गए थे, आपको पता है
8: क्यों साथ मैं? में,
7: क्योंकि एक ही लय में हम लोग बोलते हैं ना। शुभ दोपहरिया।
8: शुभ दोपहरिया।
7: गुड, सीख जाओगी। तो अंशिका आज भी नहीं है भाई, और मैं भी कल भी नहीं होंगी, और मेरा साथ देने के लिए यहाँ पर तत्पर जो है मेरे साथ वो है निधि। तो निधि, क्या हाल है आपका?
8: मैम बढ़िया, आपका क्या हाल?
7: मेरा तो बहुत ही बुरा है, क्योंकि मेरा गला, आप देख रहे हैं, आवाज़ आपको लग रही होगी।
8: जी मैम।
7: इस आवाज़ को सब लोग, जब मैं कॉलेज के टाइम पर थी ना, तो इस आवाज़ को सब लोग कहते थे रानी मुखर्जी की आवाज़।
8: चलिए मैम, फिर मैं आपके आवाज़ को ठीक करने का अभी दवा बताती।
7: बिल्कुल, मुझे बता देना दवा, क्योंकि ये ना, और क्योंकि कहते हैं ना कि हम लोग आवाज़ की दुनिया के शहंशाह हैं।
8: yes,
7: और अगर आवाज़ ही गड़बड़ हो जाएगी तो फिर क्या। लेकिन अभी मैंने एक कॉम्प्लीमेंट दिया और तुमने उसका कुछ सुना ही नहीं। मतलब मुझे लोग, मेरे फ्रेंड्स, रानी मुखर्जी की आवाज़ कहते थे।
8: वाओ मैम,
7: अब तुमने ध्यान दिया। तुमने ध्यान नहीं दिया?
8: नहीं मैम, मैंने ध्यान दिया था।
7: तो रानी मुखर्जी की आवाज आपको पसंद नहीं है?
8: बहुत पसंद है मुझे, पसंद रानी मुखर्जी पूरी पसंद,
7: पूरी पसंद है। और पता है, जब हम कॉलेज टाइम पे थे ना, और जब कभी ऐसे जुखाम होता था, गला बैठता था, तो सब लोग, मेरे फ्रेंड्स कहते थे आ गई रानी मुखर्जी, उनकी आवाज देखो ऐसे ही है। पता नहीं, वो तो वो जाने हम क्या ही, बहुत सदियों पुरानी बात है ये।
8: खैर, सदियों पुरानी, आपके कॉलेज के टाइम का कितना ही दिन हुआ होगा अभी।
7: मेरे कॉलेज का अंतराल और अभी के अंतराल बहुत ज्यादा है, मतलब 10-15 साल, ऐसा नहीं है अभी।
8: मैम ज्यादा ध्यान आप रखती हैं फिर अपना,
7: क्यों
8: लग नहीं रहा है
7: कि 10-15 साल हो गए हैं? ओह माय गॉड। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वरना ये मुझे लगा देंगी आज नजर, ठीक है? हाँ, मुझे लग रहा है ऐसा। चलो तो शुरू करते हैं आज के शो को, और आज के शो की जो सबसे पहली प्राथमिकता होती है वो होती है पोयम, यानी कि हम लेकर के आते हैं हर दिन की तरीके से हर टॉपिक पे एक पोयम। तो आज है सीनियर सिटीजन्स पे, यानी कि हमारे घर के बड़े बुजुर्गों के लिए। तो घर में बड़े बुजुर्गों का होना कितना अनिवार्य है, और वो रहते हैं तो क्या उनकी वैल्यू होती है? वाकई में घर घर होता है उनके रहने से। क्यों अनिधि?
8: जी मैम, उनके छत्र छाया में ऐसा लगता है कि बहुत सेफ हैं। कुछ हर दिन ऐसा लगता है कुछ सीख रहे हैं। उनका आशीर्वाद किसी प्रसाद से कम नहीं होता है।
7: बिल्कुल, और उनका आशीर्वाद हम पर हमेशा से बना रहे। तो आज की जो पोयम मैं लेके आई हूँ और उसके बाद रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ जो कि आपको बताएंगी निधि, लेकिन मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी आज का जो कि है पोयम, यानी कि कविता, और बहुत ही प्यारी सी कविता है सीनियर सिटीजन्स पे। तो सीनियर सिटीजन्स को हम हालांकि एक दिन में बांध नहीं सकते हैं, एक दिन में या एक पल के लिए हम बांध नहीं सकते हैं उन्हें। तो एक बहुत ही प्यारी सी कविता है, सुन करके आप लोग जरूर से उसका फीडबैक हमें दीजिएगा। तो शुरू करें निधि।
8: जी मैम।
7: बुजुर्गों के चेहरे की झुर्रियां कहानी कहती हैं, बुजुर्गों के चेहरे की झुर्रियां कहानी कहती हैं, उनकी हर एक सीख जिंदगी को राह देती है। जिन हाथों ने हमें चलना सिखाया था कभी, आज वही हाथ हमारे सहारे की आस रखते हैं सभी। उनकी दुआओं में छुपा होता है प्यार अपार, उनके आशीर्वाद में खिलता है जीवन का संसार। अनुभव का खजाना है ये हमारे बड़े, इनके बिना रिश्तों के रंग लगते हैं अधूरे। थोड़ा समय थोड़ा सम्मान दे दिया करें, उनकी मुस्कान में अपना संसार देख लिया करें। जो पेड़ हमें छाया देते हैं उम्र भर, जो पेड़ हमें छाया देते हैं उम्र भर, उनकी देखभाल करना हमारा भी है फर्ज। मगर बुजुर्ग घर की शान, परिवार की पहचान है, उनके होने से ही रिश्तों में मिठास और सम्मान है।
8: वाह मैम, क्या कविता थी,
7: अच्छी लगी।
8: जी मैम।
7: तो आप रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ बताएं जल्दी से।
8: मैम, रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ आज पौधों के बारे में है।
7: पौधों के बारे में है।
8: जी मैम। अभी अभी धूप से आई होंगी, आप सोचिए एक मिनट के लिए, एक दिन के लिए धरती से सारे पौधे गायब कर दिए जाएं, तो क्या होगा?
7: तो क्या होगा? अभी आपने कोरोना टाइम पे देखा था ना कि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, लोग सिलेंडर्स ले के दौड़ रहे थे। तो आप सोचो, ऐसे ही एक रील आई थी, तो मैं वो रील पहले यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ। एक बच्चा था, नीचे खड़ा हुआ था और आसमान की तरफ सूर्य देव थे। तो उसने सूर्य देव की रोशनी, मतलब इतनी ज्यादा गर्मी को कम करने के लिए उसने क्या किया कि यहाँ मतलब जमीन से उन्होंने जो फैन होता है, सीलिंग फैन होता है, पहले वो फेंका ऊपर, तो सूर्य भगवान ने उसको जब्त कर लिया। ठीक है, फिर उन्होंने टेबल फैन फेंका, सूर्य भगवान ने उसको जब्त कर लिया, मतलब उसको लड़ाई चल रही थी दोनों की, ऐसे मारा वो नीचे जाके गिर गया। फिर बड़े बड़े जो कूलर होते हैं, बहुत बड़े वाले कूलर, वो फेंके, सूर्य भगवान ने हटा दिया, मतलब उससे वो जीत गया। फिर उसने एसी फेंका यहाँ से, एसी भी उसने हटा दिया, मार दिया। फिर उसने क्या किया कि बर्फ की बहुत बड़ी बड़ी बोरियां फेंकी, तो वो भी उसने हटा दिया, मार दिया ऐसे। फिर अंत में उस लड़के को दिमाग में आया कि उसने एक पॉट, मतलब जैसे गमला होता है ना, गमले में एक पेड़ लगा हुआ था, वो उठाया और सूर्यदेव को मारा, मतलब फेंका उनकी तरफ, तो सूर्यदेव तुरंत गायब हो गए। मतलब ये लड़ाई सूर्यदेव से जीती गई। तो क्यों जीती गई? क्योंकि यहाँ से पेड़ ही एक है जो कि इस गर्मी को कम कर सकते हैं।
8: यस मैम। एक दिन के लिए अगर पेड़ पौधे सब पृथ्वी से गायब हो जाए, ना हमें स्वच्छ हवा मिलेगी, फल फूल पेड़ पौधे के बिना अपना जीवन बिल्कुल वैसा है जैसे पानी के बिना मछली का। आप सोच सकते हैं एक दिन के लिए। और इस समय पेड़ पौधे हरियाली के लिए हम बाहर घूमने जाते हैं, और कुछ पौधे हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंस होते हैं जो हमारे आस पास होते हैं पर हमें पता नहीं होता है।
7: जैसे
8: नीम। नीम को गांव में डॉक्टर भी कहा जाता है, आपको पता है। उसकी जो पत्तियां होती हैं गर्म पानी में उबाल के नहाने से आपके अनेक रोग दूर हो
7: अच्छा,
8: जाते हैं।
7: जैसे फेस पे अगर एक्ने हो, दाने हो, तो उससे भी नीम का उपचार किया जा सकता है।
8: जी मैम, उसके जो छले होते हैं नीम का पेड़ जो होता है उसमें ऐसे चिपके होते हैं, आपने कभी नीम का पेड़ देखा?
7: हाँ, जो छोटे छोटे होते हैं,
8: छोटे छोटे
7: ग्रीन ग्रीन का, लाइट ग्रीन का।
8: यस मैम।
7: अच्छा, तो वो भी काम के होते हैं?
8: वो भी काम के होते हैं।
7: अच्छा, मैं तो सोचती हूँ कि वो कोई बीज बीज होता है।
8: नो मैम,
7: वो वेस्ट मटेरियल होता है।
8: नो मैम, वो भी काम का होता है।
7: ओके।
8: और फिर आप नीम के पत्ते को पीस के भी फोड़े ओड़े निकलते हैं, दाने निकलते हैं, उस पे लगा सकते हैं।
7: अच्छा जी, कैसे?
8: आपके सर में कभी आपके सर में दाने वाने निकले हैं?
7: हाँ, जैसे अभी भी इचिंग होती रहती है गर्मी में पसीने के कारण से, तो उसका कोई उपचार?
8: जी मैम। हाँ। गर्म पानी में नीम का पत्ता डालिए।
7: हाँ।
8: जब आप बाल धुलती हैं,
7: हाँ,
8: उस पानी को छान के ले जाइए
7: जी,
8: और फिर धुल दीजिए। जितने अच्छा। बैक्टीरिया होंगी, रूसी वूसी सब झड़ जाएंगी।
7: ओके।
8: फेस वॉश में ज्यादातर आप नीम देखती होंगी।
7: हाँ।
8: और फिर आपके आस पास ही पाया जाता है एक पौधा,
7: एलोवेरा।
8: एलोवेरा है ही मैम, एक जो आप सुबह सुबह ही जाती होंगी उस पौधे के पास जल लेके,
7: तुलसी का।
8: जी
7: ओके। जी जी जी,
8: भारत में लगभग हर घर में तुलसी का पौधा देखने को मिलता।
7: हाँ,
8: है
7: बिल्कुल, तुलसी हर घर में, मतलब तुलसी जी का पौधा तो हर घर में होता है।
8: या केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी है।
7: कैसे?
8: सर्दी जुखाम, चाय कॉफी राहत देती है।
7: जैसे अभी मेरा गला बैठा हुआ है।
8: जी मैम,
7: अभी आपने कहा था कि मैं उपचार बताऊं।
8: जी यही है आपके लिए उपचार। आप थोड़ा पानी लीजिए, उसमें चाय पत्ती डालिए, आपको मीठा चाहिए तो चीनी डालिए, मट डालिए, अदरक डालिए, और ये बाहर से आप जाके तुलसी का पत्ता ले आइए और आप उसको डाल लीजिए।
7: अच्छा।
8: और फिर उबालिए और पी लीजिए। जो तुलसी के पत्ते का स्वाद आता है, मेरा बच चले तो मैं चाय में भी डाल दिया करूं, पर मेरे घर वालों को नहीं पसंद है।
7: अच्छा, तुलसी में चाय?
8: तुलसी।
7: अच्छा, जैसे जो काढ़ा बताया उसमें हम दूध नहीं डालेंगे?
8: नहीं मैम।
7: अच्छा, काली चाय?
8: बिल्कुल, वो काढ़ा आपके गले में दर्द है। और हर कोई, अगर किसी को जुखाम सर्दी हो जाता है तो भी ये काढ़ा बना के पी सकता है।
7: ओके, तो आज शाम को ना मैं यही काम करूंगी, शाम को 2-3 पत्ते मैं ले लूंगी तुलसी माता के, और उसमें चीनी हल्की सी डालेंगे, अपने आप ही आपने बोला। हाँ, चीनी कम ही पिए क्योंकि फिर उसका असर कम हो जाएगा, मतलब जो एक स्ट्रॉन्ग, और थोड़ी सी अदरक और काली मिर्च भी अगर डाल दें तो
8: बस। तो मैं फिर तो
7: बेस्ट है ना?
8: बेस्ट है।
7: चलो, तो भाई तुलसी और काली जो गोल वाली काली मिर्च आती है साबित, वो और थोड़ी सी अदरक, इसको
8: जी
7: अच्छे से बॉईल करके और बिना दूध वाली चाय आज मैं शाम को वही बनाऊंगी अपने।
8: और अगर आपके फेस पे छाइयां निकलती है, छाइयां जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है,
7: छाइयां,
8: तुलसी का एक पत्ता लें, उसको रगड़ लें अच्छे से, और फिर उसको ऐसे टैप टैप करके उंगली से ही लगा दें।
7: अच्छा,
8: वो बहुत लाभकारी है।
7: ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं भाई।
8: मैम, मैंने भी इसको देखा है, ट्राई किया है।
7: तो ट्राई करने के बाद इसका रिजल्ट अच्छा आया?
8: यस मैम, जिसके फेस पे सूट कर जाता है उसके लिए बहुत फायदेमंद है, पर ये नुकसान नहीं करता है। अगर आप डर रहे हैं कि कहीं नुकसान कर दिया, मेरा फेस स्किनी है, ऐसा है वैसा है, तो नहीं।
7: ओके।
8: फिर पीपल, जो भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान रखता है,
7: पीपल का पेड़।
8: पीपल का पेड़, इसकी घनी छाया यात्रियों को आराम देती है। आपने पीपल देखा होगा रास्ते में ही, ज्यादा तक
7: बहुत रोड के किनारे ही पाया जाता है हमेशा।
8: और इसमें आपने घोंसला ज्यादा देखा होगा।
7: हाँ, हाँ।
8: क्योंकि पक्षियों का सबसे ज्यादा घर पीपल के उसमें पाया जाता
7: है। लेकिन एक चीज मुझे और बताओ दीदी, कि जैसे ये मान्यता है कि कहा जाता है कि पीपल के पेड़ के पास रात में नहीं जाया जाता है, या बाल खोल के नहीं जाया जाता है, या वहाँ से क्रॉस नहीं होते, तो क्या ये सब सत्य है कि केवल ये भ्रमित बातें हैं?
8: ये सब भ्रमित बातें हैं। आपने देखा होगा पीपल के पत्ते पर प्रसाद आपने कभी खाया होगा।
7: हाँ।
8: याद करिए, थोड़ा सोचिए।
7: हाँ, हाँ, हाँ,
8: कुछ जगह पीपल के पत्ते पे प्रसाद भी मिलता है,
7: और पीपल के पेड़ की पूजा भी तो होती है।
8: यस मैम।
7: हाँ।
8: तो फिर वहाँ कैसे भूत प्रेत रह सकता है?
7: तो ये ना, ये मनुष्य के द्वारा ही बनाई गई अनगणत कहानियाँ होती
8: हैं। यस मैम।
7: और ये हमारे ही द्वारा बनाई गई सारी चीजें जैसे होती है ना,
8: yes.
7: कि हम अगर कर ले तो ठीक, ना कर पाए तो वो भ्रम।
8: आप यहाँ थोड़ा कम सुनती हैं, गांव में चली जाइए, आप बैर का पेड़ होता है, आपको तो उसके पीछे की इतनी कहानियां सुनने को मिल जाएंगी।
7: बैर के पेड़ की?
8: हाँ, मैं खुद गांव में जाती हूँ, तो यहाँ मत जाइएगा। यहाँ
7: अच्छा,
8: ये
7: तो क्या होता है, थोड़ी सी तरह हमें बताओ, और लिसनर्स भी जान, थोड़ी सी जानकारी करना जरूरी होता है उनके लिए।
8: देखिए, जो गाँव से होंगे वो तो अभी तुरंत रिलेट कर पाएंगे मेरी बातों से। अगर कभी गाँव में आप जाइए, मैं भी जब जाती हूँ तो वहाँ पेड़ बहुत होते हैं, तो एक वहाँ बैर का पेड़ है जो शायद बगीचे में सबसे लास्ट में पड़ता है।
7: हाँ, हाँ।
8: तो फिर मुझे उसके बारे में पता चलता है कि यहाँ रात को भूत आता है।
7: Oh my God, पेड़ के पेड़ पे।
8: Yes, ma'am. और ऐसी ऐसी मान्यता मिली है कि कुछ लोगों ने चढ़ते हुए देखा है कुछ
7: ये तो फिर सरासर झूठ है भाई।
8: झूठ नहीं, बहुत बड़ी झूठ है। और
7: ये तो झूठ
8: एक
7: है।
8: दिन फिर मुझे, मैं यहीं थी तो फिर कॉल के दौरान मम्मी से पता चला कि किसी के दुकान में कोई रात में आके चिल्लाता है, उसकी आवाज रिकॉर्ड की गई है।
7: ओफो।
8: और मैम जानती हैं कितने दुष्ट बच्चे हो गए हैं जब से ये सोशल मीडिया। और फिर कुछ दिन बाद हम कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं, फिर वो मुझे आवाज भेजी गई तो वो एक मूवी की आवाज थी जिसमें वो लड़की भूतिया मूवी थी तो डरती है।
7: हाँ, हाँ, हाँ।
8: और वो वहीं से
7: कॉपी से वो रिकॉर्ड की गई है।
8: मैम रिकॉर्ड करके कोई बजा रहा था,
7: किसी की शैतानी है।
8: और फिर कुछ दिन बाद पता चला कि वो बजाया जा रहा था।
7: ओके, नहीं नहीं नहीं नहीं, तो ये सरासर जो है ना ये शैतानी,
8: ये सब अफवाह फैलाया जाता है,
7: अफवाहें हैं और कुछ नहीं है। तो भाई इस जानकारी से, इस रियल फैक्ट्स ऑफ जितनी अभी बताया अभी निधि ने, तो उसका कंक्लूजन यही निकल रहा है कि रियल फैक्ट्स ऑफ टुडे यही है कि भाई पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ से ही गर्मी खत्म हो सकती है।
8: जी मैम,
7: ठीक है। तो बाकी जानकारी हम लेंगे अभी, लेकिन उसके लिए लेंगे हम छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे हम सीनियर सिटीजन के बारे में जानेंगे, और या फिर अंशिका आपको बताएंगी कुछ पेड़ पौधों की और जानकारी।
8: मैम नाम मेरा भूल गई आप,
7: निधि
8: जी, अंशिका नहीं,
7: निधि बोला मैंने। अच्छा अंशिका, अंशिका एक्चुअली वो आदत है ना, अंशिका अंशिका
8: जी मैम।
7: तो निधि आप हमें पेड़ पौधों की और जानकारी देंगी अभी?
8: जी मैम, अभी तो पेड़ बाकी ही हैं,
7: अभी बाकी ही हैं। तो पेड़ पौधों की जानकारी हम अभी लगातार, क्योंकि पेड़ पौधों की ही बात चल रही थी, तो हम पेड़ पौधों का ही टॉपिक फिर से लेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। आइए सुनाते हैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे दो गाने, क्योंकि प्लेलिस्ट में मैंने मेंटेन कर दिए हैं। आइए सुनते हैं, उसके बाद आते हैं, फिर से जुड़ेंगे पेड़ पौधों से जुड़ी हुई बातों को लेकर के। आपका पसंदीदा शो सुन सहेली वेट कर रहा है आपकी दोनों आरजेस, आरजे समता एंड निधि।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?

0: पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
1: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगर बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
3: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
2: सच में? क्या खास है वहाँ?
3: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
2: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
3: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
2: और फोटोग्राफी वगैरह?
3: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
2: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
3: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613-949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
2: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
5: गोंडा शहर की धड़कन।
6: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
7: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और साथ में है निधि। तो फटाफट अभी हम शुरू करते हैं, अभी उसी टॉपिक को लेते हैं और उसी टॉपिक को करते हैं कंटिन्यू, क्योंकि पौधे हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि इंडोर होते हैं और कुछ आउटडोर होते हैं, और उनकी देखभाल के लिए आज निधि लेकर के आई है बहुत सारे यूजफुल से टिप्स। तो चले निधि, कुछ और जानकारी आपके तरफ से जान लेते हैं।
8: जी मैम, मैं आपको बताती हूँ घर के बाहर लगाने वाले पौधों के बारे में। घर के बाहर जो पौधे रहते हैं वो आपकी बाहरी सुंदरता घर की बढ़ाते हैं, और घर के अंदर वाले घर की अंदर की सुंदरता। और आपको
7: दी, मेरा प्रश्न ये है कि हम कैसे जान सकते हैं कि कौन से इंडोर प्लांट्स हैं और कौन से आउटडोर प्लांट्स हैं?
8: घर के अंदर लगाने वाले, मैम आपने मनी प्लांट सुना होगा?
7: हाँ हाँ,
8: पहले मुझे लगता था मनी प्लांट से सिर्फ मनी
7: आती है। एग्जैक्टली मेरा भी यही था
8: मैम, पर ये सच बात भी है। मनी प्लांट अगर आप अपने आसपास लगाती हैं तो आपके पास मनी आती रहती है।
7: अच्छा ठीक है, अभी मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दूंगी तब तुम्हारा ये भ्रम टूट जाएगा। चलिए बताइए।
8: ओके, घर के अंदर आप मनी प्लांट लगा सकते हैं, घर की सुंदरता बढ़ाता है, कम धूप में भी बढ़ सकता है। हफ्ते में 2-3 बार पानी दें, मिट्टी बहुत गीली ना रखें, जिससे ये पौधा गीली रखेंगे तो सड़ जाएगा।
7: अच्छा, तो जैसे कहते हैं कि काफी लोग एक बॉटल लेते हैं उसमें उस प्लांट्स को रख देते हैं, तो क्या उससे भी बढ़ते हैं?
8: बॉटल लेते हैं उसमें रख देते,
7: बॉटल पानी भर दिया
8: यस,
7: और मनी प्लांट की उसमें जो उसमें एक लीफ डाल दी?
8: नो मैम, उसकी जड़ें सड़ जाती हैं। कुछ पौधे ही होते हैं जो पानी में लगते हैं, वो उसके पत्ते बहुत बड़े होते हैं। मनी प्लांट को आप ऐसे नहीं लगा सकते हैं। एक होता है स्नेक प्लांट।
7: स्नेक प्लांट,
8: अब ये मत सोचिएगा कि स्नेक प्लांट सांप आ रहा है हमारे घर में।
7: नहीं, उसको लगाने से सांप तो नहीं आएंगे?
8: नो मैम, स्नेक प्लांट लगाने से आपके घर में सांप नहीं आते। पहला ये है कि अगर किसी का घर ऐसी जगह है तो वो जरूर स्नेक प्लांट लाए और अपने घर पे लगाए।
7: बिल्कुल,
8: ये आपके हवा को शुद्ध करता है जो घर में जितना वातावरण होता है, और इसको ज्यादा देखभाल की जरूरत भी नहीं और बढ़ता बहुत तेजी से है। 7 से 10 दिन में एक बार पानी पर्याप्त है।
7: ओके,
8: आपको ज्यादा देखभाल करने की जरूरत नहीं है।
7: ये तो बड़ा पहली बार सुन रहे हैं हम तो।
8: और ज्यादातर महिलाओं के लिए एलोवेरा जो ज्यादातर घरों में पाया जाता है।
7: और एलोवेरा तो बहुत ज्यादा फलित होने वाला,
8: बहुत ज्यादा।
7: हाँ,
8: एलोवेरा हर मायने में आपके घर में होना ही चाहिए।
7: उससे क्या लाभ होता है?
8: मैम आपके बाल नहीं बढ़ रहे हैं, एलोवेरा, दाने निकले हैं, एलोवेरा।
7: अच्छा, ऐसा भी है क्या? बाल नहीं बढ़ रहे हैं तो एलोवेरा लगाएं?
8: यस मैम।
7: तुमने यूज किया है?
8: मैम आप मेरे बाल देख सकती हैं।
7: एग्जैक्टली, तो आप कैसे लगाती हैं उसको?
8: मैं पहले छत पे जाती हूँ, एलोवेरा लेती हूँ, नीचे वाले से भी थोड़ा ले लेती हूँ, फिर उसको दोनों साइड से काटती हूँ।
7: हाँ, जो वो येलो वाला पदार्थ आता है उसको निकाल देना,
8: उसको एक कटोरी में निकाल के पहले अपने बालों में मैं लगा लेती हूँ।
7: अच्छा, जो उसका जेल आता है?
8: जेल होता है। और अपने हाथ पैर मुंह में भी आप लगा सकते हैं। फिर आप अपने बालों को धुल लीजिए। आप हफ्ते में ऐसा दो बार कर सकते हैं, जिससे आपके बाल घने, मजबूत और बहुत सिल्की हो जाएंगे।
7: अच्छा भाई, तो ये तो हम ज़रूर से करेंगे। हमारे यहाँ तो एलोवेरा का प्लांट भी है, और बस खाली आलस में नहीं कर पाते हैं हम तो।
8: और इसमें ज़्यादा पानी भी देने की, जब मिट्टी सूखने लगती है तब ले जाके आप पानी डाल दीजिए।
7: ठीक है, तो अच्छा बता दिया, कल ही मैं इसका उपचार करती हूँ कुछ ना कुछ।
8: मैम स्पाइडर प्लांट, ये भी घर की हवा को साफ करता है।
7: स्पाइडर प्लांट्स के बारे में हमने सुना है कि इसकी पत्तियां रिबन की तरह होती हैं।
8: जी मैम,
7: है ना? हाँ,
8: आपने सही सुना है। और इसको ज्यादा धूप की जरूरत नहीं है।
7: ओके।
8: और आपको हफ्ते में दो बार पानी देने की जरूरत है।
7: वाओ, तो भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। ऐसे ही प्लांट्स के बारे में हमको जानकारी चाहिए, जहां अगर हम लोगों से थोड़ी लापरवाही भी हो जाए तो वो प्लांट सूखे ना।
8: बिल्कुल, और ये आप घर के अंदर सब लगा सकती हैं, जिसके आपके घर के अंदर की शोभा और अच्छी लगेगी।
7: ओके। और कौन सा है?
8: और आप फिर घर के बाहर के प्लांट के बारे में भी नहीं जानेंगी?
7: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, पता है मुझे ना प्लांटिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन हमारी जो छत है ना वो खुली हुई है, जिसके कारण से ना जो बंदरों का आवागमन होता है और पूरे प्लांट्स खराब कर जाते हैं, पर मुझे बहुत दुख होता है अब, लेकिन मैं बहुत सतर्क हो गई हूँ। जैसे बंदर आते हैं ना, मैं बस कुछ नहीं करना होता, डंडा सामने रख दो खाली, तो उनको लगता है कि हाँ मतलब अब जो है ना कुछ होने वाला है।
8: आप बताएं, आप घर के बाहर पहला आम, जो सीजन चल रहा है, आम सबको पसंद होगा। और अब तो ऐसे आते हैं कि एक पौधे में दो टाइप्स के आम होते हैं।
7: मैं,
8: आपने मैम नहीं सुना
7: ना?
8: आप जब प्लांट लेने जाते हैं तो वहाँ आपको पौधे दिए जाते हैं। उस पौधे में जैसे आपने पिंक गुलाब सुना होगा, तो वो पिंक गुलाब पिंक कैसे होता है? उसमें एक वाइट गुलाब और रेड गुलाब को ऐसे काट के लगा दिया जाता है, और जो फिर जो गुलाब निकलता है वो पिंक रहता है।
7: ओह माय गॉडनेस, हमें लगा कि ये ऐसे ही होता है, मतलब अपने हिसाब से ही।
8: नो मैम, अपने हिसाब से नहीं होता है। ऐसे फिर वो पिंक गुलाब हो जाता है। ऐसे आम आप लेने जाएंगे तो उसके पौधे लाइए और आप लगाइए, और सीजन में दो प्रकार के आम खाइए। मैंने खुद लगाया है।
7: वाह, ये कैसे?
8: मैं गई थी अपने गांव पे, गई थी, मंदिर तो मैं भूल गई हूँ।
7: अच्छा, तो वहाँ
8: बहुत फेमस मंदिर है मैम, बलरामपुर में, आप जानती होंगी।
7: तुलसीपुर?
8: जी, तुलसी, सॉरी मैं भूल गई,
7: तुलसीपुर माता जी का मंदिर।
8: जी, फिर उधर से मैं आ रही थी तो मैंने प्लांट देखा, फिर मुझे प्लांट बहुत पसंद है। और हमारे वहाँ बगीचा बड़ा सा है, तो धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है, तो सबके मन में वो रहता है बगीचा खत्म हो जाएगा, गर्मी में क्या होगा। फिर हमने प्लांट लिया और लगाया, और वो पौधा इतना बड़ा हो गया, और उसमें दो प्रकार के आम फलते हैं।
7: अरे मतलब एक ही पेड़ में दो प्रकार के?
8: जी।
7: वो कैसे?
8: एक सीजन रहते हुए उसमें आम लगता है, और जब पूरा आम खत्म हो जाता है सीजन का, फिर एक आम होता है, और वो इतना बड़ा बड़ा होता है, सबसे लास्ट में पकता है।
7: तो अभी वो पेड़ है?
8: जी मैम।
7: तो वो आम हमें कब खिलाया जा रहा है?
8: मैम जब आप हमारे यहाँ चलेंगी।
7: तो कहाँ, गाँव चलना पड़ेगा इसके लिए?
8: मैम अब आम आएगा नहीं।
7: अच्छा, आम नहीं आएगा, तो हमें कब चलना है? मुझे अभी चलना है कि अभी शो के बाद चलना है कि कल चलना है?
8: मैम जब आम का सीजन खत्म हो जाए तब।
7: ओह माय गॉड, यानी जुलाई में चलना है?
8: जी मैम।
7: ठीक है, तो पक्का लिसनर्स भी आप जान लीजिए, क्योंकि निधि ने मुझे इनवाइट किया है, तो मैं जुलाई में इसके घर जरूर जाऊंगी, और ये जो आम की वैरायटीज है ना, हम इसे जरूर से अपने लिए ले करके आने वाले हैं।
8: और अमरूद का पेड़।
7: ओके, अमरूद
8: जो हर किसी को पसंद होता है। मैं तो चुरा के खाती थी मैम।
7: अच्छा,
8: दूसरों
7: अच्छा,
8: के
7: नहीं थी। एक चीज मुझे सच्ची बताना, मार्केट में ठेले पे जो मिलते हैं अमरूद, और खास करके जामुन, ठीक है, तो क्या हम लोग उसको खरीद के खा नहीं सकते हैं? खा सकते हैं, लेकिन जो अमरूद पेड़ में लगे रहते हैं उसको तोड़ के खाने का जो एक अलग सा एक अनुभव होता है, मजा होता है, ऐसे ही सेम जामुन, जामुन जब पट पट नीचे गिरते हैं
8: वो
7: तो
8: ज्यादा
7: काफी लोग क्या करते हैं ना उसके नीचे कुछ बिछा देते हैं।
8: यस मैम।
7: हाँ, ताकि वो उसी पे गिरे।
8: मैम पर ये मजा दूसरे के पेड़ में और जो बहुत रोक रहा हो तोड़ के खाने में ज्यादा आता है।
7: ये तो है।
8: और आपने जो जामुन कहा उसे खाने से, इस गर्मियों में तो सबसे ज्यादा जामुन खाना चाहिए।
7: क्या होता है उसको खाने से?
8: आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होती है।
7: ओके।
8: और खून भी बढ़ता है
7: जामुन खाने से।
8: जी मैम।
7: अरे वाह, फिर तो हम लोगों को रोज खाना चाहिए भाई, इसी सीजनल में तो आते हैं जामुन।
8: जी मैम। तो आप घर के बाहर अमरूद का और जामुन का पेड़ लगा सकते हैं। और लड़कियों का सबसे पसंदीदा फूल क्या है?
7: कमल। गुलाब।
8: जी मैम, गुलाब।
7: गुलाब,
8: गुलाब जो आपको बहुत पसंद होगा, आप उसको भी घर के बाहर लगाइए।
7: पर पता है उसकी प्लांटिंग करने के लिए ना हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है गुलाब के। मैंने ऐसा सुना है कि बहुत ही रेयर में उसकी जो कली होती है, जो कलम होती है उसकी, वो बहुत रेयर में जाकर के फलती है और लगती है। जहाँ अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो वो जो उसकी कलम होती है वो सड़ जाती है।
8: मैम अब गुलाब लड़कियों को पसंद है, थोड़ा ध्यान दीजिए। लड़कियों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जहाँ उनको एक बात बुरी लगी सब खत्म हो जाता है।
7: ये तो बात सही कह रही है, बिल्कुल।
8: पर मैम गुलाब को आप अच्छे से ध्यान रखिए, वो लग जाता है, मैंने देखा है। और गांव में मैंने ज़्यादातर देखा है, हम लोग के पास एक गमला होता है तो उसमें उतनी मिट्टी होती है जो बिल्कुल सेम रहती है, पर अगर आप ज़मीन में लगा रहे हैं वहाँ की मिट्टी बदलती है और आप खाद टाइम टाइम पे डालते हैं। ये सच है कि गुलाब के पेड़ को लगने में थोड़ा टाइम लगता है और कभी कभी सड़ जाता है
7: जी,
8: तो वो ख़राब हो जाता है। पर अच्छे से ध्यान रखिए, सही से वो लग जाता है।
7: अच्छा, तो अब हम प्लांटिंग के बारे में थोड़ी सी और जानकारी जानेंगे कि उसकी हर एक पौधों की, हर एक पेड़ पौधों की साफ सफाई पर और उसकी प्लांटिंग को एक नए तरीके से, या फिर कुछ ऐसे टिप्स जिसको हम लोग रोज करें तो हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो फलित रहें।
8: पहला, समय पर पानी दें लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। जरूरत से ज्यादा हम लोग भी खा लेते हैं तो दिक्कत होती है।
7: अच्छा, मतलब पानी भी ज्यादा नहीं देना चाहिए?
8: नहीं, जरूरत से ज्यादा नहीं। पौधों की उनकी जरूरत के अनुसार धूप दें। कुछ पौधों को कुछ लोग धूप में ही छोड़ देते हैं। हाँ। बस शाम को जाते हैं कि पौधों में पानी डालने आए, पर धूप में वो पूरा दिन था उसका आप ध्यान नहीं रखते हैं, सड़ जाते हैं। महीने में एक या दो बार जैविक खाद डालें, और अगर आपके पास नहीं है तो आप मंगवाएं, और अगर आपके जानकारी में किसी ने गाय वाय पाली है तो आप वहां से मंगवाएं।
7: जी बिल्कुल,
8: वो बहुत ज़्यादा शुद्ध होता है। सूखे पत्ते और टहनियों को समय समय पे हटाते रहें। कुछ पत्ते के प्लांट को धुलने या पोंछने होते हैं, उसको टाइम टाइम पे साफ करते रहें। पौधों को कीड़े से बचाने के लिए नीम का पानी छिड़क सकते हैं। देखिए, पौधों के साथ पौधे हैं जो एक दूसरे का ही वो इलाज कर रहे हैं।
7: बिल्कुल बिल्कुल।
8: और गमले की मिट्टी समय समय पर बदलें।
7: बदलते रहें।
8: जी मैम, क्योंकि पौधे भी हमारी तरह जीवित होते हैं, उन्हें भी प्यार, देखभाल, पानी, धूप की जरूरत होती है। जितना स्नेह हम उन्हें देंगे वो उतनी हरियाली और खुशियाँ हमें लौट आते हैं।
7: एग्जैक्टली यार, ये तो बिल्कुल सही वाली बात बोली है कि हम जितना पौधों को प्यार और उनकी केयर करेंगे ना, वो बदले में हमें उतनी ही हरियाली और वो उतना ही अच्छे से हमें फल देंगे, फूल देंगे।
8: यस मैम
7: जी,
8: आपने ये सुनी होगी कि एक पौधा लाख बेटों के बराबर होता है।
7: बिल्कुल बिल्कुल।
8: आपने एक पौधा लगाया है जवानी में, बुढ़ापे में वो आपको बहुत छांव देता है।
7: बिल्कुल, एग्जैक्टली। ये तो बहुत सच्चाई वाली बात है भाई, कि पेड़ पौधों की जो देखभाल बहुत केयर से, बहुत अच्छे से करनी चाहिए। तो लिसनर्स कुछ आ गए हैं अभी, जिसमें से प्रमुख जी हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून आरजे समता मैम एंड अंशु मैम जी। अंशु मैम आपकी नहीं आई है आज। और दीपांशी जी, प्रीति जी एंड दीपांशी एंड ऑल्सो। चलिए, तो अब हम यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार हम आएंगे सीनियर सिटीजन्स के बारे में कुछ जानकारी लेने के लिए, जो कि सीनियर सिटीजन्स हमें बताएंगे कि उनके लिए जो डाइट चार्ट होता है, उनके लिए जो केयर चार्ट होता है, हम उन्हें लेकर के आ जाए हैं। तो आइए हम ले चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से एक सॉन्ग की ओर, और सॉन्ग के उस पार आएंगे हम लेकर के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: वेलकम बैक दोस्तों, आगे आपकी आरजे समता और साथ में है आज मेरे निधि। देखो अंशिका फिर निकलने वाला था लेकिन निधि है। और बता दूं कि प्रमुख जी, आज ही मैंने वो अपनी प्लेलिस्ट में गाना लगाया था मेरे हमसफर, और स्टार्टिंग में ही चला दिया। थोड़ी ही देर अभी पहले मैंने ये गाना बजा दिया है, और अगर आप पहले सुन पाते तो शायद आज वो गाना आप सुन पाते। जी हाँ, मुझे पता है कि आपको पता है कि ये सॉन्ग मेरा फेवरेट सॉन्ग है। चलिए तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि सीनियर सिटीजन्स का है। और सीनियर सिटीजन्स हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, वो हमारे घर की शान बान आन होते हैं, ये सभी को पता है। लेकिन कुछ घर के लोग जो होते हैं ना, उन्हें घर का बोझ समझते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते हैं, और उनको ये लगता है कि अब इनकी उम्र पूरी हो चुकी है और अब ये किसी भी काम के लायक नहीं है। क्यों निधि?
5: जी मैम, आपने सही कहा। अक्सर हम देखते हैं कि दादा दादी या घर के बड़े बुजुर्ग कुछ बातें बार बार दोहराते हैं, पुरानी यादें सुनाते हैं, या छोटी छोटी बातों पर चिंता करने लगते हैं।
4: बिल्कुल,
5: कई बार हमें यह आदतें अजीब लगती हैं, लेकिन इसके पीछे उम्र का अनुभव छुपा होता है।
4: और पता है, जैसे इसमें कहते हैं ना कि हमने अपने सफेद बाल जो है ना, वो धूप में नहीं किए हैं।
5: जी मैम,
4: ऐसा होता है ना,
5: ऐसा तो, होता हाँ, है।
4: पर पता है, जैसे कि चाहे वो दादा दादी हो, चाहे अपनी माँ ही क्यों ना हो, पिता क्यों ना हो, जब वो बड़ी एज में आते हैं तो उनमें ये चीजों को बार बार दोहराने की, उन्हें बार बार कहने की वो आदतें हो जाती हैं। लेकिन हम बच्चे, हम लोगों को लगता है यार कितना बोलती है,
5: कितना अजीब हाँ। है एक ही बार को बार
4: हाँ।
5: मैम, उनका अनुभव होता है, वो जो बार बार कहते हैं उनका मन है वो अगली पीढ़ी तक वो अनुभव जाए
4: हाँ।
5: जो उन्होंने फेस किया हो शायद आपको ना करना पड़े।
4: बिल्कुल बिल्कुल,
5: इसीलिए वो आपको जागरूक कह रहे हैं। पुरानी बातें याद करना, उन्हें अपने पुराने दिन का अनुभव होता है, वो साझा करना चाहते हैं कि उन्हें अच्छा लगता है पुराने दिन में जब आप फैसले नहीं ले पाते थे और वो आपके लिए ये करो बेटा ये सही होगा, ये पहन लो ये सही होगा
4: हाँ।
5: और अब आप समझदार हो गए हैं तो आप उनकी बातें इग्नोर करते हैं कि नहीं मैं ये करूँगा, तो वो इसलिए अपनी बार बार बातें दोहराते हैं।
4: एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल। तो मतलब ये आदत बड़े बुजुर्गों में होना क्या, कितने लोगों को लगता है कि इन आदतों के साथ उन्हें साथ में रखना चाहिए, उन्हें उनके साथ में जीना चाहिए?
5: मैम कितने लोगों, सबको रखना चाहिए, उन्होंने आपको बड़ा किया, ये आपका फर्ज है, उनको आप अकेला नहीं छोड़ सकते। अकेलापन महसूस कराना उम्र बढ़ने के साथ ये बहुत गलत है। एक उम्र के बाद हम लोग भी उसी एज में पहुंचेंगे, हमारे बच्चे वैसा हमारे साथ करेंगे तो कैसा लगेगा?
4: बिल्कुल,
5: आप चार लोग जा रहे हैं, आप उनको भी लेके जाइए, आप उन्हीं के बच्चे हैं, जो आपके पास है वो उन्हीं की देन है
4: हाँ।
5: उनके मेहनत से ही आप बड़े हुए हैं।
4: बिल्कुल,
5: ये बार बार जो वो दोहरा रहे होते हैं वो पूरे परिवार की चिंता कर रहे होते हैं, उनको सबकी फिक्र होती है।
4: बिल्कुल,
5: क्योंकि आपको उन्होंने उस स्टेज से पाला है, उनको आपने उन्होंने आपको खिलाया है, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि कोई आप गलत फैसला लें या गलत डिसीजन लें। हमारे यहाँ अभी भी होता है, हम नानी नाना के यहाँ जाते हैं तो मेरे नाना का भी ये होता है, उड़ती चिड़िया के मैं पंख गिन लेता हूँ।
4: ये डायलॉग जो है ना, ये बड़े बुजुर्ग हमेशा से देते हैं, घर के बड़े हमारे हमेशा कहते हैं कि तुमने क्या देखा है, मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, मैंने अपने तजुर्बे से बाल सफेद किए हैं। पर मुझे मैं फिर जब जो मतलब जो बच्चे होते हैं ना आजकल के, तो सभी के बालों में सफेद ही आ गए, तो वो लोग क्या कहते हैं, तो हमारे बाल भी तो देखो सफेद है, हम लोग के पास भी बहुत तजुर्बा है। तो इस तरीके की जो बहस होती है ना, ये बड़ी अच्छी लगती है। और वाकई में मैं क्या ही बता दूं। प्रमोद जी लिख रहे हैं कि समता मैम के साथ बोलने वाली दूसरी लड़की कौन है, नई आरजे है क्या? कमिंग अप आरजे है प्रमोद जी, इनका नाम है निधि। तो अभी ये हमारे साथ में डीएमसी की स्टूडेंट है एंड ये ट्रेनिंग पे है और इतनी अच्छी जानकारी दे रही है, इसका मतलब है कि ये बहुत जल्दी ही आरजे बन जाएंगी। ये आपके लिए मैसेज है निधि।
5: थैंक यू सो मच मैम।
4: अगर आप प्रमुख जी भी पूछ रहे हैं आपके लिए तो आप बता दें अपने लिए कुछ।
5: थैंक यू प्रमुख जी।
4: तो हम उसी पे कंटिन्यू करते हैं, फिर से आप कुछ कह रही थी
5: जी। तो फिर आता है उनकी देखभाल कैसे करें, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं मैंने देखा है कि एक समय के बाद उनसे सब लोग कट ऑफ करने लगते हैं।
4: Exactly.
5: आप चार लोग हैं तो वो आप ही का हिस्सा हैं, उनको अपने पास रखिए, देखभाल करें, रोज कुछ समय उनके साथ बैठकर बात करें। आपको नहीं लगता मैम करना चाहिए?
4: हाँ, exactly.
5: मेरे घर में तो ऐसा है कि हम जब चार लोग बैठते हैं तो किसी के पास फोन होता है तो मैं टोक देती हूँ, अब तो फोन रख दो। पर
4: बिल्कुल, बिल्कुल।
5: चार लोग तो चार फोन लेके बैठ जाते हैं, कोई बात ही नहीं होती है।
4: और पता है, और फिर उन लोगों को लगता है कि यार हमसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, और एक ही कमरे में चार पांच लोग बैठे हुए हैं, सबके हाथ में मोबाइल है।
5: वही
4: तो भाई, ये सब चीजें फिर नहीं हो सकती हैं। और इन सब चीजों को ध्यान दें आप लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि अगर वो बोल रहे हैं और अगर आपको सुनने का मन नहीं भी है तब भी उनको बोलने दिया करिए कि हाँ ठीक है तुम अपने मन की भड़ास
5: जी,
4: कोई ऐसा नहीं।
5: उनकी बातों को ध्यान से सुने, भले ही वो बात बात दोहरा रहे हो। कभी कभी होता है वो एक बात दोबारा, हमारी जैसे एज बढ़ती है एक तो हमें कम सुनाई देने लगता है और हम चीजें भूल जाते हैं एज के हिसाब से। मैं अपनी इसी एज में चीजें भूल जाती हूँ और वो जिस एज में होते हैं आप सोच सकते हैं।
4: एग्जैक्टली, और बिल्कुल सही बात है, इस बात को बिल्कुल आप लोग भी ध्यान दीजिए। और अगर आपके घर में बड़े हैं तो उनका आदर सम्मान करना हमारा फर्ज है। तो चलें एक सॉन्ग की ओर चलते हैं और जल्दी से आएंगे क्योंकि टाइम जो है वो भाग रहा है अब। और मुझे अभी मुझे बताना है आप लोगों को हमारे घर के बड़े बुजुर्गों के लिए एक डाइट चार्ट, जो कि बहुत ही है एंड जिसको कहते हैं ना रूटीन डाइट चार्ट है एंड सुपर डाइट चार्ट है, जिसको आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आपके घर में बड़े हैं तो आप उन्हीं के हिसाब से उन्हें उनका डाइट बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं ब्रेक की ओर।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में आज मेरे साथ है निधि। तो आइए सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ ऐसे सुपर डाइट को हम आज बताने जा रहे हैं जिसके अनुसार आप अपने खान पान के को मेंटेन कर सकते हैं। देखिए, बढ़ती उम्र में शरीर को ऐसी डाइट देनी चाहिए जो हल्की, पौष्टिक और आसानी से पचने वाली हो। क्यों निधि?
4: जी मैम, आपने सही कहा।
3: ठीक है, तो सबसे पहले मॉर्निंग में क्या करना है कि आपको एक गिलास गुनगुना पानी देना है एंड 4-5 भीगे हुए बादाम, अगर बादाम से उनको कोई एलर्जी ना हो तो, और 1-2 अखरोट या थोड़ा सा भीगा हुआ चना, क्योंकि जो ये चीज़ें अगर गर्म करती हैं, हैवी होती हैं, तो आप उन्हें एक हफ्ता दे करके देखिए, अगर उनको लग रहा है कि हैवी हो रहा है तो फिर आप उनको चेंज कर सकते हैं। 8-9 बजे के बीच में आप उन्हें नाश्ता दे सकते हैं जिसमें दलिया, ओट्स, पोहा और उपमा, या फिर मूंग दाल का चिल्ला या बेसन का चिल्ला जो कि होता है बहुत पौष्टिक। उसके बाद में मौसमी फल जिसमें सेब, पपीता, अमरूद और जो भी उनको पसंद हो। एंड दोपहर का भोजन 2 रोटी गेहूं के साथ बाजरा या ज्वार भी मिला करके उन्हें दे सकते हैं। दाल या पनीर की सब्जी और हल्की कोई भी एक सब्जी, हरी सब्जियां, दही, छाछ अगर उनको पसंद हो या उनके अनुकूल, सलाद जरूर से उन्हें देना चाहिए। शाम का नाश्ता जिसमें ग्रीन टी या हल्की चाय जो बहुत कम दूध वाली हो, भुना हुआ चना, मखाना या स्प्राउट्स, या फिर कोई भी एक फल जो उनको लगे कि हाँ मुझे पसंद है। रात का खाना 8-9 के बीच में उन्हें दे देना चाहिए और वो भी हल्का, जैसे खिचड़ी, दलिया या फिर हल्की बहुत पतली रोटी और सब्जी। सूप दे सकते हैं सब्जियों का, और सोने से 2-3 घंटे पहले ही आप उन्हें भोजन करा दें। प्रोटीन के लिए दाल, पनीर, दही, मूंग, सोया, आप ये सब चीज़ें ले सकते हैं। उसके बाद में कब्ज के बचाव के लिए उन्हें फाइबर, फल और पर्याप्त पानी की मात्रा जरूर देते रहना चाहिए। हड्डियों के लिए कैल्शियम और विटामिन डी युक्त आहार उन्हें जरूर से देना चाहिए एंड थोड़ा सा रोज उन्हें चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए और थोड़ा सा हल्का व्यायाम यानी कि योग व्यायाम उन्हें देना चाहिए। तो ये था दोस्तों आज के लिए डाइट चार्ट, उनके लिए आप उन्हें जरूर से अपनाएं और उनके लिए एक स्वस्थ और एक कहते हैं ना कि पौष्टिक एंड स्वस्थ शरीर की देखभाल करें। क्यों मेरी?
4: जी मैम, जैसा आपने कहा कि रात में हल्का भोजन, हाँ। पर हमारे यहाँ का है जो हैवी भोजन होता है वो रात में बनाते हैं।
3: हैवी भोजन रात में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब हमें दे हम दोनों को इजाजत, हम दोनों फिर से कल मिलेंगे सेम प्लेस सेम टाइम पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय
4: बाय बाय।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
4: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
5: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
6: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन

0: इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें एल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 27 11 827।
0: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा, जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन। और जेंट्स के लिए, जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह। तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 9125707093 और 9696674406। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
3: अरे सुना?
4: क्या?
3: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
4: वाओ!
3: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853546।
5: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब?
5: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

हाँ जी दोस्तों, तो वक्त हो चला है बिल्कुल से आपके उसी शो का जो कि है आपका पसंदीदा फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम कॉलर ट्यून गोंडा। लेके हाजिर हूँ मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा। 3:07 आज 2 मिनट लेट हूँ, कारण है भाई आप लोग की कॉल्स लगातार आ रही है और आज भी कॉल हमें ही पिक करना है। तो खैर कोई बात नहीं, अभी भी आपकी कॉल्स लगातार हमारे पास आ रही है, लेकिन हम उस ओर मुड़े उससे पहले बता दे आपने ट्यून करके रखा हुआ है 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन यानी कि रेडियो ज्ञानस्थली और उसके स्टूडियो का नंबर है 6933-16429 जिस पे आप ढेर सारी डिमांड्स भेजते हैं हम तक, अपना प्यार पहुंचाते हैं, अपना डेडिकेशन भेजते हैं, अपने उन लम्हातों को भी कभी कभी शेयर करते हैं। जी हाँ, जो आपने कभी कहीं तन्हाई में या कभी किसी के साथ कॉफी पे या कभी ऐसे ही यूं ही बिताई है और उस दौरान जो नगमे सुने हैं वो हम तक पहुंचाते हैं। तो बेशक आज भी आप कॉल करने वाले हैं और काफी सारी कॉल्स आ भी गई और बहुत सारी आएंगी भी, आती रहेंगी जैसे अभी आ रही हैं। ओ माय गॉड, कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं। तो चलिए फिलहाल आप सुनिए आज की प्लेलिस्ट का हमारी पसंद का ये गाना, फिर हम आते हैं आप सभी की डिमांड्स को लेकर के। फिलहाल आज का ये गाना हमने किसी खास के लिए प्ले किया है। भाई ये बताइए, हमको एक सवाल का जवाब चाहिए, आप सभी से चाहिए, जो जो सुन सकता है जो जो दे सकता है, ये कहाँ की नाइंसाफी होती है। कोई अगर आपसे कहता है 5 मिनट में हम कॉल बैक करते हैं, उसके बाद में पूरी रात गुजर जाए और आपको कॉल ना आए, मतलब ये कहाँ की नाइंसाफी है। ऐसा हर किसी के साथ होता है ना, और ख़ास करके तब गुस्सा आता है जब कोई आपको बहुत ज़्यादा वाला अर्जेंसी हो और आपका दोस्त आपको बोले बस 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट और 2 मिनट के बाद में उसका 2 मिनट आता ही नहीं हो। हाउ रूड इज़ दिस, है ना। खैर कोई बात नहीं, लेकिन उन सभी के लिए जो ऐसे वाले बहुत महान वाले कृत्य करते हैं, उन सभी के लिए डेडिकेट है आज का ये पहला नगमा आपकी अपनी आरजे आकांक्षा की प्लेलिस्ट, जिससे एंजॉय करते रहिए। आते हैं आज की फर्स्ट डिमांड के साथ, फिलहाल ये गाना एंजॉय करें।

फिरते हैं। हाँ जी, तो भाई नाराजगी में कहीं बिछड़ मत जाइएगा अगर थोड़ा सा कॉल देर से आए, पर आपके पास में वो है जो शायद किसी को नसीब भी नहीं होता है, तो थोड़ी सी नाराजगी बनती है लेकिन फिर मान भी जाइएगा। चलते हैं अब आज की पहली वाली डिमांड की ओर, और बता दें दोस्तों आज की डिमांड्स, व्हाट आर डिमांड्स, आप लोगों की क्या डिमांड आई हुई है। वाह वाह वाह वाह वाह, हर किसी की डिमांड एक से बढ़ के एक है। और एक और बात, आज मेरे पास में दो दो डिमांड्स ऐसी आई हुई है जो दो दो लोगों की सेम डिमांड है, दो नहीं तीन लोगों के साथ है। सो आज फर्स्ट टाइम ऐसा कोइंसिडेंस हुआ है मेरे साथ में के हम रिवील नहीं करेंगे, वक्त आने पे ही करेंगे। तीन लोगों की मतलब तीन गानों की सेम सेम डिमांड आई, मतलब छह लोगों को मैंने मुझे लगता है मेरी जो हैबिट है ना वो चस्पा कर देने वाली, वो आज कायनात ने, इस यूनिवर्स ने भी वैसे ही कुछ बना लिया कि छह लोगों की डिमांड मैं तीन में सुलटाने वाली हूँ। फिलहाल एंजॉय करते हैं आज की पहली डिमांड को, और ये डिमांड हमारे पास में आई है राजेश वर्मा, राकेश वर्मा जी की, जो हमें सुनते हैं हमारे बगल से, यानी कि दुखरन्ना से। गाना बहुत ही बढ़िया वाला है और हमको अमरीश जी की याद आ गई, ये उनका सिग्नेचर सॉन्ग हुआ करता था बाजीगर मूवी से, बहुत प्यारा सी डिमांड। आप एंजॉय करें तीन से चार के सफर में, आपके अपने होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा को, और शो है आपका फोनी फरमाइशी कार्यक्रम कॉलर ट्यून गुंडा।

भाई ये गाना सुन के तो हमें हमारे दोस्तों की याद आ गई और वो दौर याद आ गया जब हम भी लिसनर हुआ करते थे। क्या बात है, मजा आ गया। थैंक यू सो मच डियर राकेश वर्मा जी जो हमें सुनते हैं दुखरना से। और अभी बारी है भाई हमारे पंडित जी की डिमांड की ओर, और पंडित जी तो आज क्या ही बताएं, क्या स्वाद लेके आए हैं सॉन्ग्स में। बिन बुलाए बराती मूवी से एंजॉय करते हैं ये प्यारी सी डिमांड। आप भी हम भी सब मिलके अचार बनाएंगे आज, किसका वो आप इस गाने के माध्यम से जानिए।

समाचार तो कोई बना ही नहीं सकता, लेकिन सुपर टेस्टी सॉन्ग था, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच पंडित जी, बहुत ही प्यारी डिमांड लेके आए और सभी को काफी पसंद आया। चैट बॉक्स में भी, चैट बॉक्स की ओर भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की इतनी प्यारी प्यारी डिमांड्स है, ज्यादा से ज्यादा प्ले करने का मन कर रहा है। तो लगातार गाने इतने प्यारे हैं कि मैं खुद को रोक ही नहीं पा रही, और इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे अब हम रविंद्र जी की डिमांड की ओर। फिर से एक और 90s का बेहतरीन सॉन्ग आप सभी के लिए पेश खिदमत करती है आपकी अपनी आरजे आकांक्षा, 3 से 4 के सफर यानी के कॉलर ट्यून गोंडा के साथ।

हमें लगता है कि हमें भी अपना नाम ऐसे ही रख लेना चाहिए, कुछ एक आध नामकरण कर ही लेना चाहिए। जब हमारे पास में सवाल आते हैं हमारा गाना कब है, हमारा नंबर कब है, तो बस यही बताना चाहिए, प्रेमी आशिक आवारा, जब इसका मन कहेगा तब बजाई देगा। ऐसी बात नहीं है दोस्तों, जब बारी आएगी जरूर बजेगा। दरक्षा सारी जी और प्रमुख जी पूछ रहे हैं, भाई हमरो बताए दो कब नंबर आई, तो दोनों जन के नंबर साथ ही ना ही कहेगी यार, दोनों जन के गाना सेम है सेम बात है। अब बाकी आप समझदार हैं और चलते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर। और ये डिमांड किसी और की नहीं है भाई, बहुत दिनों से हमारे प्यारे लिसनर हैं जिनका नाम है मुमताज अंसारी साहब, और बड़े डिसेंटली वे में हमको रोज कॉल करते हैं, रोज अपनी डिमांड पहुंचाते हैं हम तक, और इनकी डिमांड नहीं पूरी हो पाती। तो आज इनके गाने की बारी है। गाना बहुत ही खूबसूरत है और मैं उनको डेडिकेट करूंगी जो मेरे दिल के सुकून है। चलिए बढ़ते हैं इस वाली डिमांड की ओर और सुनाते हैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा नगमा।

शर्मा जी और मुमताज अंसारी साहब की डिमांड के बाद अब बढ़ेंगे देवी प्रसाद जी और सुनील कुशवाहा जी। भाई दोनों की डिमांड सेम टू सेम है और ये मेरा बहुत पसंदीदा सॉन्ग है और इस पे मैंने एक रील भी बनाई थी आपको बता रहे हैं, और फूल को अपने सर पे सजा के बनाया था, बड़ा मस्त रील बना था। तो चलते हैं इस गाने की ओर और ये गाना मैं डेडिकेट करूंगी हर उस प्यारी प्यारी लड़की को जो अपने घर की रौनक है। तो उन सभी रौनकों के लिए, यानी कि उन सभी स्त्रियों के लिए जो जिस भी रूप में जहां भी कार्यरत है, मतलब इस दुनिया की सभी लड़कियों को डेडिकेट करते हैं इस गाने को। बहुत प्यारी सी डिमांड है देवी जी और हमारे सुनील कुशवाहा जी की जो हमें सुनते हैं MP से। आइए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को।

आज की प्लेलिस्ट क्या प्लेलिस्ट है, माय गॉड व्हाट अ प्लेलिस्ट, मैं बता ही नहीं सकती। अभी लगातार कुछ और नगमे ऐसे ही आप सुनने वाले हैं, एक से बढ़के एक सॉन्ग। और इस गाने के बाद होगी हमारे प्रमुख जी और दरक्षा जी का सॉन्ग। भाई आज दो जोड़ियों ने ऐसी बाजी मारी कि सेम सॉन्ग निकला है। और उसके बाद नेक्स्ट सॉन्ग है एक और जोड़ी की, जिनका नाम है नीना जी और नेहा जी। भाई तीन जोड़ियों ने सेम टू सेम सॉन्ग भेजा है, एंजॉय करते रहिए। और उसके बाद आते हैं चैट बॉक्स की ओर। फिर नेक्स्ट सॉन्ग होगा हमारे के गुप्ता जी का फ्रॉम तिरंगा कॉम्प्लेक्स। 3 से 4 के सफर में आप एंजॉय करें अपनी अपनी आरजी आकांक्षा को इन योर ओन शो फोनी फरमाइश कार्यक्रम कॉलर ट्यून गोंडा। और ये गाना आप सभी लेडीज के लिए है।

मोहम्मद भाई। और इसकी जो लास्ट लाइन थी, हर गम से अनजान है खुशियों में तू है पली, ये मेरा फेवरेट लाइन है इस पूरे सॉन्ग का। व्हाट अ सॉन्ग, व्हाट अ डिमांड, थैंक यू सो मच, मींस अ लॉट डियर लिसनर्स। और हाँ, एक बात और मैं भूल जाती हूँ और मुझे लगता है कभी मुझे डांट भी पड़ जाएगी इस बारे में, वो है भाई आयत जी। और आयत इरफान और रिजा इरफान भी हमें सुन रहे हैं, दरक्षा अंसारी जी और प्रमुख जी के अलावा। तो ये डिमांड इन चारों लोगों की है, ना कि ओनली 2%। और हाँ जी, एक और बात कहना चाहूंगी, मनी शर्मा जी, दो शेरों की जोड़ी तो अच्छी लग रही है आपकी डीपी में, लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा चांद था, मैं चाहती हूँ आप अपनी डीपी में उसी चांद को रखें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड हमारे प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे लुधियाना वाले प्रमुख कुमार जी, दरक्षा अंसारी जी और आयत इरफान जी और रिजा इरफान जी की ओर से आई है। भैया चार लोगों की डिमांड है, चार लोगों की डिमांड है, दमदार डिमांड है, और सुनना पड़ेगा बड़ा ही ध्यान लगा के, सुनिए इस गाने को।

दोस्तों और वक्त हो गया है आप सभी की उस डिमांड को लेने का जो एक और डिमांड हमारे पास में आई है दो जोड़ियों की, मतलब लगातार तीन जो गाने हमारे पास में दो दो जोड़ियों की आई थी। फिलहाल एक डिमांड चार लोगों की थी, हमको बाद में याद कराया गया वरना हमको डांट भी पड़ती क्योंकि तीन चार दिन से ऐसा ही हो जाता है। और 3:34 करेक्ट हो रहे हैं बाई ओर स्टूडियो क्लॉक और इस गाने के बाद हम आएंगे आप सभी के चैट बॉक्स की ओर यानी आप सभी के पैगाम की ओर। और आज एक बड़े ही प्यारा सा पैगाम आया है हमारे लिए भाई, हम पढ़ना चाहेंगे लेकिन उससे पहले सुनाते हैं आप सभी को अपनी पसंद का नहीं आप ही के पसंद का यानी कि नीना जी और हमारी नेहा जी चंगू मंगू की जोड़ी की ओर से आई हुई ये डिमांड है और इसमें हम खुद को भी इंक्लूड करना चाहते हैं क्योंकि हम भी हैं वो जो ये गाना कहना चाहता है। क्या आइए सुनिए हमारे साथ आप सभी मिलकर 3-4 के सफर में बहुत ही उम्दा सा 90s का एक और सॉन्ग।

बालपन से बढ़िया कुछ नहीं होता। लाइफ को अगर आपको बहुत अच्छे से एंजॉय करना हो और अपनी लाइफ को स्मूथली चलने देना है तो भाई पागलपन से बेस्ट कुछ भी नहीं है। इसलिए थोड़े थोड़े पागल हो जाइए इस गाने के साथ में। और आज की प्लेलिस्ट, व्हाट अ प्लेलिस्ट।

आज और देखते हैं कि पागलपन से भरे हुए पैगाम कैसे दिखते हैं। आइए पढ़ते हैं, आप सभी की चैट बॉक्स की ओर आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद में भाई हमारे प्यारे लिसनर जिनका नाम है मुस्तफा, जो हमें सुनते हैं सऊदी अरेबिया से, भाई इन्होंने कहा है लड़कियों के लिए तो हो गया, आपके पास में गाना था आपने डेडिकेट कर दिया, हम पुरुषों का क्या। तो आप सभी के लिए एक स्पेशल वाला सॉन्ग है, थोड़ा सा तंज कसेंगे, थोड़ा सा रंज भरेंगे और थोड़ा सा रंगदारी करेंगे और तब बताएंगे भैया आप लोगों पे कौन सा गाना सूट करता है। लेकिन उससे पहले चलते हैं चैट बॉक्स की ओर। और चैट बॉक्स में जो सबसे पहला मैसेज हमारे पास में हमारे प्रबल मिश्रा जी पंडित जी का है, फिर हमारे साथ में के गुप्ता जी, दीपांशी तिवारी जी हैं हमारे दिल से आने की गोंडा से, इसके अलावा नेक्स्ट मैसेज में हमारे सुरेंद्र यादव जी गौरा चौकी से, अमित चौधरी जी हैं जो हमें दिल्ली से सुनते हैं, इसके अलावा मनी शर्मा जी हैं भटपुरवा से, और प्रमुख जी का प्यारा सा मैसेज भी है बीच में। आइए सुनाते हैं क्या लिखा है। आज आकांक्षा आपकी प्रस्तुति कमाल करती है, हर धड़कन में नई उमंग और खुशहाली भरती है, आपकी मधुर आवाज दिलों को छू जाती है, हर महफिल को अपनी बातों से निहाल करती है। ओ माय गॉड, मुस्कान बिखेर कर सबका दिन सवार देती है, हे भगवान अपने अंदाज से हर पल यादगार कर देती है। आज आकांक्षा आपकी कला का जवाब नहीं, आपकी प्रस्तुति सच में सबको खुशहाल कर देती है। गुड आफ्टरनून प्रिय उद्घोषिका महोदया जी, नमस्कार। भाई एक सांस में इतना पढ़ना पड़ा लेकिन मजा आ गया पढ़ के, थैंक यू सो मच प्रमुख जी। साडे नाल मैं क्या बोलूँ, मैं आगे कुछ नहीं कह सकती, थैंक यू सो मच इतना प्यार से इस मैसेज को हम तक पहुँचाने के लिए। दरक्षा अंसारी जी हैं सीतापुर से, गुड आफ्टरनून या गुलाबो। और इसके अलावा अगर नेक्स्ट मैसेज की बात करिए, आप लोगों ने इतने सारे हार्ट इमोजीज भेजे हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं है। और उसके बाद में राहुल तिवारी जी हमारे बीच में हैं सिंचाई विभाग गोंडा से, फिलहाल ये लखनऊ आगरा और यमुना एक्सप्रेस वे पर गाड़ी में है, और इन्होंने ज्ञानस्त्री को ट्यून करके रखा हुआ है, बता रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे वो सफ़र की याद दिला दी इन्होंने अपने मैसेज से जो हमने भी कभी उस रोड पे की थी। और अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले डिमांड की ओर, उससे पहले मेरे पास में एक और मैसेज है अब्दुल मुजीम साहब का, अपना घर छोड़कर सरहद को अपना ठिकाना बना लिया, अपना घर छोड़कर सरहद को अपना ठिकाना बना लिया, जान हथेली पर रखकर देश की हिफाजत को अपना धर्म बना लिया। जय हिंद जय भारत भाई अब्दुल मुजीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप देशभक्ति से उत्प्रोत मैसेज लाते हैं और मुझे बड़ा सुकून मिलता है, थैंक यू सो मच, ये देखकर कि हम अपने देश के प्रति आज भी पूरी तरह से जागरूक हैं। और मुस्तफ़ा जी हैं सऊदी अरेबिया से, और इन्होंने भाई जो हमसे बोला वो तो हमने आप तक पहुँचा ही दिया है। इसके अलावा मैं बीच में सचिन शुक्ला जी जो हमें सुनते हैं दिल्ली से, हमारे बहुत ही पुराने और प्यारे लिसनर, और बाकी नेहा जी, नीना जी, हाँ जी हमारी चंगू मंगू जी की जोड़ी। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आप सभी की बहुत सारी चिट चैट बरकरार है लगातार एंड लगातार। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, और ये डिमांड है हमारे पास में हमारे प्यारे के गुप्ता जी की ओर से, और उसके बाद में आएंगे नेक्स्ट डिमांड लेके हम समायरा जी की जो हमें सुनती हैं इमाम बाड़ा से, और उसके बाद में मुस्तफ़ा जी आप वाला जो आपने पूछा है ना कि हम पुरुषों के लिए कौन सा गाना है, बकायदा एक्सप्लेनेशन के साथ भेजते हैं आप तक।

हाँ जी, तो ये डिमांड हमारे के गुप्ता जी की तिरंगा कॉम्प्लेक्स है। और अब बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड हमारे पास में आई है समायरा जी की ओर से, जो हमें सुनती हैं गोंडा इमाम बाड़े से। गाना बड़ा ही प्यारा है मुस्कान मूवी का।

मनी जी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप नन्हे मुन्ने चांद की डीपी प्लीज लगा लीजिए, आपने हटा दिया है इसलिए आपसे कह रहे हैं। और फिलहाल ये गाना बहुत ही प्यारा है हमारी समायरा जी की ओर से।

0: भाई ये हमारा कहना नहीं है, हमारी प्यारे लिसनर्स का कहना है चैट बॉक्स में। बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार से हमें नवाजने के लिए, अपना प्यार हम तक लुटाने के लिए, बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू नीना जी, दरक्षा जी और बाकी सभीों को। और अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर। भाई ये डिमांड वो है जिसका इंतजार बड़ी बेसब्री से हमारे मुस्तफा जी कर रहे हैं, और इस गाने की डिमांड की गई है दो लोगों के द्वारा। क्या बात है, एक बार फिर से ताली बजा दीजिए हमारे लिए रईस साहब और हमारे प्यारे मुकेश जी। जी हाँ, जो मैं सुनते हैं दिल से, यानी कि आपके अपने गोंडा से, मुकेश यादव जी और रईस साहब की डिमांड पे आप सभी महापुरुषों के लिए बहुत ही बेहतरीन सा गाना, क्योंकि क्योंकि मैंने क्योंकि क्यों कहा है, पहले आप ये गाना सुनिए उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। एंजॉय करिए इस बहुत ही बढ़िया वाले गाने को, 90s हिट्स में से एक, फ्रॉम द मूवी मैं हूं ना।
1: मुंह तो बंद करो अंकल।

हाँ जी, जितने भी महापुरुष गढ़ होते हैं, जन होते हैं, उनका यही हाल होता है। वो मिलने के बाद ही कहते हैं तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या कहे, हो गया है कैसा, ये कमाल क्या कहे। लेकिन ये आप सभी महापुरुषों में गुण पाया जाता है कि आपकी बीवी आपके साथ चल रही होगी लेकिन आप रोड पे जा रही दूसरी महिला को जरूर टकेंगे। भाई ये मेरा कहना नहीं है, ये जगत व्यापी है और सभी यही कहते हैं। मेरे दोस्त भी मुझसे कहते हैं, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया, किसी को बुरा लगा हो तुझे माफ करेगा, लेकिन मुझे लगा ये गाना सूटेड है तो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। मुस्तफा जी स्पेशली फॉर यू, एंजॉय करिए इस ट्रैक को। फिर आते हैं नेक्स्ट डिमांड लेकर के हम अपने प्यारे सुरेंद्र यादव जी की फ्रॉम गोरा चौकी।

0: हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें तुमसे मिल।
1: हाँ जी दोस्तों, आज कमाल हो गया, हमने डेडिकेशन कर दी, हमसे पूछा गया तो हमने कर दिया। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर। 3 से 4 के सफर में आप एंजॉय करें आपके अपने फोनी फरमाइशी कार्यक्रम कॉल ट्यून गोंडा को, और आपने ट्यून करके रखा हुआ है 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। ये नेक्स्ट डिमांड आप तक पहुंचती है सुरेंद्र यादव जी की ओर से गौरव चौकी से, और अगर हमारे कुमार टेलर साहब भी हमें सुने तो ये डिमांड उनकी भी हो जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट डिमांड होगी हमारे अमित कुमार जी और मनीष शर्मा जी की फ्रॉम भटपुरवा, क्योंकि मुझे पता है हमारे लिसनर्स का टेस्ट क्या है।

माफ करिएगा सुरेंद्र यादव जी, काश आपने इसको ओरिजिनल सॉन्ग भेजा होता तो हम उसको पूरा जरूर कंप्लीट करते। 2.0 वर्जन का ऊपर से डीजे रिमिक्स मैं नहीं पूरा कंप्लीट कर पाऊंगी, आई एम सो सॉरी। उम्मीद है कल आप इसकी डिमांड करेंगे और ओरिजिनल सॉन्ग की करेंगे। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड हमारे अमित कुमार जी और हमारे प्यारे मनी शर्मा जी की फ्रॉम भटपुरवा। आज की प्लेलिस्ट है यार, क्या है, मजा आ गया।

जी हाँ, और ये गाना सुनने के बाद अब बढ़ते हैं आज की लास्ट डिमांड, और लास्ट दो डिमांड में प्ले करूंगी, और जिन जिन के गाने रह जाएंगे उनका नाम है समरीन जी, सारिका जी, अरमान जी और साथ में अंश जी। तो ये चार लोग आज की रेस से बाहर होते हैं, जबकि दो दो लोगों ने सेम सेम डिमांड की है आज, तब जाके लगभग मैं डिमांड्स कंप्लीट कर पाई हूँ। और अभी बढ़ते हैं हम अपने अरमान जी के नहीं, एहसान साहब, हाँ जी एहसान साहब की डिमांड की ओर, और उसके बाद में आज की हमारी लास्ट डिमांड होगी अमित चौधरी जी की। अमित जी, मुझे लग रहा है आपका यही सॉन्ग है, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं कर पाई, मूवी नेम मुझे क्लियर नहीं हो रहा था, इसलिए मेरे पास दो डिमांड मतलब दो ऑप्शन आ रहे थे, तो मेरे को लगता है ये डिमांड है, तो मैं जाते जाते ये दोनों गाने प्ले करके जा रही हूँ। और मिलते हैं शाम के शो आपके गोधूली स्पेशल खेत खलियान में, आज की जो आज का जो विषय है वो है धान की बुवाई। आइएगा ज़रूर और अपने फसलों को हरा भरा और भी ज़्यादा जानदार बनाइएगा। टेक केयर, बाय बाय।

जी हाँ, और जाते जाते मुझे वापस आना पड़ा। कुमार साहब आप देर नहीं हुए, बस बहुत ज्यादा देर हो गया। आज का प्लेलिस्ट बहुत सुपर डुपर हिट था। खैर कोई बात नहीं, चलते चलते अब अमित चौधरी जी की ये डिमांड, और अब यहाँ से लेते अलविदा। मिलते हैं खेत खलियार कार्यक्रम में, ख्याल रखिएगा।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
2: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
1: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
2: अधिक व्यायाम न करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
1: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
2: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
1: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
6: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
7: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
6: और जेंट्स के लिए?
7: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
7: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
8: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
9: मतलब
8: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
7: इन समस्याओं के लिए निशुल्क डेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

बस एक हाँ के इंतजार में रात यूं ही गुजर जाएगी। अब तो बस उलझन है साथ मेरे, नींद कहाँ आएगी? सुबह की किरण न जाने कौन सा संदेश लाएगी, रिमझिम सी गुनगुनाएगी या प्यास अधूरी रह जाएगी।

वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में, और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज़। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में। स्टे ट्यून्ड।

बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: जी हाँ दोस्तों, वक्त हो चला है आपके अपने शो का, क्योंकि स्टूडियो की घड़ी में बज गए हैं 5:08 और दिन है आज का गुरुवार। गुरुवार यानी कि आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गौधुली स्पेशल खेत खलिहान का। और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे कांक्षा, और हमारे साथ में बतौर को होस्ट आप सभी के प्यारे इरफान शाह जी हैं। और हमारे बीच में आज एक्सपर्ट के तौर पर कौन है, उससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि आज का विषय क्या है। आज का विषय है धान की खेती। जी हाँ, क्योंकि वक्त चल रहा है कहीं ना कहीं खरीफ के फसलों का, और खरीफ के फसलों में जो भारत की प्रमुख खरीफ फसल है वो है धान, और इसकी खेती मानसून के मौसम में की जाती है। और अच्छी पैदावार के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान और पर्याप्त पानी यानी जल भराव की आवश्यकता होती है। इसकी उन्नत खेती कैसे की जाएगी और इसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में बतौर एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर विनय कुमार पांडे जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आपके अपने गोंडा के LBS डिग्री कॉलेज से बतौर एक्सपर्ट हमारे बीच में मौजूद हैं हमारे डॉक्टर विनय कुमार पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
1: थैंक यू मैम
0: जी, नमस्कार। और इसके अलावा हमारे इरफान जी भी हैं, आप हैं यहाँ पे इरफान जी?
2: जी, सबसे पहले तो किसान भाई बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार, क्योंकि आज का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज का जो विषय है, अधिक उपज प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि से धान की नर्सरी तैयार करना। देखिए, इस समय जो जोरों से जो हमारे किसान भाई बहन हैं वो इस समय खेत में धान की नर्सरी जो है वो डाल चुके हैं।
0: और आपके बात बताने से पहले ही हमारे पास में कॉलर की कॉल भी आ गई है, तो चलिए ले लेते हैं।
3: नमस्ते दीदी भैया को।
0: जी जी, नमस्कार।
2: नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते।
0: कैसे हैं आप?

0: बहुत हम तो बहुत ही अच्छे दीदी, आप बताएं कैसी फोन किया है।
1: जी जी, आप जैसे बहुत ही अच्छे हैं, बस वही सही, हम सेम है, सेम नीमन और बहुत ही चौकस वाणी। ये बताइए आप अपना नाम पहले, शुभ नाम क्या है आपका?
0: इंद्रपाल मिश्रा, ग्राम अमेरता, मोहली सीतापुर।
1: जी हाँ, मोहली सीतापुर से हमारे इंद्रपाल जी ने हमें कॉल किया है, और अब जब कॉल कर ही लिया है तो आपसे आपकी समस्या भी जानना चाहती है, आपकी अपनी आर्ज आकांक्षा, क्या प्रश्न है सर?
0: हम जानना चाहते हैं, गांव के और भी किसान आए थे, इरफान द्वारा जानकारी मिली तो गांव वालों ने कहा पूछ लेना पेड़ का सही समय, मतलब कुछ लोग कहते हैं बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए तो कितने दिन बाद लगाना चाहिए सही समय, मतलब होने के कितने बाद।
1: ओके, मतलब आपकी जो धान की फसल की जो मतलब निराई आपको करनी है, बुआई करनी है, वो कितनी बड़ी ग्रोथ हो जाए उस बेरहन की, ये आप जानना चाहते हैं?
0: हाँ जी
1: जी जी। और कोई सवाल है सर आपका इंद्रपाल जी?
0: और कोई नहीं
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं एक्सपर्ट महोदय की ओर, और आपने अपना प्रश्न रखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, अगर आपके पास में भी ऐसा कोई सवाल है तो आप बेशक कॉल कर सकते हैं आपके स्टूडियो के नंबर पे, नंबर वही है 6393316429। पुनः से बताऊंगी,
2: उन्होंने ये सवाल किया है कि धान की नर्सरी का लगाने का जो उचित समय क्या है,
1: नहीं उचित समय नहीं, इन्होंने क्या बोला है वो मैं अभी आपको समझाती हूँ। इरफान जी, उससे पहले नंबर बताना चाहूंगी श्रोताओं को, 6393 31 64 29। जी हाँ, और आपने ट्यून करके रखा हुआ रेडियो 89.6 FM गुंडा शहर की धड़कन, और हमारे इंद्रपाल जी का जो सवाल था वो सीधा सीधा सवाल यही था कि किस समय पर पौधे के कितने समय हो जाने के बाद, मतलब उसकी बड़ाई कितनी हो जाए, 1 इंच हो जाए, 2 इंच हो जाए, इस हिसाब से मतलब क्या ग्रोथ हो जाए कि हम उस पौधे को फिर हम रोपण कर सकें, यही सवाल था इरफान जी। प्लीज एक्सपर्ट महोदय इस पर प्रकाश डालें और इनका जवाब इन तक पहुंचाएं।
3: जी सादर नमस्कार सर। एक्चुअली में सर जो है नर्सरी का जो उचित जो है समय जो होता है वो 21 से 25 दिन का, एग्जैक्टली 21 से 25 दिन के अंदर आप जो है प्रयास ये करिए कि आप जो है उसको उखाड़ करके बेरन को ट्रांसप्लांटिंग कर दीजिए। दिक्कत हम आपकी समझ गए, आप क्या कहना चाह रहे हैं। दिक्कत ये है कि नर्सरी जब 1 महीने से जब ऊपर हो जाती है, विद लगभग 30 डेज के आसपास, तो दिक्कत ये होती है कि उसमें जो आपके पत्तियाँ निकलती, कम से कम 2 से 3 पत्तियाँ जब आपके हो जाएँ उसी समय आप जो है ट्रांसप्लांटिंग कर दीजिए। और जब आपके 30 दिन क्रॉस हो जाने लगते हैं तो उसके बाद उसका जो उखाड़ करके फिर आप जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो जो उसका वेजिटेटिव जो ग्रोथ थोड़ा सा होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है।
1: और आई है, प्लीज मैं आपको रोकना चाहूंगी, जरा कॉल ले लें, समस्या ले लें कॉलर की, फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो
0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार सर, अपना शुभ नाम बताओ और कहाँ से आप हमें सुन रहे हैं, आपका खेत खलिहान कार्यक्रम में बहुत स्वागत है।
0: मेरा नाम देवांश त्रिपाठी है।
1: जी राम देवांश,
0: देवांश राम त्रिपाठी।
1: ओके देवांश राम त्रिपाठी जी, आप कहाँ से सुनते हैं हमें?
0: हम मिथिया चौक से सुन रहे हैं मैम।
1: जी साहब, क्या
0: सवाल? मुझे जानना था जैसे काला नमक की खेती मुझे करनी थी।
1: जी जी,
0: काले नमक की खेती।
1: जी,
0: तो उसकी शुरुआत हम कैसे करें और उसके लिए वॉटरिंग कितना रखें, सब चीजों के बारे में,
1: मतलब बेसिक से लेके आप उसके बुआई तक का पूरा प्रबंधन जानना चाहते हैं काले नमक की खेती का?
0: हाँ
1: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: पूरा प्रबंधन जानना चाहते
1: जी,
0: हैं।
1: जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो पहले तो हम पहले सवाल पे जाएंगे इंद्रपाल जी के, और उसका आप जवाब दीजिए, फिर इस सवाल पे भी आते हैं देवांश राम जी के।
3: जी सर, तो सर यही मेजर प्रॉब्लम होती है कि जब 21 दिन से और 25 दिन के आसपास ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उसका जो ग्रोथ होता है बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब 30 दिन बाद जब आप उसकी उखाड़ के रुपाई करते हैं ट्रांसप्लांटिंग, तो उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ थोड़ा सा अच्छी होती है, ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा स्लो हो जाती है, क्योंकि वो जो है थोड़ा सा हार्ड हो जाती है नर्सरी। जब हार्ड हो जाती है तो उसमें जो टिलर्स निकलते हैं कल्ले, वो थोड़ा सा उसका प्रोसेस स्लो हो जाता है। इसीलिए जो वैज्ञानिक विधि से जो आपकी खेती करना चाह रहे हैं तो सबसे बेस्ट जो है 21 से 25 दिन आपके नर्सरी प्रिपरेशन का और ट्रांसप्लांटिंग जो है करने का सबसे उपयुक्त समय माना जाता है मैम।
1: और हमारे प्यारे लिसनर यानी कि देवांश राम जी का सवाल था जो हमें इटिया थोक से में भी क्यों इरफान जी
2: जी बिल्कुल
1: हाँ इटिया थोक से सुन रहे हैं, और इनका सवाल यही था कि काले नमक की खेती के लिए उसकी पूरी प्रबंधन आप बताएं कि उसका बीज कहाँ से मिलेगा, कैसे उसकी खेती होगी, किस हिसाब से उसमें फसल का मतलब रख रखाव किया जाए, सब कुछ।
3: थैंक यू देवांश जी। जैसे उसमें जो है आपके जो काला नमक जो है उसकी खेती और जो सेम की मतलब वैसे खेती करते हैं, सारा नर्सरी प्रिपरेशन से लेकर के उसमें आपके प्री हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी सब सेम ही रहता है, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं होता। अंतर थोड़ा सा ये होता है, थोड़ा सा ड्यूरेशन की जो ड्यूरेशन होता है आपके नर्सरी प्रिपरेशन जो सामान्यतः मैडम मैं बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
3: नर्सरी जो प्रिपरेशन करते हैं जो आम तौर पर नर्सरी, उसके लिए सबसे पहले जो है 4 से 5 चीज़ें बहुत अति आवश्यक है जो किसान भाई को जानना बहुत ज़रूरी है, किसी चाहे वो काला नमक हो किसी के लिए। सबसे पहले वहाँ की आपकी मृदा कैसी है उस पर विचार किया जाता है। दूसरी चीज़ें आपके किस जलवायु में और कौन से बेल्ट में आप बो रहे हैं। और तीसरी चीज़ें आपके बीजोपचार जो होते हैं वो अच्छी तरह होना चाहिए बीजोपचार। और उसके साथ साथ जो है आपके जो अगला प्रोसेस है आपके उन्नतशील बीजों का चयन। अगर ये किसान भाई उन्नतशील बीजों का अगर चयन कर लेते हैं तो भी आपके नर्सरी अच्छी, अगर नर्सरी अच्छी हो गई तो ट्रांसप्लांटिंग अच्छी होगी, उसमें रोग व्याधि की थोड़ा सा समस्याएं एकदम ना के बराबर ही अगर आती भी है तो थोड़ा सा निवारण हो जाता है। और लास्ट चीज़ें होती है आपके पोषक तत्व प्रबंधन
1: जी।
3: नर्सरी में हम पोषक तत्व प्रबंधन भी करते हैं तो उसके साथ साथ नर्सरी लगाने के लिए, और लास्ट में आपके रोग इंसेक्ट पेशेंट मैनेजमेंट, ये 5 से 6 चीज़ें बेसिकली हर किसान भाई को पता होना चाहिए। अगर ये 5-6 चीज़ें अगर उसको देख करके अगर अपना धान की खेती करते हैं तो निश्चित ही सफल उत्पादन। उसके लिए सबसे नर्सरी तैयार करने के लिए क्या करते हैं उसमें आपके पहली जुताई के समय ही, तो ये पहली जुताई या आपके प्राइमरी सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन हम सब में बोलते हैं मैडम
1: जी, जी।
3: तो उसके साथ साथ आप जो है लास्ट जब प्लाविंग कीजिए तो कम से कम 2 से 1 हेक्टेयर की मैं बात कर रहा हूँ, एकड़ में थोड़ा सा अभी कम हो जाएगा या साफ हो जाएगा, 1 एकड़ के लिए सबसे पहले 2 से 3 क्विंटल 400 से लेकर 500 वर्ग स्क्वायर मीटर के लिए 1 हेक्टेयर सफिशियंट रहता है। उसके लिए आप 2 से 3 क्विंटल बेल डिकम्पोज या FIM को आप ले करके और नर्सरी बोने से कम 20 दिन पहले या 1 महीना पहले आप उसको बिखेर करके लास्ट प्लाउ आप कर दीजिए खेत की जुताई। दूसरी चीज़ इसमें बात आती है आपके सीड रेट की। सीड रेट नॉर्मली जो रहते हैं इसमें एक तो आपके हाइब्रिड सीड होते हैं, दूसरे आपके जो काला नमक के हैं ये आपके ये सीड होते हैं, और दूसरा कॉमर्शियल जो सीड सब लोग अच्छे रिसर्च सेंटर से खरीद करके जो लोग बुआई करते हैं। उसके लिए आप जो है नॉर्मल जो है अर्ली बराई के लिए जो फाइन सीड होती है लगभग 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर एकड़ में है जस्ट हाफ हो जाता है, और हाइब्रिड के लिए लगभग 18 से 20 किलोग्राम नॉर्मली 15 किलोग्राम भी आप बो देंगे तो अभी सफिशेंट रहता है। इसके बाद बुआई करके बुआई कर दिया आपने, बुआई करके पहले एक प्रोसेस और होता है सीड सोकिंग का। सीड सोकिंग भी कर सकते हैं, उसके लिए लगभग 10 से 15 दिन बुआई से पहले आप जो है 8 से 10 घंटे के लिए सीड सोक कर दीजिए। सोक करने के बाद उसको ऊपर उठा मतलब निकाल करके उसके बाद आप जो है छाई में करके, और उसके उपरांत जो है आप सबसे जो हम इम्पॉर्टेंट चीज़ बताए थे बीज शोधन की बीजोपचार, उसके लिए आप जो है एग्रोसान जीएन का कर सकते हैं, कैप्टान का कर सकते हैं, थायराम कर सकते हैं, कार्बनडा जिम का, ये आपकी जो है 2 से 2.5 ग्राम आपके जो ये है रसायन से इसको ले लीजिए प्रति किलोग्राम के बीज के हिसाब से आप जो है उपचारित करके और आप जो है बुआई कर सकते हैं। इसके साथ साथ
1: दीवान जी का फिर से कॉल आ रहा है, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। हेलो,
4: जैसे जैविक विधि द्वारा मैं करना चाह रहा हूँ खेती, जैसे ऑर्गेनिक चीजें गोबर की खाद का उपयोग करना चाहता हूँ धान की खेती में, तो उसको कैसे कर सकते हैं, उसका क्या प्रबंधन?
1: जी जी, उसी पे हम आने ही वाले थे अभी कुछ देर में, क्योंकि हमारे एक लिसनर है मुस्तफा जी, उन्होंने भी सेम चीज यही बोला है। तो और भी कुछ है सर आपकी साइड से, और कुछ कहना चाहते हैं दीवान जी?
4: मैम, मिक्स क्रॉपिंग के बारे में जानना चाहता हूँ, जैसे मिक्स क्रॉपिंग मुझे करना है धान के साथ और भी फसलें लगा सकते हैं, तो कौन कौन सी और फसलें लगा सकते हैं?
1: ओके ओके, थैंक यू सर। सर प्लीज इनके सवाल का जवाब दें।
3: जी मैम,
1: पहले तो यही बता दे कि मिक्स क्रॉपिंग में कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं।
3: मिक्स क्रॉपिंग में वैसे धान के साथ साथ ज़्यादातर जो एक आपके दो चीज़ें इसके निर्भर करती है, एक मिक्स क्रॉपिंग होती है, एक मिक्स फार्मिंग होती है। मिक्स क्रॉपिंग में हम धान के साथ साथ तुरंत तो साथ में नहीं लगाते हैं ज्यादातर, लेकिन जब धान हार्वेस्ट होने से पहले
1: जी
3: लगभग एक महीने पहले या आपके 15 दिन पहले जो है उसके साथ हम बरसीम का कल्टीवेशन सबसे बेस्ट माना गया है, वो चीज़ें हम करते हैं। और उसके साथ जो फार्मिंग की बात होती है, एक आपके राइस फिश फार्मिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस करते हैं, हम सबके यूनिवर्सिटियों में भी किया जाता है ये चीज़ें। तो राइस फिश फार्मिंग में क्या होता है, आप जो है नर्सरी उखाड़ करके आप जो है ट्रांसप्लांटिंग कर दीजिए, उसके साथ साथ जो है आप मछलियों का भी पालन उसमें कर सकते हैं।
1: कैसे?
3: मछलियों का पालन जो है थोड़ा सा ये है कि उसमें ऑर्गेनिक चीज़ें अगर डालिएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर ये रसायन का प्रयोग थोड़ा सा ना के बराबर या कम कीजिएगा।
1: हाँ, वरना तो
3: जो हाँ क्योंकि ये फिर बाद में टॉक्सिक हो जाता है।
1: हाँ, बट मेरे को हाँ, ये जानना है कि खेत में मतलब उस धान के खेत में मछली पालेंगे, कहाँ पालेंगे?
3: नहीं, धान के खेत में, नर्सरी में नहीं, धान के खेत में ही।
1: हाँ,
3: आप जो कुछ दिन की मान आप जो है 15 दिन 20 दिन एक बार थोड़ा सा टॉक्सिसिटी जो न्यूट्रिएंट का है ये थोड़ा सा कम हो जाए।
1: जी जी,
3: क्योंकि अर्ली जो रिसेंटली उसमें करते हैं तो थोड़ा सा टॉक्सिसिटी रहती है। अगर ऑर्गेनिक कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस करते हैं तो शुड बी मस्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें आप FYM हो गया, बर्मी कंपोस्ट हो गया, ग्रीन मैनोरिंग हो गया, और ये आपके जो मल्चिंग प्रैक्टिसेस हो गए, ये सनई हो गया, ढैचा हो गया, इसके तहत अगर आप खेती करते हैं तो रोपाई के आप 10 दिन 15 दिन बाद भी आप कर सकते हैं, इसका कोई विशेष साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन केमिकल्स और इंसेक्टिसाइड या हर्बिसाइड पेस्टिसाइड के साथ साथ करते हैं तो थोड़ा सा आप पे इंतजार कर लीजिए, थोड़ा सा उसका टॉक्सिक लेवल कम हो जाए, उसके बाद फिश फार्मिंग, राइस फिश फार्मिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं।
1: बट उसमें कैसे होता है ये मैं खुद जानना चाह रही हूँ आपसे कि मतलब पानी के बिना तो मछलियाँ रहती नहीं है।
3: उसमें पानी प्रॉपर जो है कुछ वेराइटियों का हम अभी जिक्र नहीं कर पाए हैं।
1: जी जी,
3: कुछ वेराइटियाँ ऐसी है, हम सबके यूनिवर्सिटियों से भी वो वैरायटियाँ सुन लीजिए, उसमें आपके जो डीप रूटेड होती हैं या आपके फ्लडेड कंडीशन जिसे थोड़ा सा बाढ़ हल्का फुल्का हो जाए तो भी, और पानी जहाँ पे आप एक्यूमुलेट होता है इकट्ठा वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, लगभग 1-8 फीट अगर पानी भी रुक गया तो कोई दिक्कत है। उसके लिए आपके जलमग्न है, जलप्रिया है, जलनिधि है, पंकज है, ये सब सारे जो हैं आप जो है हमेशा जो है थोड़ा सा जो जहाँ पर पानी एक्युमुलेट होता है
1: जी जी
3: उस एरिया में, इसके साथ साथ भी आप जो है फिश फार्मिंग कल्टीवेशन कर सकते हैं।
1: सर, एक फिश मतलब कितने दिन में तैयार हो जाती है ये भी जानना जरूरी है कि टाइमिंग क्या है, मतलब हम फिश फार्मिंग कर रहे हैं और हम क्या सोच के चलें कि इतने दिन में हमारी मछलियों का हमने अंडा वंडा डाल दिया तो कितने दिन में हमें तैयार होकर मिल जाए?
3: मैडम, अंडा तो नहीं डालेंगे।
1: हाँ,
3: आप उसके लिए पहले से ही आप जो है तैयार कर रखे रहेंगे, जहाँ से आप खरीदेंगे मार्केट से परचेज करके लाएंगे
1: जी, तो बता के लाएंगे।
3: हाँ, बता के पहले से लाएंगे। उसके साथ साथ अब ये मान के चलिए कि कम से कम आपका जो ये धान का कल्टीवेशन है कम से कम 120 से लेकर के 150 दिन तक होता है, यानी लगभग ये 4 महीने का पूरा हो जाता है। 4 महीने के बाद आप जो है उसमें फिर आप उसको पलटिएगा नहीं, उसको ऐसा IGTs रहन दीजिए जब आपका मछलियों का जब लाइफ साइकिल आपका पूरा हो जाए। उसके बाद इससे बेनिफिट ये होता है कि आपका धान का भी कल्टीवेशन हो गया प्लस फिश का आपका जो है प्रैक्टिसेस हो गया, इसकी वजह से एक साथ जो है आप जो है दोहरी आप लाभ जो है किसान भाई ले सकते हैं।
1: दोहरी लाभ के साथ में कहीं ना कहीं हमारी जमीन और हमारी फसलों के लिए भी वो लाभदायक होगा क्योंकि एक दूसरे के लिए सहायक होंगे।
3: बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट।
1: अभी हमारे पास में एक सवाल था मुस्तफा जी की ओर से कि सर, जब गोबर का खाद खेती में पड़ता था तो 25 दिन में वह रोपने के लायक हो जाता था, अब खाद पड़ता ही नहीं है, अभी लोग ज्यादातर पेस्टिसाइड वगैरह यूज करते हैं, तो इसका क्या मतलब असर है पौधों पर हमारे? उससे पहले मैं एक कॉल लेना चाहूंगी, सवाल बहुत सारे हैं और मुझे लगता है रोज की तरह फिर से अपने अपने सवाल रह जाएंगे और हमारे श्रोताओं के सवाल ऊपर आएंगे। हेलो
5: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार, कुशल पाल यादव जी, कैसे हैं आप? सॉरी तिवारी जी, सॉरी सॉरी तिवारी जी, अरे वो गलती से निकल गया तिवारी जी, गलती से हो जाता है कभी कभी।
5: चलिए बहन जी, कोई बात नहीं, कुछ बढ़ाया ही तो है।
1: हाँ, ये भी
5: घटाया तो नहीं, जैसे तिवारी और यादव की मात्राएं लगभग बड़ी है लेकिन इसमें शुरुआत में छोटी ही की मंत्रा लगती है और या में बड़ा आ का देखिए कितना फर्क कर दिया।
1: चलिए कुछ भी कहिए, हमारे कृष्ण कन्हैया के उसमें हमने आपको जोड़ दिया है, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते हैं।
5: जी बहुत बढ़िया, सबसे पहले तो प्रोफेसर साहब, इरफान भाई और आपको सभी जी बहुत सादर नमस्कार
1: जी, बहुत बहुत नमस्कार।
5: और मैं श्री बात जिसे वो पर छोटे छोटे हैं हमारे पूछना चाहता हूँ जो इस समय की जरूरत है।
1: पहले आप खुश हो लीजिए।
5: आप खुश तो है
1: जी। बहुत बहुत शुक्रिया, कम से कम किसी काम तो आए हम आपके। अब रखिए अपना सवाल।
5: मेरा पहला प्रश्न यह है श्रीमान जी से।
1: जी सर।
5: कि जो नर्सरी बोई गई है लगभग आज के 10-15 दिन पहले, उसमें उसमें एक समस्या आ रही है, नर्सरी ऊपर से सूख रही है।
1: जी।
5: तो इसका क्या इलाज है? जैसे और कुछ नहीं, मुझे यह लग रहा है कि यह सब टेम्परेचर की वजह से है। रोज रोज शाम को सिंचाई भी की जा रही है।
1: जी, जी, जी, जी।
5: लेकिन फिर भी नर्सरी ऊपर से सूख रही है। और दूसरी बात यह है कि अगर नर्सरी में खरपतवार हो जाता है तो कौन सी दवा किस मात्रा में प्रयोग किया जाए? जैसे डॉक्टर साहब से यह जान ले कि 40 हेयर जिसे हम लोगों के यहाँ 10 बीघा बोला जाता है, आधा बीघा ये हेक्टेयर में 40 हेयर है, 40 हेयर नर्सरी में ये जो दवा सूखने वाली है उसे और जो खरपतवार नाती है उसको डॉक्टर साहब बताओ 40 हेयर की मात्रा में पूछ रहा हूँ।
1: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। ये थे हमारे बीच में हमारे प्यारे लिसनर कुशल पाल तिवारी जी, और इनका सर सवाल आपने सुन लिया, प्लीज़ इन तक इनका जवाब पहुँचाएं।
3: जी ठीक है, नमस्कार तिवारी जी। तिवारी जी सर, हम आपका क्वेश्चन सुने हैं। दिक्कत ये है सर, उसमें दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है, आप जो है टेम्परेचर आजकल थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, और पहली बात प्रयास ये करिए आप जो है बेटिंग और ड्राइंग सिस्टम को आप पूरा मेंटेन करिए। मतलब बेटिंग ड्राइंग सिस्टम का मतलब आप जो है आप हर दूसरे तीसरे दिन आप जो है पानी लगा दीजिए, शाम के समय इवनिंग लगा दीजिए, और उसके साथ जो है सुबह होते ही वो उसमें पानी रुका ना रहे, पानी को आप बाहर कर दीजिए। फिर जो है ऐसे से आप दूसरे तीसरे दिन सिंचाई जो है उसकी करती रहे, जिससे पानी जो है आपके नर्सरी के खेत में खोले ना। ये चीज़ें आप पहला प्रयास ये करिए। दूसरी चीज़ें ये हो सकती है सर कि उसमें आप जो है एक कुछ फफूंद टाइप के रोग ये भी हो सकते हैं आपके, एक आपके ब्लास्ट टाइप का भी होता है या ब्राउन स्पॉट टाइप के होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल के ये इसके भी कारण हो सकते हैं। और तीसरी चीज़ें ये हैं, आपके कुछ न्यूट्रिएंट डिफिशेंसी होते हैं मैडम, तो न्यूट्रिएंट डिफिशेंसी की वजह से भी जो है क्या नाम है ऐसे आयरन की थोड़ा सा कमी हो जाती है डिफिशेंसी। इसके लिए सबसे पहले आप ये करिए, आप नर्सरी आप बो चुके होंगे तो उसके लिए बोने के लिए सबसे पहले आप जो है जब बुआई किए होंगे तो उसमें 5 से 6 किलोग्राम के आसपास आपने DAP डाला होगा। पर आपका ही जो क्वेश्चन है उसके अनुसार 400 से लेकर 500 वर्ग स्क्वायर मीटर ये पूरे हेक्टेयर के लिए है। तो इसमें और उसके साथ साथ आपने अगर जिंक अप्लाई किया है तो आप जो है अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो आप लगभग जो है आधे किलोग्राम से लेकर के 1 किलोग्राम या उससे 50 ग्राम पर वर्ग स्क्वायर मीटर जो आपका एरिया है उससे आप नाप लीजिएगा। 50 ग्राम जो है जिंक सल्फेट, 50 ग्राम आप जो है फेरस सल्फेट को आप ले करके, और जो है आप मान लीजिए टंकी के पानी हो तो वहाँ से आप एक टंकी में स्प्रे कर घोल बना करके आप जो है विद इन ए वीक, एक वीक में एक बार या तीसरे दिन चौथे दिन आप गैप करके हफ्ते में कम से कम 2 बार या ट्रांसप्लांटिंग से एक आध हफ्ते पहले भी आप स्प्रे कर दीजिएगा तो निश्चित ही जो है आपका जो समस्या है ये दूर हो जाएगा।
1: और शायद ऐसे ही मिलता जुलता कुछ सवाल हमारे उदालक शर्मा जी का है जो कि हमें बालपुर से सुनते हैं और लिखते हैं कि धान की नर्सरी में भूरी पत्ती
3: जी
1: क्यों हो जाती है?
3: जी मैम, जैसे अभी मैंने बताया
1: जी,
3: तो भूरी पत्ती के 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो हमारे फंगल लगते हैं फंगस की वजह से भी जिसको हम ब्लास्ट कहते हैं।
1: जी जी,
3: इसके ऊपर इसके सबसे पहले सिम्टम पहचानने की है ऊपर से थोड़ा सा सूखते हुए नीचे के तरफ जो है ब्राउन कलर के हो करके और जो है वाइट कलर के एकदम हो करके और पूरे के पूरे हमारे नर्सरी सूख जाते हैं। ये तो फंगल के ब्लास्ट की वजह से,
1: मतलब एक पौधा अगर बिगड़ा तो सारा चला
3: जाएगा। जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैम। दूसरी चीज है, इसके लिए आपके जो है कोई आप ये तो आप मैं बता चुका टेम्परेचर की, दूसरी चीज़ें ब्लास्ट का हो सकता है, तीसरी चीज़ें जो अभी मैंने सेम तिवारी जी को मैंने रिपीट किया,
1: जी, जी,
3: मैं
1: जी,
3: फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, यही चीज आप कीजिएगा। आप जो है 50 ग्राम जिंक सल्फेट को लेकर के और 50 ग्राम आपके फेरस सल्फेट पर मीटर स्क्वायर वर्ग स्क्वायर मीटर के हिसाब से आप जो है आप स्प्रे कर दीजिएगा, तो निश्चित आप तो किसान भाइयों को ये चीज़ें लाभ होगा। बस नोट ये करिएगा कि आप जो है या तो जब आपकी समस्या दिक्कत हुई है तब, या तो फिर आप जब ट्रांसप्लांटिंग करने जा रहे हैं उसके कम से कम एक हफ्ते के पहले ही स्प्रे होना चाहिए।
1: बिल्कुल, तो उम्मीद है उदालक जी आप तक आपके सवाल का जवाब पहुंच गया होगा और धान की नर्सरी में ब्लास्ट रोग क्या है, इसके लक्षण क्या है, वो आप तक पूरी तरह से पहुँच गए होंगे। और इनका एक और सवाल था सर कि रिसर्च में, कुछ रिसर्च में महीन धान की प्रजातियाँ होती हैं, वो बता दें कौन कौन सी होती हैं। जी
3: एक्चुअली में महीन धान की जो प्रजातियां हैं हमारे जहां से मैंने डॉक्टरेट किया है आचार्य नरेंद्र देवा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी कुमारगंज अयोध्या, ये हमारे पूर्वांचल का बहुत चर्चित विश्वविद्यालय है,
1: जी, अपने एरिया का सबसे ज़्यादा फेमस।
3: जी तो वहां से मैंने डॉक्टरेट डिग्री किया है, वहां से भी हमारे यहां कई आपके प्रजातियां हैं, इसमें नरेंद्र धान 1, नरेंद्र धान 2 और अब जो है नरेंद्र 361, ये सब जो हमारे वैरायटियां हैं ये आपके कुछ पतले धान के लिए है। उसके बाद आपके जो पतले धान और भी है
1: सर, एक कॉल और आई है, मैं लेना चाहूंगी उसके बाद आप कंटिन्यू करिएगा। ओके, हेलो हेलो
6: हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं।
6: जी नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ प्रहलाद कुमार बांगरमऊ डिस्ट्रिक्ट उन्नाव से।
1: जी उन्नाव से आपका बहुत बहुत स्वागत है, उन्नाव से हमारे कई सारे लिसनर हमें सुनते हैं और हमें एक की याद आ गई फिलहाल। जी आप अपना सवाल रखें सर, क्या आपका सवाल है?
6: जी मैम, मैंने नर्सरी बोई है तो नर्सरी में खरपतवार हो गया है, तो उसके नियंत्रण के लिए मैं क्या करूं, डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा हूं।
1: इसके अलावा कोई सवाल?
6: जी खेत की तैयारी कैसे करें जिससे हमें जो है अधिक उत्पादन मिले।
1: खेत की तैयारी कैसे करें कि अधिक उत्पादन मिले?
6: जी
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे बीच में हमारे प्रहलाद जी और आप बता रहे थे प्रजातियां, पहले प्रजातियां बताते हैं फिर इधर।
3: जी मैम, नो डाउट। तो आपके कुछ प्रजातियां हमारे पूषा कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली द्वारा भी विकसित की गई है, जिसमें RH10 है, पूषा बासमती भी, हमारे पूषा बासमती 1, पूषा बासमती 2, ये सब हमारे फाइन सीडेड है और कुछ वेराइटियाँ इसमें हमारे सेंटेड होती हैं मैडम, जो बासमती वाली होती है सेंटेड होती हैं, मतलब महकने वाली भी, ये सब फाइन सीड है। तो इसको आप जो है लगभग नॉर्मली आप जो है 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, अगर एकड़ की बात की जाए मैम तो लगभग आप मान के चलिए 10 से 15 किलोग्राम भी आपके पर एकड़ के हिसाब से आप जो है यूज भी कर सकते हैं। और इसके लिए जो क्योंकि रिसर्च ये वैरायटियां हैं, इसमें कोई विशेष अगर बीमारियों का बहुत कम चांसेस होता है रियर, बाकी अगर चांसेस भी होगा तो हम आपके टाइम कंप्लीट होते होते हम सारी चीज़ों का समाधान करके जाएंगे किसान भाइयों को।
1: जी एक जी। और सवाल था जो हमने आपसे पूछा था लेकिन जवाब नहीं दे पाए थे क्योंकि कॉलर की कॉल आ गई थी, तो मुस्तफ़ा जी ने, जी नहीं खरपतवार से पहले मुस्तफ़ा जी का सवाल था कि जब गोबर पड़ते थे, खाद पड़ते थे, तो 25 दिन में मतलब रोपण लायक नर्सरी तैयार हो जाती थी, आजकल इतना मतलब सब कुछ पेस्टिसाइड वगैरह डालने के बाद मतलब ऐसा क्यों हो रहा है?
3: जी मैम, नो डाउट, इसमें ऐसा होता है, देखो किसान भाई कहीं ना कहीं हमने देखा है कई लोगों को मैंने इग्नोर भी करते देखा है और कई लोगों को मैंने प्रिकॉशन यही दिया है कि जब तक आपकी जो खाद है या FYM जो फार्म यार्ड मैनुअर है या गोबर की खाद है, आपके जब तक 3 से 4 महीने अच्छी वेल डिकम्पोज ना हो जाए, सड़ ना जाए, तब तक आप जो है खेतों में नहीं डालेंगे। हमने ये देखा है किसान भाई लोग डायरेक्टली गोबर को ले जाकर के खेतों में डाल देते हैं,
1: तब तो बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाता होगा क्योंकि उसमें गोबर गैस की मात्रा भी होगी,
3: जिसमें आपके गोबर फसलों के लिए भी हमारे मृदा भी थोड़ा सा विषैली टॉक्सिक हो जाती है, उसपे उसके हमारे ये जो गोबर होते हैं हमारे मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
3: तो मीथेन गैस की वजह से भी कहीं ना कहीं नर्सरी के लिए भी और पौधों के लिए उसके वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए ये भी हार्मफुल है मैडम। और दूसरी चीज़ें इनका और जो है, हाँ, वेल डिकम्पोज के लिए आप जो है एक काम करिए, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद डालिए। और दूसरी चीज है जो कंटामिनेशन चीजें आजकल आती हैं वो पहले के FYM जो कंपोस्ट अब नहीं रहेंगे, जितने आपके जो फीड एडिटिव से पशुओं को खिलाए जा रहे हैं, जितने आपके न्यूट्रिएंट कंजप्शन हो रहे हैं वो सब ग्रेन में ही जा रहे हैं, दाने में जा रहे हैं, चारे में जा रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव तो आपके ह्यूमन बॉडी के ऊपर, एनिमल बॉडी के ऊपर, पेड़ पौधे के ऊपर, खेतों में, तो कहीं ना कहीं इसका भी जो है असर जरूर पड़ता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और एक सवाल मेरा पर्सनल है आपसे।
3: जी मैम।
1: जैसे हम केचुए का पालन जब करते हैं तो क्या अगर हमारे पास में मान लीजिए गोबर की खाद है तो हम उसमें करें या फिर मिट्टी में करें? केचुए का पालन उत्तम किसमें होता है करने में?
3: उत्तम आप जो है अच्छी जो है जहाँ से बहुत ज्यादा जो खेतों में जो आपकी मिट्टियाँ हैं वो बहुत कंटामिनेटेड ना हो, तो मिट्टी को और FYM को बेल डिकम्पोज जो है आप जो है 50-50 रेशियो कर सकते हैं, 60-40 का रेशियो कर सकते हैं, दोनों आपस में मिक्स करके भी। और जो है आपके घरों में जो रहते हैं, क्या नाम है, लीफी वेजिटेबल्स हैं, कर्ड है, या आपके जो है फ्रूट्स है, वेस्टेज मटेरियल्स है, ये सब भी आप नो डाउट आप जो है मिक्स करके आप जो है
1: इनमें भी हम पालन कर
3: बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है आप पालन
1: मतलब कि हम मिट्टी में चाहे तो मिट्टी में कर सकते हैं, चाहे तो दोनों का मिक्सिंग करके कर सकते हैं, चाहे तो वेस्टेज जो हमारे घर में निकलते हैं हरी साग सब्जियों से उनमें भी कर सकते हैं,
3: मिक्स कर सकते हैं।
1: क्या बात है भाई, हमारे मिट्टी के दोस्त है, तो उनका तो पालन पोषण थोड़ा बहुत ध्यान से करिए ताकि आपकी खेती हरी भरी हो और आपके उपज अच्छे हों। और अगर कोशिश कर पाए तो खाद का प्रयोग ज्यादा करें, केचुओं का प्रयोग करें अपने खेतों में, ताकि आपकी उपज अच्छी हो और आपके शरीर के लिए आप जो भी उपज आ रहा है वो लाभदायक हो, ना कि आप खा भी रहे हो और उसके बाद में आप उसका रोग के लिए दवा भी ले रहे हो, तो ऐसा ना हो, तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। अभी चलते हैं हम अपने प्रहलाद जी के सवाल की ओर। उनको जानना ये था जो हमें उन्नाव से सुन रहे हैं, खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या करें और खेती की तैयारी कैसे करें धान की रोपाई के लिए?
3: जी मैम जी, निश्चित ये क्वेश्चन दो लोगों का हो गया मैम
1: जी।
3: इसके लिए सबसे पहले खरपतवार प्रबंधन के लिए हमें तीन चीजें जाननी आवश्यक होती है। एक हमारा PPI स्टेज होता है जिसको हम कहते हैं प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, मतलब बुआई से पहले, नर्सरी को बुआई से पहले भी दवा डाली जाती है, जो सबसे आपकी चर्चित जो दवा होती है आपके पेंडीमेथिलीन होती है, तो इसको आप नर्सरी में भी डाल सकते हैं और पूरे हेक्टेयर के लिए भी आप जो है लगभग 800 ml से लेकर के 1 लीटर या मैक्सिमम 1.2 लीटर पूरे हेक्टेयर के लिए सफिशिएंट होता है। तो ये हमारे PPI स्टेज में है बुआई से पहले। और दूसरा चीज़ हमारा PE स्टेज होता है जो खरपतवार प्रबंधन के लिए यूज करते हैं। PE का मतलब प्री इमर्जेंस, आपने बुआई कर दिया बट जमाव नहीं हुआ है, तो इसको हम प्री इमरजेंस में जमा होता है, तो उस स्टेज में भी हम जो है आप पेंडीमेथिलीन का यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज एक आपके जो कॉमन होता है वो पोस्ट इमरजेंस, पोस्ट मतलब आपने बुआई भी कर दिया, ट्रांसप्लांटिंग भी कर दिया, उसके बाद आप दवा, उसके लिए सबसे बेस्ट जो तो आपके दवाई जो आती है आपके प्रिटला क्लोर के नाम से आती है, इसको भी किसान भाई प्राइवेट सेक्टर की है इसको यूज कर सकते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट में आपके एक और चीज़ें आती है ब्यूटा क्लोर, जो मार्केट में आपके ट्रेड नेम मचेटी के नाम से है, इसको भी आप जो है किसान भाई जो है ये भी आपके 1 लीटर से लेकर के 1.2 मैक्सिमम 1.2 लीटर आप जो है प्रति हेक्टेयर के, अगर एकड़ है तो जस्ट हाफ कर दीजिएगा, जस्ट हाफ करके और आप जो है बुआई ट्रांसप्लांटिंग के लगभग आपके 2-3 दिन बाद या विद इन ए वीक आप जो है सिंपली जो है किसी बॉटल में घोल करके या किसी डब्बे में आप जो है चलते हुए आप जो है पूरे खेत में आप बिखेर दीजिएगा, तो नो डाउट आपके जो चौड़ी पत्ती खरपतवार हैं और सकरी पत्ती वाले को ये दोनों आपके खत्म हो जाएंगे
1: जी। और प्रहलाद जी का एक और सवाल था कि खेती की तैयारी कैसे की जाए?
3: जी मैम, खेती तैयारी करने के लिए सबसे पहले आप जो है समर डीप प्लाविंग कीजिए। गर्मियों की जो खेती होती है गर्मी की, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा गर्मी की जो आपके विंटर सीजन की जो आपके जो क्रॉप्स हैं वो हार्वेस्ट हो जाते हैं, आपके राइस हो गया या आपके मस्टर्ड हो गया या कुछ आपके वेजिटेबल्स हो गए, इसके लिए कुछ जो है हमारे जो रोग मोस्टली दो, एक आपका सीड बॉर्न डिजीज होता है, एक आपका सोयल बॉर्न डिजीज होता है। तो सीड बॉर्न जो हमारे सीडों के साथ जो आते हैं फंगस होते हैं कुछ वो होते हैं, सोयल बॉर्न डिजीज जो होते हैं जो मिट्टियों में ही, फसल तो हमारी ख़त्म हो गई बट मिट्टियों में ही इंसेक्ट के लार्वे आपके जो आपके अंडे हैं वो उसी में रहते रहते हैं और अंडे देते रहते हैं, उसके चारों स्टेज जो है उसी में कंप्लीट हो जाते हैं लाइफ साइकिल। एग हो गया, लार्वा हो गया, प्यूपा और एडल्ट, चारों स्टेज। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो हमने बताया था आपको, समर डीप प्लाउइंग कीजिए, गर्मी की जुताई सबसे बेस्ट जो आपके प्रिकॉशंस हैं उसमें, जो आपके जो कीड़े मकोड़े हैं, जो फंगस हैं, वो क्या होते हैं गर्मियों की जुताई करने से, नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे कीड़े मकोड़े हैं, जो आपके रोग फंगस हैं, ये आपके सोयल के टेम्परेचर जो है नियर अबाउट आपके 40-42 डिग्री टेम्परेचर में ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं उसके। जी मैम,
1: और हमको हंसी इस बात पे आ रही है, आज तो भाई हमसे पूछा जा रहा है इरफान सर कब बोलेंगे, इरफान जी आप कब बोलेंगे, जब इनके ऊपर समस्या आएगी तब बोलेंगे, कब बोलेंगे बताइए।
2: नहीं भाई चलिए, बाकी इसमें कोई इंतजार रहता है कि अब देखिए विशेषज्ञ सर जो हमारे उत्तर दे रहे हैं तो फिर हम लोग बहुत कभी बोलते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
2: बोलने का जब मौका आता है कि जब हमारे पास ऐसे सवाल आते हैं, कोई लिसनर जब पूछते हैं, तो चलिए भाई अगर किसी की ख्वाहिश है तो बोला जाएगा, क्यों नहीं। हाँ। चलिए सवाल कर लेते हैं।
1: नहीं सवाल आप करिए, उससे पहले चैट बॉक्स के कुछ और सवाल है वो हम ले लेते हैं उसके बाद। सर आप हमें बता रहे थे कि खेत की तैयारी हमें कैसे करनी है, तो तैयारी हमारी पूरी हुई, और लेकिन यहाँ पे मुस्तफ़ा जी का एक और प्रश्न है, मतलब उसी गोबर की खाद को लेकर के, कि सर हम ऐसा ही करते हैं सुबह सुबह हमारे यहाँ ताज़ा गोबर लेकर हम खेतों में डाल देते हैं, तो इससे क्या नुकसान होता है।
3: जी मुस्तफ़ा जी, हम आपको 100% प्रिकॉशंस दे रहे हैं, अगर आप कच्चे गोबर की खाद का अगर हीप नहीं लगाते हैं एक जगह, हीप मतलब जानते हैं गोबर को लगातार
1: इकट्ठा
3: करना, ये हीप कहते हैं।
1: और मेरा एक और सवाल था कि कितने दिन में ये खाद योग्य हो जाते हैं गोबर, मतलब कम से कम
3: आप जो है 3-4 महीने में बेल डीकम्पोज्ड हो जाते हैं, अच्छी सड़ जाती है,
1: मतलब 3 महीने से पहले आप उसका यूज नहीं करें।
3: हाँ तो मैं उत्तर दे रहा हूँ मैम इनका
1: जी।
3: अगर आप जो है डायरेक्टली आप सुबह जो है तसला उठाए और डायरेक्टली आप खेत में ले जाके गोबर रख रहे हैं, तो आप जो है दीमक का आमंत्रण दे रहे हैं। आप कभी भी भविष्य में मत कीजिएगा। हम जितने लोगों किसान भाइयों को या आपसे छात्रों को यही हम प्रिकॉशंस करते हैं, कच्चे गोबर दो चीज़ों का नुकसान, एक आपका दीमक का निमंत्रण और दूसरी चीज़ें आपके जो मीथेन गैस ये जो आपके रिलीज होते हैं, ये हमारे फसलों के लिए और पौधों के लिए नर्सरी के लिए सबसे टॉक्सिक और हार्मफुल मानी जाती है।
1: अब एक मेरे जहन में और सवाल आ रहा है, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं खेती पाती से बहुत ज़्यादा संबंध रखती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है नर्सरी करना, मतलब अपने खेतों की गार्डन की, तो मेरा एक पर्सनल सवाल आपसे है सर।
3: जी मैं।
1: जैसे कि गुलाब के लिए गोबर की खाद बहुत अच्छी होती है और धूप, ये दो चीज़ उसको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो अगर मान लीजिए जैसे हम खाद नहीं हमारे पास में तैयार है, हमें गोबर ही मिल गया क्योंकि खरीदने तो जा नहीं सकते हैं, तो कहीं अगर हमको आसपास में हमारी गाय का गोबर मिल गया, तो क्या हम उसको थोड़ी दूर पे जड़ से, मतलब कुछ दूरी पे और गड्ढा करके अगर डाल दें, तो क्या कोई दिक्कत करेगा?
3: नहीं नहीं नहीं कोई दिक्कत है, बस आप ये प्रयास करिएगा कि आप जो कंपोस्ट डाल रही हैं मैडम
1: जी,
3: वो आपके बेल डीकम्पोज्ड होने चाहिए, कम से कम 3-3 महीने से कम नहीं होना चाहिए।
1: और वही मैं आपसे कह रही थी कि अगर ताजा गोबर है और अगर हम उसे दूर करके डाल लें गड्ढा बना के, तो दिक्कत करेगा।
3: ताजा गोबर मैडम, मैं कम से कम 1,000-500 किसानों को मैं बता चुका हूँ
1: जी जी,
3: और जिन्होंने ये ताजा गोबर डालना बंद कर दिया उनके खेत से दीमक तो खत्म हो गए, दीमक नहीं आए। तो कई लोगों को मैंने किया,
1: तो मतलब कुछ भी हो जाए दिमाग लगाइए, लेकिन एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाइए।
3: बिल्कुल बिल्कुल
1: सीधी सी बात
3: जी, आप उसको हीप कर लीजिए, उसको बेल्टिक कंपोज रेटिंग करने के लिए, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसका खाने का है, इसमें जो आपके सारी चीजें जो पोषक तत्व होते हैं कि ये सब माइक्रोब्स खाते हैं, उसको केचुए की तरह उसको डीकम्पोज करते हैं, ये फर्दर वो फाइनली डीकम्पोज होके हमारा बेल डीकम्पोज FIM प्रिपेयर्ड हो जाता है।
1: ओके, और जो दालक शर्मा जी का कहना है, सर धान की खेती करने पर मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, अगर होता है तो उसको कम कैसे किया जाए? फिलहाल तो हमें नहीं लगता कि होता है, अगर आप कच्चे गोबर का यूज़ नहीं करेंगे, आप उसको पूरी तरह से तैयार खाद का यूज़ करेंगे, तो मीथेन गैस मुझे नहीं लगता कि आपके खेतों तक आए।
3: इसका उदाहरण सब सिंपल सा है, सिंपल उदाहरण मैडम, आप जब रिसेंटली जब हम यूरिया अप्लाई करते हैं
1: जी,
3: यूरिया, तो यूरिया जो हमारा आपके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों नेचर का होता है, दोनों प्रवृत्ति के, तो जो हम यूरिया रिसेंटली डालते हैं, तो इस वजह से हमारे जो आपके जो मीथेन जो है कुछ उसमें भी रहते हैं, और यूरिया से जो हमारे कुछ चीजें जो आपके ये बनाए जाते हैं हमारे इसमें इंडस्ट्रीज में, ये यूरिक एसिड के सिंथेसिस के द्वारा भी बनाए जाते हैं। तो नो डाउट इससे भी आपके जो रिसेंटली यूरिया अप्लाई करते हैं कुछ चीजें, तो इससे भी आपके जो गैस है ये आपके रिलीज होते हैं।
1: ओके जी, तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसको कम करने के लिए क्या उपाय
3: आप
1: करें?
3: उस कम करने के लिए ये मैक्सिमम आप जो है एक बैलेंसिंग फर्टिलाइजर का नाम देते हैं, आप बैलेंस में फर्टिलाइजर दीजिए, यूरिया को स्प्लिट डोजेज में दीजिए। जैसे 120-60-40 का हमारे पास रेशियो अगर आया है, 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम हमारा फास्फोरस, 40 किलोग्राम आपका पोटास, तो ये पोटास और जो है ये हमारे फास्फोरस को एट द टाइम आप बिफोर ट्रांसप्लांटिंग के समय दे दीजिए, और जस्ट 50% नाइट्रोजन का डोज आप जो है रोपाई के समय दीजिए या रोपाई के ठीक पहले, और जो 50% नाइट्रोजन का हमारा जो डोज बचा हुआ है यानी 60 किलोग्राम, 60 को भी फर्दर टू स्प्लिट डोजेज में दीजिएगा। एक तो आपके टिलरिंग स्टेज जब मैक्सिमम एक डेढ़ महीना कम्प्लीट हो जाए, एक महीने के आसपास, तब आप 30 किलोग्राम दे दीजिए, रेस्ट आपका जो 30 किलोग्राम जो बच रहा है इसको जो है आप जो है जब ये पूरा कंप्लीट टिलरिंग कंप्लीट हो जाए
1: जी,
3: तब आप जो है उसको दीजिएगा, तो इससे क्या है जो थोड़ा मीथेन की जो आपकी समस्या है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा
1: जी। और अब हम चलेंगे, भाई हमारे इरफान जी नहीं बोल रहे हैं, और बोला जा रहा है इरफान जी थोड़ा शर्माते, नहीं शर्माते नहीं है वो बहुत बोलते हैं, बहुत बात होनी है। खैर चलते हैं, क्योंकि हमारे पास में बस 10 मिनट और शेष है, और अब रुक करते हैं इरफान जी आपके सवालों की ओर, धड़ाधड़ बौछार करिए सवालों का।
2: बिल्कुल मैम, शुक्रिया
1: जी,
2: और सर ने बहुत अच्छी जानकारी दे रहे थे, हम तो सुन रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था हमको भी और हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लगा होगा जो हमारे किसान भाई बहन सुन रहे हैं। अब सर हम आते हैं सवाल पर, जलवायु परिवर्तन और अनियमित वर्षा की स्थिति में सर नर्सरी प्रबंधन के लिए किसानों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि सर इस समय देखा गया है कि सर बारिश नहीं हो रही है, और जो हमारे किसान भाई बहन जो नर्सरी को डाले हैं सर वो किन किन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि बारिश हो नहीं रही है तो कभी कभी क्या होता है सर नर्सरी में रोग लग जाता है।
3: जी सर, उसके लिए सबसे पहले सर आप जो है हमने शुरुआत में थोड़ा सा हमने बेटिंग और ड्राइंग का नाम लिया था
2: जी,
3: उसके लिए आप जो है क्योंकि टेम्परेचर सर ऑलरेडी बढ़ ही रहा है
2: जी,
3: तो और टेम्परेचर एक साथ क्योंकि मानसून अभी जो है स्टार्ट भी नहीं हुआ है, मानसून आने में अभी काफ़ी समय है, उसके लिए आप अगर नर्सरी जो लोग किसान भाई अगर नहीं डाले हैं तो अच्छी बात है, अगर डाल दिए हैं तो भी उससे भी अच्छी बात है, आप जो है उसको प्रॉपर दूसरे तीसरे दिन आप अपने खेत को मॉइस्ट जरूर रखिए, नमी उसमें हमेशा बरकरार रखिएगा, और उसके साथ साथ जो है नमी के साथ साथ हमारे जो पानी है पानी को आप शाम को लगा दीजिएगा, और सुबह होते मान लीजिए अगर बच भी जा रहा है रात पूरी रात अगर पानी नहीं सुबह तक अगर सूख पाया तो अगर जो भी बच रहा है उस पानी को आप वाश आउट कर दीजिएगा, वाश आउट कर दीजिए, जिससे आपका पानी आपका मान लीजिए टेम्परेचर अगर दूसरे दिन मॉर्निंग में अगर बढ़ा भी तो आपके जो नर्सरी में पानी उबलने की स्थिति जो यानी जो समस्या है ये आपके कम से कम हो जाए। और दूसरी चीज़ें हम नर्सरी के लिए जो आपके कॉमन चीज़ें जो बनी हुई है कई किसान भाइयों का जो या छात्रों का जो हमारे आया है संज्ञान में, ये आपके नर्सरी में जो आपके सूखा रोग लग जाता है मतलब ब्लास्ट टाइप का
2: जी,
3: तो ये हमारे हम पहले भी बता चुके हैं, एक तो ब्लास्ट हमारे कुछ न्यूट्रिएंट आयरन की डिफिशेंसी की वजह से भी होता है, जो पत्तियाँ आपके ऊपर से सूखते हुए नीचे की तरफ सूख जाती हैं, ब्राउन हो जाती है लास्ट में सफ़ेद कलर के हो करके, और जिससे जो आपके फोटोसिंथेसिस जो क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण वो अफेक्ट हो जाता है और नर्सरी आपकी प्रभावित हो जाती है। दूसरी चीज़ें आप जो है ये ब्लास्ट के लिए आप जो है कोई फंजीसाइड आप मार्केट में बहुत से हैं वो कर लीजिए, और एक जो लास्ट में हमने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये बताया था कहीं भी मार्केट से किसी भी विश्वसनीय कोई जो है आप वैरायटी खरीदिए, प्रजातियां खरीदिए, उसमें बहुत सी प्रजातियां का हमने आपको विशेष शुरुआत में मैंने बोला था, ये 4-5 चीज़ें का आप जो है चयन कर लीजिएगा, तो वो आप कहीं भी आपके जो वैरायटियां हमारे साकेत जो है 4 है, आपके पंथ 10 है, पंथ 12 है, नरेंद्र 1 है, नरेंद्र 2 है, ये सब कुछ ऐसी नरेंद्र 97 मैडम एक ऐसी वैरायटी है जो हमारी नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय से निकाली गई है, तो इसके साथ साथ इस खासियत ही है 85 से 90 दिन में तैयार हो जाती है
1: जी। और हमारे पास में एक और प्यारे लिसनर हमारे जुड़ गए हैं जिनका नाम है विजय पाल यादव जी, ललहुआ लखीमपुर खीरी से जुड़े हुए हैं। और इनका सवाल है सर कि सर सभी का को मेरा सादर नमस्कार, ओके एक्सपर्ट महोदय इरफान जी और मैम जी सभी को। और इनको जानना है धान की बेड़ में घास जमने लगी है, किस दवाई का छिड़काव करें, उस दवाई का नाम बता दें।
3: जी सर, आप मोस्टली मार्केट में देखिए कई नामों से अलग अलग प्राइवेट सेक्टर के भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं, तो उसके लिए आप जो है अगर देखो खरपतवार भाई दो प्रकार के, एक चौड़ी पत्ती खरपतवार होते हैं, एक सकरी पत्ती खरपतवार जिसको नैरो बीड लीप कहते हैं और एक ब्रॉड बीड लीप कहते हैं। ये दोनों प्रकार के जो खरपतवार नर्सरी में बहुत नुकसान पहुँचाते हैं, इसके लिए आप जो है PPI अगर नर्सरी नहीं बोए हैं किसान भाई तो उसके लिए पेंडीमेथिलीन का आप जो है यूज कर सकते हैं, और अगर बुआई कर दिए हैं तो उसमें एक आपका प्रेटिला क्लोर के नाम से मार्केट में दवा आती है, तो इसको भी आप जो है ले करके आप जो है 150 ग्राम जो भी आपके एरिया के हिसाब से आप ले करके, और जो है चाहे आप उसमें क्या वाटर के साथ स्प्रे कर सकते हैं या डायरेक्ट आप पानी में पानी लगा करके आप जो है उसमें टिप टिप करके जो आप जो है यूज कर सकते हैं, जिससे पूरे के पूरे संपूर्ण नर्सरी में आपके बिखर जाएगा। दूसरा चीज़ एक आप यूज कर सकते हैं, हमने जो बताया था आपके ये जो ब्यूटा क्लोर के नाम से, ये हमारे चौड़ी पत्ती वाले जितने खरपतवार हैं ये इसके लिए हैं, ठीक है। तो ब्यूटा ये आपके जो है मचेटी के नाम से जो मैंने बताया ब्यूटा क्लोर, इसको भी आप जो है अगर पूरे खेतों में डालना चाह रहे हैं तो आप पूरे खेतों में नहीं 50 ml 100 ml आप दवा मार्केट से ले लीजिए, और उसको जो है 1 से 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से आप जो है पर मीटर स्क्वायर एरिया के हिसाब से आप उसको चाहे आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, या अगर पाउडर फॉर्म में है तो आप जो है किसी ब्रॉडकास्ट कर दीजिए, तो आपका जो है काफ़ी हद तक आपके जो खरपतवार हैं ये आपके खेत से चले जाएंगे
2: जी। तो सर ये तो हुई खरपतवार नियंत्रण। अब सर बहुत कम समय बचा है क्योंकि घड़ी जो है इशारा कर रही कि स्टूडियो से इजाज़त लेना पड़ेगा, लेकिन अब आते आ रहे हैं सर एक सवाल मन में है कि धान की नर्सरी की अवस्था में कुछ कीट प्रबंधन है जो लग जाते हैं सर, उससे निजात कैसे पाएं सर?
3: जी, इसमें मोस्टली कई प्रकार के चार पांच प्रकार से हमारे कीड़े मकोड़े लगते हैं, जो थोड़ा सा अभी क्योंकि इसमें जो है हमारे कुछ राइस में लगते हैं, तो सबसे पहले हम नर्सरी की बात कर लेते हैं, नर्सरी से शुरू करते हैं। नर्सरी में हमारे कुछ कीड़े मकोड़े हैं उसके प्रबंधन के लिए नर्सरी में ही लगते हैं, ठीक है। तो उसमें आप जो है किसी भी आप जो है मार्केट से आप कोई दवा ले लीजिए, आपका जो है ये मेसासी टॉक्स के नाम से भी दवाई मार्केट में कई नाम से और प्राइवेट सेक्टर में है, ये भी आपके दवा ले करके आप जो है उसको 1 से 1.5 ग्राम के हिसाब से, अगर लिक्विड फॉर्म में है तो 1 से 1.5 ml आप ले करके और जो है आप स्प्रे कर दीजिए, तो इससे कीड़े मकोड़े जो है वो भी चले जाएंगे। दूसरी चीज़ हम थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि अभी नहीं तो 1-2 महीने बाद किसान भाइयों को बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसमें सबसे मेजर प्रॉब्लम आपके ग्रास हॉपर की होती है, और एक आपका ग्रास हॉपर जो हमारे जिसे गांव में लोग टिड्डा कहते हैं मैडम
1: जी,
3: उसमें ये भी बहुत अटैक करते हैं।
1: हाँ, और एक दफा तो कहीं से ढेर सारे बड़े बड़े वाले आ गए थे।
3: जी जी, ये माइग्रेट करके कहीं से भी आए थे
1: जी।
3: तो ग्रास हॉपर के लिए भी ये आपके जो है उस समय अगर ज़्यादा मात्रा में आप किसान भाई को अगर दिखेगा तो एक आपकी मार्केट में थीमेट के नाम से भी दवा आती है, मोलाथियन के नाम से आती है और कार्बोराइल, कई ऐसे मार्केट में बहुत सारे दवा हैं जो आप लेकर के 1 से 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप जो है इसको अगर किलोग्राम में अगर आपको अप्लाई करना है तो लगभग 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप जो है इसको ये क्या नाम है यूज कर सकते हैं मालाथियान को भी, और जिससे जो है आपके ये जो ग्रासहॉपर की समस्या है ये भी आपके दूर हो जाएंगे।
1: सर ये एल नियोनो क्या होता है आपको पता है? हमारे लिसनर ने कुछ लिखा है, हम समझ नहीं पा रहे इसलिए आपसे पूछ रहे हैं।
3: एल नियोनो का सेंटेंस क्या है?
1: इन्होंने कहा है कि सर इस साल एल नियोनो की वजह से धान की फसल पर कुछ प्रभाव पड़ेगा।
3: अब जब एल नियानो की जब इन्फेक्टेड करेगा तो हो सकता है ऐसा, बाकी ऐसा नहीं है कि सारे जगह इसका प्रकोप देखा जाए
1: जी,
3: ऐसा नहीं है किसी निश्चित आपके एरिया में सब जगह। अच्छा, एक चीज़ हम थोड़ा सा जो है मैं भूल गया था
1: जी जी,
3: मैं बताना
1: शीघ्रता से
3: जी जी जी, जी। बस एक आपके जो खरपतवार के जैसा ही, मतलब धान की ही वैरायटी है, उसमें जो फंगस होते हैं उसकी वजह से भी थोड़ा सा टॉक्सिक हो जाते हैं
1: जी।
3: ये इसको कंट्रोल करने के लिए भी आपके एक आपके ये कौन सा कोई भी आप मार्केट से लेके यूज कर सकते हैं जो हमने बताया है 4-5 दवा, बाकी और तो पोस्ट हार्वेस्ट में तो बहुत सी चीज़ें हैं
1: जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपको, और हमारे सारे लिसनर्स ने भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोला है डॉक्टर साहब। और आप आए, आपने बात की, और हमारे वो लिसनर जुड़े जो हमें लग रहा है कि कभी उन्होंने कॉल नहीं किया, जैसे कि हमारे उन्नाव वाले लिसनर थे, हमारी टिया थोक वाले थे, हमको सुनते तो हैं, हमारे बहुत सारे लिसनर हमें सुनते रहते हैं, लेकिन जब तक उनको नहीं लगता कि अब हमें कॉल करना चाहिए, वो कॉल कभी नहीं करते। तो आपकी वजह से उन तक हमारी, मतलब उनकी समस्या हम तक आई, ये उसका निदान भी हुआ, इस बात की काफ़ी खुशी हुई मुझे। और अब चलने का वक्त हो गया दोस्तों, तो अब लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन उससे पहले सर का बहुत बड़ा वाला धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने कीमती समय निकालकर हमारे ज्ञान स्त्री स्टूडियो में आए
1: जी।
2: और धान की नर्सरी उसका प्रबंधन कैसे करें इस विषय पर जानकारी देने के लिए सर आपको ज्ञान स्त्री परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बहुत बहुत सादर धन्यवाद, किसान भाइयों आप सबको सादर प्रणाम
1: जी। तो आज बतौर एक्सपर्ट हमारे बीच में मौजूद रहे डॉक्टर विनय कुमार पांडे जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं श्री लाल बहादुर डिग्री कॉलेज में, यानी कि आपके LBS डिग्री कॉलेज से। और अब चलने का वक्त हुआ, हमारे कोहो साहब भी अब जल्दी जल्दी में अपना बैग वैग पैक कर रहे हैं, और मैं भी पानी की बॉटल उठा चुकी हूँ, अब निकलते हैं, लेते हैं आपसे अलविदा, मिलेंगे अगले हफ्ते फिर इसी शो पे आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम, यानी कि किसानों वाला कार्यक्रम, खेती किसानी नहीं खेत खलिहान। हाँ जी, और आप सुन रहे थे गुरुवार स्पेशल, आपका अपना शो गौधुली स्पेशल खेत खलियान। मैं थी आपकी होस्ट दोस्त आरजे आकांक्षा, हमारे साथ में कोहोस्ट की भूमिका पे इरफान शाह जी, और बतौर एक्सपर्ट हमने बता ही दिया। अपना ख्याल रखिएगा, अपने खेतों का ख्याल रखिएगा, अपने किसान भाइयों का भी आसपास के ख्याल रखिएगा, साथ ही साथ में मवेशियों को यानी अपने जानवरों का भी ख्याल रखिएगा। अब चलते हैं, मिलेंगे फिर आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। सुनते जाइए ये गाना, हाँ जी वो गाना जो कि हमारी क्षेत्रीय भाषा में होता है, हम तक पहुँचाया है हमारे मुस्तफ़ा जी ने। चलिए इनकी फरमाइश भी जाते जाते कंप्लीट कर देते हैं।

0: हेलो
1: हेलो
0: आवाज ये ना ये आवाज यार हेलो
1: अरे जर जर मोबाइल रे आवाज कहे ना जात बा हेलो
0: हाँ हाँ बोला आवाज ता
1: कोई सबकर रोपनी हो गई
0: हाँ
1: आई हमार रोपनी कहिया होई
0: अबे ना भइल बा का
1: अबे ना भइल बा तो के पता ना बा हर साल बहका दिला
0: अरे तुम नहीं लगाए ले हो तू झूठे परेशान हो तो
1: हम कुछ ना जानी तो के अवे के बा रोपनी में तो अवे के बा
0: अरे तो हम आई जाए कमाई के

0: इतना बढ़िया पानी बरसत बा, पूरा ताल तलैया सब भर गई। अजान इलाकी खुज खुज हमार जीव रह जात बा।
1: अरे हम समझत हई,
0: सुना हमार बात।
1: हाँ हाँ,

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
6: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
5: और जेंट्स के लिए,
6: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
5: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
6: संपर्क करें 9125707093 और 9696674006। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
7: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की

0: कहाँ। सो बिल्कुल आप सभी के स्वागत है, शुभ संध्या। और भाई हमारे भाई और बहनी लोग के का हाल चाल बा, और हाल चाल से तो भाई सबके हाल चाल आजकल नाजुके चलते है, कहे कि हीट वेव घटे के नवे नए लेते हैं। और हीट वेव से हमें याद आवा कि भाई अब योगा सप्ताह शुरू हो चुका है 15 तारीख से, और आप सबन का पता है 21 जून का मनावा जाए योगा दिवस। तो हमें सबका उकरे बरे तैयारी जो है वो करके रखे थे, ठीक है। तो आप सबन के अपन तैयारी एकदम जोरों शोरों से रखे चाहिए। और आपका बताइए कि आपके आपन FM 89.6 FM पर आज आरजे बीना भोजपुरिया शाम मा लाइव है। आज कुछ खास बात करेंगे, काहे कि सांझ के ई जुन सुहावन बेला होते ना, एमन जब चौपाल लागे थी तो अलग अलग चीज़ के जब बात होती तो चाय पिए के मजे कुछ और ही जाते। तो आज हम चौपाल तो लगावा चाहिए थे, लेकिन आज जो चौपाल लगी वो चौपाल के नाव है फिल्मी चौपाल। यानी कि आप सब सोचो थे आए फिल्मी बात, ये तो शुक्रवार का होत है, लेकिन आज जो फिल्मी बात हुई वो भोजपुरी फिल्म के बात हुई। मतलब कौन कौन ऐसन ऐसन फिल्म है जो बॉलीवुड में आपन पहचान बनाई, और सिनेमा के जो फिल्म ही बॉलीवुड के उनका सबका भी पीछे छोड़ दीस। अगर मनोरंजन करे के बात करी तो समाज का एको संदेश के साथ साथ पारिवारिक भावना के साथ जो रिश्ता सजोए के काम किए हैं वो सब आज बात हुई। तो आज ना सिर्फ बात हुई बल्कि आज आप सबन के साथ है फिल्मी चौपाल लगी। तो फिल्मी चौपाल एंजॉय करने के लिए हमारे साथ है सब जने जुड़ जाओ अपने अपने अपने फेवरेट ज्ञान स्लेटी 9.6 FM पर। यह गोंडा शहर के धड़कन आप सबन के साथ है आरजे बीना लाइव है। आप सब सुनने वाला हो शो गोंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल

0: स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी तुराला रोड गोंडा। आज ही एडमिशन ले क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी। आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ। कोई आइडिया है?
4: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
3: सच में? क्या खास है वहाँ?
4: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
3: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
4: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
3: और फोटोग्राफी वगैरह?
4: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
3: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
4: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839-613-949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
3: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

इस संगीत सुने के बाद माँ सबके मन माँ गाँव के छवि बस जाती और ना सिर्फ बसा थी बल्कि हम तो ये कहा कि दिलवा माँ एगो उमंग भर जाती। तो चला आप सबन के साथ अब शुरुआत करी जाए आज के भोजपुरिया शाम के जिमन बात हुई आज बहुत सारी भोजपुरी फिल्मन के जिक्रे बारे में कि आपका बहुत कुछ तो पता नहीं है लेकिन हाँ अगर पता हो तो आपका भी मतलब अपने भाषा पे अपने संस्कृति पे तो गर्व हुई जात। तो सबसे पहले आपका बताइए कि भोजपुरी सिनेमा के अगर बात करी तो सबसे पहली जो फिल्म आए रही ओकर नाम रहा गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ेबो। ये फिल्म आई रही 1963 में। ई एगो ऐतिहासिक फिल्म रही जेकर निर्माण जोन है विश्वनाथ शाहबादी कीन रहा। एकर निर्देशन कुंदन कुमार कीन रहा और साथे माँ एमा बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता नज़ीर हुसैन के मुख्य भूमिका रही। अब आप सबन का ई फिल्म के बारे में और थोड़ा बतावा चाहिए थे कि गंगा मैया तोका पियरी चढ़ेबू के पीछे का कहानी रही कैसे ई फिल्म बनके आज इतिहास में अपन पहचान बनाए चुकी है। तो सबसे पहले शुरुआत करी थे आप सबन के लिए ई फिल्म के जो खास बात ही ओका बताई थे मुश्तफा सऊदी से आपके बहुत सारी शुभकामना शाम हो चुकी है और यहाँ तो भाई मौसम बड़ा बदला है और तापमान लगातार बढ़त है और ऐसा मौसम विभाग बतावत है कि 27 जून के पहले अभी बारिश के कोई उम्मीद नहीं है। तब तक के लिए आरजी बीना के संगीत के साथ मौसम का अनुभव करें। तो सबका बताइए कि अगर भारतीय सिनेमा के मील के पत्थर साबित हो सकत रही कोनो भोजपुरी के फिल्म तो यह पहली भोजपुरी फिल्म साबित है जिकर नाम है गंगा मैया तोके पियरी चढ़ेबे। अब आप सबन का बताई कि ये फिल्म रिलीज भरी 23 मई का और अगर मुख्य कलाकारन के बात करी तो एमा कुमकुम अभिनेत्री रही असीम कुमार अभिनेता रहे और नज़ीर हुसैन अभिनेता और लेखक दोनों काम किए नायमन। अगर संगीत की बात करी तो संगीत ई फिल्म में चित्रगुप्त द्वारा दीन गए रहा और लोकप्रिय गीत जो हैं वो गीतकार शैलेंद्र द्वारा लिखे गए रहे जो उन भी गीत रहे ठीक है। और एक जो गाना के गायक और गायिका रहन वो लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ज़्यादातर गाना एक मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर गायन रहा। अब आपका और एक बारे में अगर खास बात बताई तो ई है पहली फिल्म बनी जेके विशेष स्क्रीनिंग देश में भर रही और राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद रहे वे पटना के स्थागत आश्रम में रखी गई रही। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बड़ी इच्छा रही कि हिंदी के साथ साथ भोजपुरी जैसे क्षेत्रीय भाषा में भी मनोरंजन के साधन उपलब्ध करावा जाए जो ने कि हमारे सबके जो लोक भाषा है या कहा जाए जो क्षेत्रीय भाषा है उसका पहचान मिले ठीक है। और अगर समाज का कोनो मैसेज दी एक बात करें तो ई फिल्म ओहम पीछे नहीं रही ना सिर्फ मनोरंजन एक बहुत मुख्य संदेश जो दी है ई फिल्म वो है विधवा पुनर्विवाह के यानी कि विडो रीमैरिज के ई सामाजिक जो समस्या रही उस समय पर ओकर बहुत बड़ा समाधान बन के ई फिल्म आई रही सामने। जैसे कहा था ना कि कुछ चीजन का क्योंकि बतावे से ज्यादा कोनो स्क्रीन प्ले अच्छे से समझा सकत है जिसे कहते ना कि कोनो कोनो मने ही आसानी से नहीं समझे तो का विजुअल दिखावा जाते है। तो हमारे सबके सिनेमा जो है ना वो विजुअल के माध्यम से कई चीज हमें सबका सिखाए दिए थे ठीक है। और अगर एक गीत के बात करी तो एक सारा का जो जो जो जो गीत है एक वो सब गीत एक मतलब अपने आप में एगो कहा जाता है ना कि विशेष गीत बन के हमारे सबके सामने आवा। कई बार यहाँ आपके ज्ञान स्लिटी 9.6 FM पर एक कई गीत बजा है और ना सिर्फ बजा है लोगन के दिल के धड़कन भी चुराए ली से। एक पहला गीत लता जी की आवाज में आवा रहा और आज भी वो गीत के जो पहली बार सुने के खुशी होती वो आज कितनी भी बार सुन ले उहे खुशी महसूस होती। ता आपका उकरे को गीत सुनाए थे फिर उकरे बाद में और थोड़ी बात हुई उही के बारे में कि कैसे कैसे राजेंद्र प्रसाद के अनुरोध पर लता जी इस फिल्म के सब गाना का आवाज़ दी रहा।
छोटी मोटी कहानी ऐसे जुड़ी आप सबसे जरूर साझा करब। तब तक के लिए सुनत रहा, बजावत रहा अपन वाला रेडियो स्टेशन ज्ञान स्टेशन 9.6 FM ही है गोंडा शहर के धड़कन। ठीक 7:05 से आप सबन के भोजपुरी फरमाइश भी शुरू हो जाए, तो अपन अपन बेहतरीन बेहतरीन भोजपुरी फरमाइश लेके हाजिर हो जाइए और चला सुना जाए प्यारा सा एगो गीत जो की है गंगा मैया तो के पियरी चढ़ेबे।

और ये गाना सुने के बाद माँ हमका तो गंगा मैया और पियरी दोनों से ही प्यार हो गए कि मतलब इतना खूबसूरत अंदाज माँ ये गाना गावा गया है कि दिल के धड़कन कहा थी वाह का गीत है। अच्छा अब पहली फिल्म के बात तो हो ही चुकी है कि कौन रही पहली फिल्म और एक पीछे के जो मतलब बात रही उकर भी चर्चा हम सब कई लेन, लेकिन अभी भी मन में एगो आप सब की ना हुई ना कि संशय जानकारी लिए के कि कैसे कैसे का भवा और कहाँ कहाँ से मतलब गीत संगीत और जो नकरे पीछे के कहानी है एक मोड़ मिला। पहले तो आप सबन के साथ ईशाम के जो रंग है जो चौपाल है ओकर बात करे के बाद आज फिल्मी जो भोजपुरी बात होती ओकर रंग अलग है। तो आगे भी बात हुई आगे मतलब अगर एक पीछे के जो जो पहचान रही फिल्म के ओकरे बारे में बात हुई तो चला ई फिल्म के बारे में और बात करते हुए आपका बता दी कि ई फिल्म अपने समय के जानी मानी हिट फिल्म भय रही और पुनर्विवाह जैसे बड़े बड़े मुद्दे उठाए के बाद एका लोग बहुत पसंद किन्ना खास तौर पे एकर जो ऐतिहासिक महत्व रहा ये लोगन का बहुत पसंद आवा रहा कहे कि अश्लीलता शोर शराबे से दूर ये फिल्म भोजपुरी सिनेमा के एगो नींव बने के काम घीस रहा। जहाँ लोग कहा थे कि भोजपुरी फिल्म अश्लील होती एक गाना नहीं अच्छा होते लेकिन वहीं ये फिल्म सादगी के साथ बहुत बड़ी कहानी रचे के काम घेज क्षेत्रीय भाषा के शालीनता और उकर प्रभावशाली तरीका सबके दिल का भाई के रहा और भाई भी चाहिए जब अपने भाषा के जब पहचान के बात होती तब दुनिया नहीं हर इंसान सोचत है कि कैसे अपने भाषा का पहचान मिले। तो एक पीछे वो कहानी है कि कहा जाता है कि इमन पहला जो गाना गावा जाए रहा वो गाना गाए के लिए राजेंद्र प्रसाद जी लता मंगेशकर का गाए के लिए स्पेशल अनुरोध किन रहा और 1963 में ही पहली बार सिनेमा में भोजपुरी गाना रिलीज भवा रहा और गीत रहा गंगा मैया तोहके पियरी चढ़ेबू। जैसे कि हमारे सबके देश में अलग अलग भाषा है क्षेत्रीय भाषा की अगर बात की जाए तो बहुत सारी भाषा है लेकिन भाषा के अलग अलग रूप होए के बावजूद भी मिट्टी के खुशबू सब में एक जैसे नावत है एक जुड़ाव महसूस होता है और वो हर भाषा में चाहे वो पंजाबी हुए तमिल हुए तेलुगु कन्नड़ समेत राजस्थानी हर भाषा में जो भोजपुरी संगीत के जो झलक है या प्रेम है वो हर भाषा में मतलब महसूस होता है और यह पहचान बनावत कभी गीत राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गए पता नहीं चला और भोजपुरी सिनेमा लोगन के बीच में छाई गए। गीत के बात करी तो गीत के जो एक एक शब्द रहा वो सबके दिल का छुअत रहा ५० के दशक में देश में जब पहले राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी का चयनित किए गए उस दौर में उनके पटना में आना जाना लगातार रहत रहा तब है उन्हें बिहार में रह वाले लोगन से दरखास्त कहीं जो उन बिहार के लोग रहे उनसे दरखास्त कहीं कि बॉलीवुड में इतना फिल्म बनत है लेकिन भोजपुरी फिल्म काहे नहीं बनत। एकरे बाद तत्काल ही राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद मुंबई गईन और उनके मुलाकात नाजिर हुसैन से भय यहाँ वह जाए के प्रस्ताव रखीन कि काहे नहीं भोजपुरी में यहाँ सिनेमा के एगो फिल्म बंद तो फिल्म के जो स्क्रीन प्ले रहा और स्टोरी रही वो सब नाजिर हुसैन लिखिन और उकरे बाद जो डायरेक्शन है वो कुंदन कुमार संभालिन वहीं फिल्म के संगीत के जिम्मेदारी शैलेंद्र कुमार और चित्रगुप्त का मिल गए। अब संगीत के बारी आए तो आखिर फिल्म के गाना के गाई कहे कि सबका तो भोजपुरी आवत नहीं रही वो दौर में फिल्म में लता मंगेशकर के सबसे मतलब जान पहचान रही और लोगन का लागत रहा कि जब भी गीत गावा जाए तो उनके आवाज़ में गावा जाए। तो जो फिल्म के मेकर्स रहे लता मंगेशकर से आग्रह कीन
लेकिन डर के मारे क्यों खुले रूप में प्रस्ताव नहीं दे पाए। तो ओकरे बाद डॉक्टर प्रसाद लता जी के लिए एगो निर्देश या कहा जाए अनुरोध लिख के भेजिन, जोने के वजह से लता जी और मोहम्मद रफ़ी ई फिल्म के अलग अलग गाना गाइन। ई फिल्म के ज़्यादातर शूटिंग बिहार में भई। फिल्म के जो बजट रहा ओकर दुई गुना कमाई भई रही उस समय पर। कुमकुम ई फिल्म में लीड रोल में नजर आई। इकरे अलावा खुद नाजिर हुसैन, रामायण तिवारी और खास यानी कि हेलेन फिल्म में आपका अदाकारी करत दिखी हैं। आप इमेजिन कह सकते हो कि हेलेन जैसे जोन एक्ट्रेस हैं वो भोजपुरी फिल्म में भी दिख सकती हैं। तो जी हाँ, ये फिल्म में आपका हेलेन भी दिख जाइए। अब हम रुख करी थे दूसरी फिल्म के ओर, जोन की भारत के दूसरी फिल्म बनी भोजपुरी के सिनेमा के, तो वो है विदेशिया। ये फिल्म आए 1965 में। अब विदेशिया के बारे में पहले बतावे से अच्छा है कि एक गाना आप सबका सुनाए दी। अब आप सब बताइए कि एमा में से कौन सी फिल्म है जो ना आप सब लोग देखे हैं। तो चलो विदेशिया फिल्म के गाना सुन लिया जाए, तब आप सब इनका मजा आई। अच्छा, खास बात यह है कि ई जोन फिल्म है एकर गाना और बड़े बड़े दिग्गज गायन यानी कि महेंद्र कपूर से लेके मन्ना डे तक के आवाज़ में गाना आपका मिल जाए। तो चलो सुना जाए विदेशिया फिल्म के गाना, जेका सुने के बाद में आपका भोजपुरी संगीत से प्यार हो जाए।

0: तो अभी आप सभी इनका गजोन गाना सुने का मिला, फिल्म विदेशिया से सुने का मिला। और अब आप सबका बताई दी कि विदेशिया फिल्म काहे इतनी खास है, एकरे बारे में का नई चीज़ है जो हम बताए वाली। खास बात यह है कि ये फिल्म क्लासिकल फिल्म रही, काहे कि इमन बहुत सारा क्लासिकल गीत रहा, इमन चैती गीत रहा जो इनके लोकगीत है अब यूपी और बिहार के, एक साथ कजरी जो इनकी सावन में गावा जाते है। तो अब आपका बताई एक फिल्म की कहानी जो उनकी रिलीज भैरी 1963 के बाद। ये फिल्म का सदाबहार और ऐतिहासिक क्लासिकल फिल्म कहा जाता है, काहे कि ये फिल्म बनी रही बिहार के शेक्सपियर माने जाए वाले भिखारी ठाकुर के प्रसिद्ध नाटक पर, और ख़ास तौर पे एक निर्देशन दी ना एस एन त्रिपाठी जी। कहानी की बात करी तो कहानी और जो कहानी का संदेश है वो बड़ा खास रहा। ये फिल्म जो है मुख्य रूप से पलायन यानी कि माइग्रेशन, प्रेम, सामाजिक संघर्ष का दिखावा थी। हर संघर्ष की स्थिति या कहा जाए कि जब पारिवारिक स्थिति, इकोनॉमिक स्थिति जो होती, वो आर्थिक स्थिति जगह कहते हैं कि वो ना ही सही होती, तब परिवार का एक जगह से दूसरी जगह जाए पड़ता है। एक संगे संग कहानी ऐसे व्यक्ति के है जो उन काम के तलाश में परदेश यानी कि कलकत्ता जाता है और पीछे छूट जाता है उनका पूरा परिवार। उनकर पत्नी दर्द और वियोग का ये पूरे फिल्म दर्शावा थी। और ये फिल्म सबसे बड़ी USP खुद यानी कि भिखारी ठाकुर के अभिनय करे के दिखाई नहीं, और उन्हें फिल्म में राय बहादुर भिखारी ठाकुर के रूप में श्रेय दिया गया है। संगीत और संवाद की अगर बात करी तो फिल्म में गीत संगीत सबसे मजबूत रहा पहलू, काहे कि इमन क्लासिकल संगीत सुने का मिला। इमन एगो गीत है भूख ना जाने बासी भात, नींद ना जाने टूटी खाट, प्रीत ना जाने जात कुजात, बड़ा प्यारा गीत है। और एक संगे आगे बात करी तो इमन कजली गीत बहुत सारा है, और जो लोगन के ज़ुबान है वो बिल्कुल लोकगीत जैसन ज़ुबान है। अभिनय के बात करी तो पूरे के पूरे फिल्म में जो उन कलाकार है वह बिल्कुल स्वाभाविक और लागत है कि बिल्कुल यूपी बिहार के ज़मीन से जुड़ा है। सुजीत कुमार, कुमारी नाज के भूमिका इमन खास रही, और विदेशिया फिल्म भोजपुरी संस्कृति का एगो खास फिल्म बन के सिनेमा पर आए और पर्दा पर अपनी बड़ी पहचान बनाई। ना सिर्फ पहचान, लोगन के दिल में आपन छाप छोड़े वाली फिल्म बन चुकी थी। तो आप सबन से ये फिल्म के बारे में बात करे के बाद अब बारी आवा थी कुछ और बात करे के भी, कहे कि ये फिल्म सिर्फ फिल्म लाई रही, ये फिल्म भावना रही जो उनकी आज की जनरेशन के लिए भी लागू होती। हम सब पलायन तो ज़रूरे करी थे, चाहे पढ़े के लिए जायक होए चाहे, और साथ ही साथ इमन बालिका वधू के बारे में भी दिखावा गया है। अगर बात करी तो निर्माता आगे चल के बालिका वधू और अगले जन्म मोहि बिटिया की जो जैसन धारावाहिक के भी निर्देशन किन्ना, और ई सोच ई फिल्म माँ यानी कि विदेशिया माँ भी साफ साफ दिखा थी। तो चला आगे के बात करी हम अपने कुछ खास एक्टर की बात करना चाहिए थे कि हमारे सबके जो बहुत प्रसिद्ध भोजपुरी के एक्टर रही नहीं, चाहे वह हमारे सबके रवि किशन हुए, चाहे हमारे सबके प्यारा मनोज तिवारी हुए, चाहे दिनेश लाल निरहुआ हुए, उनके सबके पहली पहली फिल्म के बात हुई जाए तो सबसे पहली बात हम करब रवि किशन के, जे कि सबसे पहले आइन पीतल और फूल जो उनकी 1992 में रिलीज भई रही, और दूसरी बार वे मुख्य अभिनय कीन तेरे नाम। ये दुई फिल्म में बड़ा बड़ा अभिनय लेके ये सामने आए, और अब बारी है पीतल और फूल के और बात करे के, कहे कि हमें सबका नाम तो बड़ा पता होता है लेकिन अपने खास खास जो पसंदीदा नायक और नायिका हैं इनके सबके जर्नी के बारे में नहीं पता होता है। तो चला आप सबका और बताई दी इनके जर्नी के बारे में, पीतल और फूल के बारे में। तो चला गीत वाला दौर शुरू किया जाए और आपका सुनाए दी प्यारा सा गीत।
1: इश्क क्या समझे चुगल गवार बारे बलमू, हाँ राजे इश्क क्या समझे चुगल
2: पापा मम्मी के लिए।

तो यह उहे दौर के फिल्म जोन बालम परदेसिया के गीत है। और अब एको गाना हम रवि किशन के भी सुनाए दी थे, रवि किशन के फिल्म के लेंस नीला नीला जो उनकी बड़ा प्रसिद्ध गाना है। और अब धीरे धीरे अब रुख करी थे हम ई गीत के बाद मनोज तिवारी की तरफ। और सबसे पहले ये गाना सुन के बताएं कैसा है। चांद भी सोचला कब होई तोहरा रूप के दीदार, तोहरा गोरे गालन पे आवेला हमार प्यार अपार। तू जब हसेलू त दिल के भावेलू, सच में दिलवा में सीधे तीर मारेलू। शुभ संध्या सबलू सावंत जी। और आज भोजपुरी के जोन कहा जाता है ना कि जोन जर्नी है, जोन सफर है, वो आज चर्चा होती। और सबसे पहली फिल्म से लेके अभी तक के आए वाली बड़ी बड़ी फिल्मन के बारे में बात होती। आप सब बताएं कि आप सबके पसंदीदा भोजपुरी फिल्म कौन है। चैटरूम में जल्दी से लिख के भेजें कि आप सबके पहली और पसंदीदा फिल्म कौन है भोजपुरी के, जो उनका देखे के बाद में आपका भी भोजपुरी सिनेमा से प्यार हो गया।

अब जिला तबाह होए के बाद अब बारी है अगले हमारे सके प्रसिद्ध नायक के बारे में बात करें के, यानी कि हमरे और आपके खास यानी कि मनोज तिवारी के बात करें के। जी हाँ, मनोज तिवारी के आप सभन का हमेशा से खास फिल्म लगी है, काहे कि अपने आप में दिग्गज कलाकार है और वह सबसे पहले जो डेब्यू की ना फिल्म रही देशद्रोही, तो सबसे पहले जो फिल्म जो बनी है मनोज तिवारी के वो है देशद्रोही। देशद्रोही फिल्म आए ही सन 2008 में, तो आप सब बताई हैं कि आप सब देशद्रोही फिल्म देखे हो कि नहीं। ठीक है, इवन इनके जो अदाकारी है खास है। ठीक है, तो ये फिल्म के अगर बात करी तो अपने आप में जानी मानी फिल्म रही और ऐसे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ मनोज तिवारी का काफ़ी पहचान मिली। एक बात हम बात करना चाहिए था आपके पसंदीदा और सबके पसंदीदा आपके दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ के। निरहुआ के सबसे पहली फिल्म आए जेकर नाम रहा चलें, 2012 में आए रही और यही के साथ इनके पहचान धीरे धीरे बने शुरू हो गए। लेकिन खास तौर की अगर बात करी तो दिनेश लाल का जो कहा जाता है ना पहचान मिली है वो खास तौर पे निरहुआ दीक्षा वाला से मिली है और यही के बाद उन्हें सब पहचाने लगे। तो चला आगे बात करी और आपका एगो गीत सुनाई जेका सुने के बाद आप सबके जो मन मा प्रेम बढ़ जाए मनोज तिवारी के लिए। तो चला बहुत प्यारा सा गीत है, एक सुन के बताई है कैसन है मनोज तिवारी के अदाकारी के संग।

अब नया पुराना गीत मा एगो ऐसन फिल्म भी आई जोन की वक्त हिंदी फिल्म रही, लेकिन उमन जोन एगो गीत रहा ए मेरी जोहर जबी। ई जोन गीत है एकर पहचान कहूँ ना कहूँ भोजपुरी भाषा से मिलत जुलत है। और सुने के बाद माँ आप सबन का ई लागी कि वाकई माँ ये गीत सच में अपने यूपी बिहार के पहचान दिए थे। मनाडे की आवाज़ माँ ये गीत आप सबन के लिए।

तो ये गाना के साथ आप सोचो तो ये कि का सिर्फ पुरानी फिल्मन में भोजपुरी गाना के झलक देखे का मिली है, ना ना ना, नई गाना नई फिल्म जो है नई फिल्मन में भी भोजपुरी गाना के झलक मिली है। अब फिल्म के नाम बताई तो आप सबका दबंग 2 तो याद हुई, और दबंग 2 का एगो फिल्म गाना आवा रहा, बहुत प्रसिद्ध गाना है, वो गाना हम आपका सुनावा चाहे थे, और गाना है दगाबाज रे। ये गाना सुने के बाद मम्मी आपका लगी कि अरे ये तो हमारे सबके यूपी बिहार के गाना लागत।

सबलू जी लिखत हैं कि सजनवा बैरी वेल हमार हमरा काफ़ी अच्छा लागल हमका, बहुत अच्छी फिल्म है, हमू का बहुत पसंद है। और नीना जी शुभ संध्या, अनिल जी शुभ संध्या, चाहत शर्मा सबका शुभ संध्या। और भाई भोजपुरी फरमाइश सुनने के लिए अगर आप तैयार हैं तो आप ये ज़रूर बताइए कि आपके पसंदीदा फिल्म कौन सी है भोजपुरी। अगर आप कभी भी कोनो भोजपुरी, हाँ ये तो हमें पता है कि इमन जितना भी लोग हैं सबका नदिया के पार तो ज़रूर फेवरेट हुई, लेकिन उकरे अलावा या ओ है तो बिल्कुल चैट रूम में लिख के बताऊँ कि आपके पसंदीदा भोजपुरी फिल्म कौन है।

0: शुरू हो चुका है समय आप सबन के फरमाइशी यानी कि भोजपुरिया फरमाइश बजावे के। तो चला सुना जाए किकर फरमाइश कौन मर है। तो गजब के रोग जवानी में प्यार के बंधन फिल्म से मनोज तिवारी के चला गीत सुना जाए जल्दी से।
1: हाल दिल के संभाले संभल ना सके रोग ऐसन भैलबा बताई का हम मन के महफिल से मस्ती निकल ना सके।

0: दिल में राखब दिल के अरमान बना के, तोहके दिल में राखब दिल के अरमान बना के।
1: चाहत रहो आपसे निवेदन है कि आप भोजपुरी गाना के फरमाइश करें।

तो फिलहाल सबलू जी के फरमाइश के इतना प्यारा गीत सुने के बाद अगला गाना सुने के बारी है नीना के फरमाइश के, हमके ले चल यारा ठंडी ठंडी नहर के किनारे। चला सुना जाए बहुत ही प्यारा गीत, और जगह सुने के बाद आप सबन का प्यार हो जाए प्यारे से गीत से।

चला अगला गाना सुना जाए। अमित के फरमाइश के गाना है, बड़ा प्यारा गाना है, सिनेरुआ कैसे तेजब रे छोटी नंदी। और निरहुआ के गाना जगह सुनने के बाद सबका मुंह आ जाता है।

अब अगला गाना सुने के बारी है मोहिनी जी के, और मोहिनी सुना चाह थी ये प्यारा सा गीत सखी रे बरपा गई नी।

तो चला सुना जाए अनिल जी के फरमाइश के गाना जो उनकी है फूट गई किस्मतिया, और सुन के बताई है कैसे नहीं गीत।

0: तो इतना प्यारा सा गीत सुने के बाद अगला गीत सुने के बारी है इम्तियाज जी के।
1: अरे पूरा इंडिया हिली बाबू,

अनुसार ये पता चला है कि 50 करोड़ की रकम एक चटनी की गोनियों में छुपाकर एमजी गाड़ी में रखी गई। और मजे की बात ये

अब अगला गीत सुने के बारी है सृष्टि के फरमाइश के, और बहुत ही प्यारा गीत इनके फरमाइश है। अब आप सुन के बताइए आपका कितना पसंद आवा। फिलहाल हमें तो ये गाना बहुत पसंद है।

अब एगो हमरे लिसनर है जेका अभी हाल ही में दिल टूट गवा है, और दिल टूटे के कारण वे चाहत हैं कि उनके जो बात है वो हो एक फिर से शुरू हो जाए। तो वे अपने प्रेमिका का ये गाना डेडिकेट करा चाहत हैं, नाम है इनका राहुल, और राहुल सुना चाहत हैं गाना जा रे बदरा। वैसे जा रे चंदा ले या खबरिया, वह बदरा बताए नहीं लेकिन हमें चंदा वाला गाना मिल गया है वो हम प्ले करें। तो राहुल जी बादर तो ना जाए लेकिन हाँ चांद जरूर है वो पहुंच जाए, और चला सुना जाए आपके टूटे दिल के लिए गाना।

0: सुनत रहो अब आखिरी फरमाइश सुरेंद्र यादव जी के, और इन्हीं के साथ अब आरजे बीना का इजाज़त दिए की बारी आ चुकी है, और देखत देखत शाम के कब 7:45 हो गए पता नहीं चला, और अब आरजे बीना का दिया इजाज़त, और आप सबके जो न पसंदीदा कहा जाता है ना कि फेवरेट फ्रिक्वेंसी है ओका सुने, और आगे फरमाइश अपन बरकरार रखें हिंदी फरमाइश, कहे कि एकरे बाद आप सब सुने वाला हो अपन गीत आपके नाम से, और कल फिर मिला जाए और बात हुई ई हफ्ते के और पिछले हफ्ते के बड़ी बड़ी फिल्मन के, कौन कौन सी फिल्म ऐसा है जो उनकी बड़े बड़े दिग्गजन यानी कि दिग्गज स्टार के फिल्म का भी पीछे छोड़ दी से, तो कल बात करने के लिए बिल्कुल तैयार रही हैं, चला सुना जाए आपके पसंदीदा फ्रिक्वेंसी ज्ञान सिटी 9.6 FM, यह गोंडा शहर के धड़कन, आप सुनते रहो शो गोंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला, और अगर आपके दिल में कुछ बसत है तो कुछ और ना सिर्फ और सिर्फ है
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है, वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है, और तो और वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
5: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
4: और जेंट्स के लिए,
5: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
4: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
5: संपर्क करें 9125707093 और 9696674406। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की

नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और किसी ने क्या खूब कहा है कि एक शख्स के बदल जाने पर ए दोस्त इतना क्या रोता है, एक शख्स के बदल जाने पर ए दोस्त इतना क्या रोता है, शहर के शहर बदल जाते हैं, यहाँ वक्त के साथ यही तो होता है। सो जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को अभी तक नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए। उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही स्वीट सा गाना टटोल लीजिए। उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और लगा दीजिए जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत। क्यों? क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके, नाम आपका और ये आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ना दोस्तों। सो कैसे हैं आप सब और क्या है आज की थर्सडे वाली शाम में बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही मखमली सी, बहुत ही रोमानी सी और बहुत ही गहरी सी और बहुत ही सच्ची सी बात मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर बताना। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो अनुष्का जी श्रावस्ती से, जुगल किशोर वर्मा जी जग्गू दादा एमपी से, विजय पाल यादव जी ललहुआ लखीमपुर खीरी से, सुरेंद्र यादव गौरा चौकी से, राजेश सिंह जी मालवे नगर गोंडा से, इम्तियाज अहमद गोंडा से, अनिल शास्त्री गोरखपुर से, सुरेश कुमार जी चौक से, निब्बर जी रानी बाजार सोनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, निशा पटेल नगर गोंडा से, सबीहा गोंडा से आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आरजे सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल। सो एंजॉय करते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की पहली फरमाइश। पहली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों अनुष्का की श्रावस्ती से, और अनुष्का को श्रावस्ती से सुनना है कुमार सानू की आवाज में गाना एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। मैंने भी एक लड़की को देखा तो एकदम वैसा ही लगा था जैसा इनको लग रहा है। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा हमारी अनुष्का की फरमाइश पर, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

हमें एंजॉय किया वो गीत जिसको सुनते ही दिल बस चुपके से शर्मा के मुस्कुरा देता है। ये फरमाइश थी अनुष्का की श्रावस्ती से। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, बिल्कुल बढ़ेंगे हमारी अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले कुछ कहना चाहूँगी कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ऐसे ही आप साथ आते रहेंगे और ये गीतों का कारवां, ये गीतों का सिलसिला चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा और ये महफिल ऐसे ही खुशनुमा बनती रहेगी। सो एंजॉय करते हैं अब हमारी आज की अगली फरमाइश। सो दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे पास में है जुगल किशोर वर्मा जी की एमपी से, और जग्गू दादा को सुनना है गाना दुल्हन वही जो पिया मन भाई। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा गाना, ले तो आए हो हमें सपनों के गांव में, और ये गाना है दुल्हन वही जो पिया मन भाई मूवी का। सो इस मूवी का गाना एंजॉय करेंगे जग्गू दादा की फरमाइश पर। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो समीम जी, आपका स्वागत है, और अरमान फ्रॉम गोंडा स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो, और एंजॉय करते हैं हमारे जग्गू दादा की बहुत ही खूबसूरत सी फरमाइश। स्टे ट्यून्ड।

एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा नगमा, सजना ओ सजना, दुल्हन वही जो पिया मन भाए मूवी का ये था गाना, और इसकी फरमाइश हमारे पास में आई हुई थी जग्गू दादा की तरफ से। एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो मुस्तफा जी सऊदी से, शशि सिंह जी गोंडा से, स्टे ट्यून्ड। और अगली फरमाइश हमारे पास में है निब्बर जी की रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, और उनको सुनना है गाना आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, जिंदगी खपा खपा और तुम दिल लगाने की बात करते हो। स्टे ट्यून्ड।

दिल लगाने की बात करते हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा दर्द भरा नगमा, रियलिटी चेक कराने वाला नगमा, किसकी फरमाइश पर? निब्बर जी की फरमाइश पर। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। मनी शर्मा फ्रॉम खुरासा गोंडा। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों विजय पाल यादव जी की ललहुआ लखीमपुर खीरी से। उनको सुनना है शक्ति मूवी का गाना मांगी थी दुआ कबूल हो गई। हमने तो जिंदगी में दुआ जितनी भी मांगी वो सारी की सारी टचवुड कबूल हो गई, इसीलिए कोई भी ऐसी दुआ मांगते ही नहीं जिससे इन फ्यूचर हमें तकलीफ हो जाए, सोच समझ के ही दुआ मांगते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एवरीवन, और आप सबको भी यही सजेशन देना चाहूँगी कि तुरंत ऐसे चंद मिनटों की खुशी में कोई दुआ भगवान से मांग नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो अगर वो कबूल हो गई तो, और क्या पता वो दुआ कबूल ना हो, वही आपकी सेहत के लिए ज्यादा अच्छा हो। सो एंजॉय कर लेते हैं ये वाला गाना विजय पाल जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

छोटुआ वो कबूल हो गई। शक्ति मूवी का ये गाना हमने एंजॉय किया है विजय पाल यादव जी की फरमाइश पर, जो कि है ललहवा लखीमपुर खीरी से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, और दोस्तों हमारे पास में है अगली फरमाइश सुरेश कुमार जी की चौक से, और उनको सुनना है गाना जो भी कसमें खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके। सो एंजॉय करते हैं राज मूवी का ये गाना अलका याग्निक उदित नारायण की आवाज में हमारे सुरेश कुमार जी की फरमाइश पर, जो कि है चौक गोंडा से। स्टे ट्यून्ड।

और वादा किया था जो तूने ही जीवन मिलाया था मेरे सवेरा, क्या तुम्हें याद है। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन इस नगमे ने कुछ याद दिला दिया। गुलजार जी का कहना है कि खता उनकी भी नहीं यारो वो भी क्या करते, खता उनकी भी नहीं यारो वो भी क्या करते, बहुत चाहने वाले थे किस से वफा करते। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है सुरेंद्र यादव जी की गौरा चौकी से, और उनको सुनना है गाना छम्मक छल्लो। सो एंजॉय करते हैं छम्मक छल्लो, जरा धीरे चलो, सिर्फ और सिर्फ सुरेंद्र यादव जी की फरमाइश पर।

सुपर डुपर डुपर हिट नगमा कुमार सानू की आवाज में सुरेंद्र यादव जी की फरमाइश पर जो की है गौरा चौकी से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है मुमताज अंसारी जी की गोंडा से। मुमताज अंसारी जी को गोंडा से सुनना है गाना दिल मेरा तोड़ दिया उसने बुरा क्यों मानूं, और उसको हक है कि वो मुझे प्यार करे या ना करे। सो एंजॉय करते हैं कसूर का ये गाना अलका याग्निक जी की बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही सुरीली और दर्द भरी आवाज़।

मेरा तोड़ दिया उसने बुरा क्यों मानू। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। मोहम्मद मुशीब जी बाराबंकी से आपका स्वागत है और इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है किसकी? मालवे नगर से राजेश सिंह जी की। और राजेश सिंह जी को सुनना है गाना मालवे नगर से, जिंदगी गुजारने को एक साथी चाहिए। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा मोहम्मद रफी जी की आवाज़ में राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

मोहम्मद रफी जी की आवाज़ में हमने इंजॉय किया है ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। बढ़ते हैं दोस्तों हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है, जानते हैं किसकी अगली फरमाइश हमारे पास में है? चांदनी की गोंडा से, और चांदनी को गोंडा से सुनना है गाना। मेरे नसीब में तो है कि नहीं, सो एंजॉय करते हैं सुपर डुपर हिट रिमिक्स वर्जन वाला गाना। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो नागेंद्र भारती, स्टे ट्यून्ड। और ये फरमाइश है चांदनी की, आई लव दिस सॉन्ग।

तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं। हमने एंजॉय किया है ये वाला नगमा चांदनी की फरमाइश बजो की है गोंडा से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है शशि सिंह जी की। एंजॉय करते हैं शशि सिंह जी की आवाज फरमाइश पर किशोर कुमार जी की आवाज में ये वाला नगमा। स्टे ट्यून्ड।

0: लिया।
1: सो दोस्तों, ये फरमाइश थी शशि सिंह जी की। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है मोहित के मालवे नगर गोंडा से। एंजॉय करेंगे मोहित की फरमाइश और इस फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल के साथ में। सो कहीं मत जाइएगा, यहीं बने रहिएगा अपने रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर अपनी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल के साथ में। मिलते हैं सीधे 9 बजे। स्टे ट्यून्ड।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: द मैसेज आई शेयर देन एट विवाटेक 2021 वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन हेल्प। इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी फ्रॉम क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
1: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
0: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
1: 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
2: सेंट कोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलों की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
4: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
5: उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
6: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
4: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
7: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था, हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
4: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1,761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि डॉक्टर श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉक्टर श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खारब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसर और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक बताया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आपके अपने आरजे सिंपल नॉट से सिंपल आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सो क्या आप सभी ने पेट पूजा कर लिया और हाल चाल कैसा है मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल एंजॉय करते हैं अगला गाना। तो क्या अगले फरमाइशी गीत को एंजॉय करने के लिए आप सभी तैयार हैं? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में हाँ लिखकर जरूर बताना। उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। इट्स कुमार फ्रॉम एमपी रीवा, अनिल शास्त्री जी गोरखपुर से एंड नीना आपका भी स्वागत है और दीपांशी तिवारी स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम। सो एंजॉय करते हैं अब अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है मनीष शर्मा की खोरासा गोंडा से और मनीष शर्मा को खोरासा गोंडा से सुनना है गाना वेले। तो एंजॉय करते हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी का ये वाला नगमा, वरुण धवन सिद्धार्थ मल्होत्रा का गाना सिर्फ और सिर्फ मनीष शर्मा की फरमाइश पर। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी और चटपटी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 गोंडा शहर।

थी मनीष शर्मा की खुरासा गोंडा से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में जानते हैं किसकी है। अगली फरमाइश हमारे पास में है सबीहा की, और सबीहा को सुनना है गाना मैं तेरा धड़कन, तेरी ये दिन तेरी रातें तेरी, अब बचा क्या अब बचा क्या। सो एंजॉय करते हैं ये वाला गाना, सुनिधि चौहान और केके का गाना, अजब प्रेम की गजब कहानी का गाना, सिर्फ और सिर्फ सबीहा की फरमाइश पर।

प्यार नजर नहीं आता, घर बार नजर नहीं आता और संसार नजर नहीं आता है जब प्यार होता है। हमने एंजॉय किया है ये वाला गाना सभी की फरमाइश पर। सो क्या आप सभी तैयार हैं अगली फरमाइशी गीत की तरफ बढ़ने के लिए? सो अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों मोहम्मद मुशीब जी की बाराबंकी से, और मोहम्मद मुशीब जी को बाराबंकी से सुनना है गाना तेरी बदमाश।

श्याम मेरी कमजोरियां एक दिन पकड़ी जाएंगी, और वैसे भी रोज की चोरी तो एक दिन पकड़ी ही जाती है जाने मन। सो एंजॉय करते हैं ये वाला गाना मोहम्मद मुशीब जी की फरमाइश पर, जो कि है बाराबंकी से। स्टे ट्यून्ड।

हम इंजॉय किए हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा हाउ रोमांटिक वाला और डबल मीनिंग वाला नगमा हमारे मोहम्मद मुर्शीद जी की फरमाइश पर जो की है बाराबंकी से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ और अगली फरमाइश हमारे पास में है पार्टनर मूवी के गाने की और एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर हिट तड़कता भड़कता सा हाई एनर्जी हाई बीट वाला गाना सिर्फ और सिर्फ कृष्णा वर्मा की फरमाइश पर जो की है दुखरनाथ से। स्टे ट्यून्ड।

हमने एंजॉय किया है पार्टनर का ये गाना सोनी दिन नखरे। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है मुस्तफा जी की, और उनको सुनना है गाना बहुत जताते हो चाह हमसे, करोगे कैसे निभाह हमसे। ए दिल, इतनी बार दिल दिल दिल बोल दिया कि वहीं कंफ्यूज कर दिया, चाहत जताना निभाना सब वहीं फेल हो गया, एकदम चौपट हो गया, लेकिन गाना एकदम सुपर डुपर हिट है। सो एंजॉय करते हैं ये वाला गाना मुस्तफा जी की फरमाइश। माय फीलिंग्स की कदर हो चाहे ना हो, लेकिन फीलिंग्स का मजा ना फरमाइशी गीतों से ले ही लेना चाहिए।

सा हाउ रोमांटिक वाला नगमा हमारे मुस्तफा जी की फरमाइश पर। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों, और अगली फरमाइश हमारे पास में है वेलकम के गाने की। सो एंजॉय करते हैं एक ऊंचा लंबा कद, और इसकी फरमाइश हमारे पास में आई हुई है दोस्तों नव्या की तरफ से।

खाना बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों। हमारे पास में जो अगली फरमाइश है वही है हमारी आज की आखिरी फरमाइश। अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है हाउ रोमांटिक सुपर डुपर हिट और सदाबहार नगमे की, मेरा सनम सबसे प्यारा है। है आरजू तुझ में खो जाऊं मैं, इस लाइन को अगर मुझे लाखों बार सुनाया जाए ना तब भी मैं इस गाने से बोर नहीं होने वाली हूं, और जब तक जिंदा हूं शायद तब तक मैं ये लाइन सुन सकती हूं कि है आरजू तुझ में खो जाऊं मैं। सो एंजॉय करते हैं आशा जी कुमार सानू की आवाज़ में ये बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा सा नगमा, और इसी के साथ में लेना चाहूँगी अलविदा। सो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइज हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता, क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, और आप सभी की तरफ से बेइंतहा प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं कल, एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा।

0: नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
6: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
5: और जेंट्स के लिए,
6: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
5: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
6: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
7: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
8: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
9: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
10: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
11: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94-50-944-999।
2: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
7: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
12: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
13: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
12: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
14: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
15: मतलब?
14: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
16: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
17: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
18: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
19: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
18: सच में? क्या खास है वहाँ?
19: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
18: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
19: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
18: और फोटोग्राफी वगैरह?
19: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
18: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
19: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613-949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
18: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। शाम का सलाम कबूल करें आप। आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं और रेडियो गणेशली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम बहारे गजल। और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके थोड़ी सी और खास। दर्द का सांस दे रहा हूं तुम्हें, दर्द का सांस दे रहा हूं तुम्हें, दिल के सब राज दे रहा हूं तुम्हें, ये गजल गीत सब बहाने हैं, ये गजल गीत सब बहाने हैं, मैं तो आवाज दे रहा हूं तुम्हें। जी हाँ, हमने तो आपको बड़े प्यार से आवाज़ दी है, इस उम्मीद के साथ कि भाई आप हमारे साथ जहाँ कहीं भी होंगे वो आ जाएंगे। फिलहाल हमको मनीष शर्मा जी दिखाई पड़ चुके हैं। भाई मनु सर वेलकम। जी हाँ, अभिनंदन आपका भी। नीना जी याद आप करते हैं आपको। और आज जिंदगी के कुछ पहलुओं पर बातचीत करते हैं, कुछ ख्वाब, कुछ सपने, कुछ हौसले, कुछ जिंदगी, कुछ रिश्ते, कुछ अपनापन, या कुछ वो जो हमारे लिए हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा अहमियत रखता हो, अपना अपना हम लोग विचार रखेंगे और एक एक करके उन मुद्दों पर बातचीत करेंगे। क्या सोचते हैं आप जिंदगी के बारे में? अगर आपसे पूछा जाए कि आप जीवन को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे, तो आप किस नज़रिए से जीवन को देखते हैं? खुशी आपके हिसाब से क्या है? गम आपके हिसाब से क्या है? सपने आपके हिसाब से क्या हैं? और सबसे बड़ी बात, अपने आपके हिसाब से कौन है? तो जिंदगी के कई सारे पहलुओं को छूते हुए हम आज इस कार्यक्रम को बनाने की कोशिश करेंगे थोड़ी सी और खास। और अच्छा ये रहेगा कि आपका सहयोग और आपकी टिप्पणियाँ अगर हमें मिलती रहेंगी तो शायद कुछ बेहतर हो पाएगा। जी हाँ, मेरे साथ नेहा जी बहराइच से हैं। नमस्कार शुभ संध्या। जी हाँ, आदाब आपको। और नेहा जी को कल हम सुन नहीं पाए, भाई बुधवार था, बड़ा अफसोस रहा हमको। चलिए खैर, हो सकता है कहीं कोई मसरूफियत है। तो बहरहाल फिर से एक बार, दर्द का सांस दे रहा हूँ तुम्हें, दिल के सब राज दे रहा हूँ तुम्हें, ये गजल गीत सब बहाने हैं, मैं तो आवाज़ दे रहा हूँ तुम्हें। पहला प्रश्न आप सभी के लिए, आप क्या सोचते हैं, आपके हिसाब से जिंदगी क्या है? अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते मैंने पढ़ा कि विलियम शेक्सपियर ने कहीं लिखा, लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाई एन इडियट, यानी किसी मूर्ख व्यक्ति ने कहा था कि जिंदगी एक कहानी है। आप क्या मानते हैं? अपना नजरिया जरा हमारे साथ साझा कीजिए। हम देखना चाहते हैं कि आप जिंदगी को किस नज़रिए से देखते हैं। जी हाँ, तो चलिए चलते हैं इस प्यारी सी गजल की ओर, और आपके नज़रिए का इंतज़ार हमको रहेगा। और निहाद ने लिखा है कि सर मम्मी की तबीयत नहीं ठीक थी, सो टाइम नहीं मिला। अरे माजरत चाहेंगे भाई, हम जानते नहीं थे और आपने अच्छा किया कि हमको बता दिया। और इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, बहुत शीघ्र उनको स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा। आसमान वाला कभी कठोर नहीं हो सकता। हाँ, थोड़े बहुत इम्तहान जिंदगी के चलते रहते हैं। और जी हाँ, तो बताइए आपके हिसाब से जिंदगी क्या है? एक प्यारी सी गज़ल सुनते हैं और इस गज़ल के बाद जब लौटेंगे तो आपके नज़रिए की तरफ हमारी नज़र होगी। फिलहाल सुनते रहिए और रेडियो गणेशली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी

जी हाँ, हर एक ख्वाब मुकम्मल हो जरूरी तो नहीं। इंसान अपनी जिंदगी में बहुत कुछ चाहता है, लेकिन अंततः जो उसको मिलता है वो, मैंने जहाँ तक अनुभव किया और हमारा अपना व्यक्तिगत परसेप्शन जो है, जो अपनी समझ हमको आई, वो ये आई कि हासिले ज़िंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं। हासिले ज़िंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं। ये किया नहीं, वो हुआ नहीं, ये मिला नहीं, वो रहा नहीं। दुनिया के लगभग लगभग सभी इंसानों की स्थिति इन चार में ही अटकी है। ये कर नहीं पाए, वो हो नहीं पाया, वो मिल नहीं पाया, वो मिल गया लेकिन फिर साथ न रह पाया, छूट गया। आते हैं आपके उत्तर की ओर और देखते हैं भाई, आपने जिंदगी को कैसे परिभाषित किया है, आपके हिसाब से जीवन की क्या परिभाषा है।

देखते हैं भाई, हमारे पास पहला संदेश। जिंदगी बहुत ब्यूटीफुल है, क्या बात है। मनीष शर्मा जी ने लिखा। हमारे यहाँ नारीगंज असली में कोई फंक्शन चल रहा था, तो एसपी सर आए हुए थे ऑडिटोरियम में, चीफ गेस्ट थे हमारे वो। तो उन्होंने कहा कि हम लोग जब पढ़ते थे तो टीचर ने एक दिन लिखा, जिंदगी खूबसूरत है, और उसके बाद उस पर स्टार लगा दिया। इससे क्या मतलब निकला, आप क्या समझे? तो बच्चे तो बच्चे, आपने देखा होगा कभी कोई विज्ञापन आता है, म्यूचुअल फंड बाजार निवेश के अधीन है, उस पर स्टार लगा रहता है, इस पर ये इतने की छूट है, उस पर स्टार लगा रहता है। स्टार लगा होने का मतलब ये होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस आर अप्लाइड, नियम एवं शर्तें लागू। आपने अगर बैंक का फॉर्म भरा हो, बैंक में आपका अकाउंट होगा, तो लिखा रहता है कि अगर ये बैंक बैंकक्रप्ट हो गया, दिवालिया हो गया, तो आपको पैसा नहीं लौटा लेगा। और हम साइन करते हैं क्योंकि उतने छोटे छोटे अक्षर में लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशंस, कि शायद उसको पढ़ने की नौबत किसके पास है। आपने अगर कोई भी कागजी कार्यवाही की होगी तो तमाम जगह पर आपसे साइन कराए जाते होंगे, और आप हर चीज़ पढ़ते नहीं होंगे, साइन करते हुए चले जाते होंगे, साइन करते हुए। वहाँ वो कंडीशंस होती हैं, और जब कोई ऐसी स्थिति आती है तो कंपनी कहती है, देखिए आपने साइन किया है और हमारी पॉलिसी में ये लिखा हुआ है, जिंदगी खूबसूरत है। उन्होंने कहा स्टार, उस पर लगा दिया टीचर ने। इसका मतलब ये हुआ, जिंदगी खूबसूरत है लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस आर अप्लाइड, नियम एवं शर्तें लागू हैं, जिंदगी आपको खूबसूरत बनानी पड़ेगी, उसके लिए कुछ टर्म्स हैं। जी हाँ, अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपको बहुत अच्छा पढ़ना पड़ेगा खूबसूरत बनने के लिए। अगर आप एक गायक हैं तो आपको रियाज करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, अपनी लाइफ का बेस्ट देना पड़ेगा, जिंदगी खूबसूरत होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और नीना जी कहती हैं, जिंदगी एक पहेली है जिसको समझना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जिंदगी कैसी है, पहेली है, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए, बिल्कुल। जी हाँ, अब देखते हैं भाई, तीसरी और कोई प्रतिक्रिया है हमारे किसी दर्शक की। हाँ दादा, अनिल शास्त्री जी आ चुके हैं चरण स्पर्श। शुभ संध्या दादा आपको, और उम्मीद करता हूँ कि आपका भी हमको ज्ञान प्राप्त होगा। जी, और जीवन एक संघर्ष है, ये अब मैंने जाना, सांग का मतलब सर। जी, अब नेहा जी ने लिख दिया है कि जिंदगी संघर्ष है। देखिए कितने ओपिनियन है लोगों के, वाह क्या बात है भाई। और जिंदगी मनीष शर्मा की तरह से होनी चाहिए, क्या बात है। और जी हाँ, हम सभी के देखने का नज़रिया जिंदगी का अलग अलग होता है। सभी, हम सभी

और हम अगर सचमुच बात करें तो इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो अपनी तकदीर पर रोते हुए मिलते हैं। जिंदगी के बारे में आपने अपने अपने विचार रखे, बहुत अच्छे लगा। और जिंदगी एक पहले है, मुझे पसंद नीना की जी, क्या बात है, जिंदगी एक पहली है। जी हाँ भाई, अब ये एक्स कुमार जी आपका अभिनंदन है, स्वागत है। और क्या बात है, तो जिंदगी पर हमने अपने विचार रखे। अब दूसरा टर्म हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आप भाग्य को क्या मानते हैं, व्हाट इज लक, तकदीर किसे कहते हैं आप, क्या तकदीर जैसी कोई चीज होती है आप मानते हैं या फिर नहीं होती है, और अगर हाँ तो कैसे और अगर ना तो कैसे। आइए जिंदगी के फलसफे पर बात की, इस मौजू पर बात की। अब मुस्तफा जी ने कहा सर जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ, हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ, कल क्या हो किसने जाना। जी हाँ, जिंदगी बिल्कुल सही कहा आपने, जिंदगी एक सफर भी है, बिल्कुल, क्या भाई, पहेली भी है, सफर भी है, खूबसूरत भी है। अब मुड़ते हैं तकदीर की तरफ, आप बताइए व्हाट इज लक, भाग्य क्या होता है, क्या आप मानते हैं कि भाग्य जैसी कोई चीज़ होती है, और अगर हाँ तो क्या आप ये मानते हैं कि बैड लक जैसी कोई चीज़ होती है। अब आपके विचार हमको भाग्य के बारे में सुनने हैं, जिंदगी पर आपने बहुत अच्छे फलसफे दिए, और अब चलेंगे और छुएंगे मौजूआत को जो है किस्मत पर, क्या आप लक में यकीन करते हैं, आप मानते हैं कि गुड लक और बैड लक होता है या नहीं होता है। जी हाँ, हमें अपने नज़रिए से रूबरू कराइए, फिर हम आपके सामने अपना नज़र रखेंगे। करवट बदल बदल कर हर एक रात काट दी, करवट बदल बदल कर हर एक रात काट दी, कच्चे मक्का में अब के भी बरसात काट दी, वो सर भी काट देता तो होता ना कुछ मलाल, वो सिर भी काट देता था तो होता ना कुछ मलाल, अफसोस ये है उसने मेरी बात काट दी, हालांकि हम मिले थे बड़ी मुद्दतों के बाद, हालांकि हम मिले थे बड़ी मुद्दतों के बाद, औकात की कमी ने मुलाकात काट दी। अब ये पंक्ति, औकात की कमी ने मुलाकात काट दी, मतलब कोई दो मित्र हैं, एक मित्र जो है वो साइकिल पर ही रह गया और दूसरा मित्र फॉर्चूनर पर चला गया, तो दोनों बड़ी मुद्दत के बाद मिले, एक ही साथ पढ़ने वाले, लेकिन चूंकि वो साइकिल पर था और वो किसी बहुत अच्छी सी लग्जीरियस गाड़ी पर था, तो औकात की कमी ने मुलाकात काट दी। मतलब बराबरी के लोगों से दोस्ती लोग करते हैं कि भाई हम अगर 30 लाख की गाड़ी से उतर रहे हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उतरें जो 50 लाख की गाड़ी से उतर रहा हो। और आपने देखा होगा, अभी मैंने कहीं पढ़ा किसी के स्टेटस में कि किसी मशहूर, किसी अमीर, किसी पॉपुलर व्यक्ति के साथ

लगता है कि जो ईगो है, जो घमंड है, उसने इंसान के जज्बात को थोड़ा सा कम कर दिया है। हो सकता है आप मानते हैं या नहीं। आपसे बात करेंगे तकदीर के बारे में, भाग्य के बारे में। फिलहाल चलते हैं एक प्यारी सी गज़ल की तरफ। जी हाँ, मखमली आवाज़। और मखमली आवाज़ जब मैं कहूँ, इसका मतलब वो हमारे जगजीत सिंह साहब हैं।

जी हाँ, वो मोहब्बत जिसे कहते हैं खुदा की नेमत, वो नेमत हमारी किस्मत में हो ज़रूरी तो नहीं, क्या बात है। चलते हैं, आपके विचार पढ़ते हैं कि नेहा जी लिखती हैं, किसी काश तकदीर लिखने का हक माँ को होता तो कोई भी शख्स परेशान ना होता। नज़रिया अच्छा है भाई, किस्मत के खेल निराले। जी, इस कुमार जी का कहना है कि मेरे लक मेरे अकॉर्डिंग कुछ नहीं है, रोड पर खड़े हो गाड़ी मिल गई तो कोई लक नहीं है, जिंदगी रूपी गाड़ी में जो कुछ मिल गए तो लक ये भी नहीं है। जय नागेश्वर धाकर जी हैं भाई, हेलो फ्रेंड्स, आपको भी हेलो नागेश्वर जी, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बहुत दिन के बाद दिखाई पड़े। इम्तियाज अहमद जी हैं, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, आदाब आपको भाई। और जी सब मंगलमय हो, जी सबका मंगल हो भाई, ये आवश्यक है। और मुस्तफ़ा जी लिखते हैं, सर हमको लगता है तकदीर, भाग्य और किस्मत पहले से लिखी हुई नहीं होती। चलिए जी हाँ भाई, और कायनात जी आ चुकी हैं, जी नमस्कार। सविता शास्त्री जी, चरण स्पर्श आपको प्रणाम, उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगी। और जी तो भाई, सब लोगों ने अपने अपने, लवली सिंह जी हमारे साथ उपस्थित हैं, मनुषा जी नमस्कार, जी हाँ आपको भी नमस्कार, कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। जी तो भाई, अभी किस्मत की बात चल रही है और देखते हैं भाई और लोगों के कुछ विचार। जी हम जब जी ये तो खैर पर्सनल कुछ है भाई, इसके बाद जहाँ तक मुझे लगता है, मतलब मैं नहीं जानता कि आप कहाँ तक सही हूँ कहाँ तक गलत, मुझे लगता है कि जब हमारी नज़र उन चीज़ों की ओर जाती है जो चीज़ें हमारे पास हैं, तो हमको लगता है हमारी तकदीर अच्छी है। और जब मुझे लगता है कि हमें लगता है कि ये चीज़ें हमारे पास नहीं हैं, तो हमको लगता है कि हमारी तकदीर ख़राब है। अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बात अगर बताऊं तो क्रिकेट का बहुत ठीक ठाक खिलाड़ी था मैं, तो बच्चे साथ में पढ़ते थे तो खेलते थे, नेहरू स्टेडियम में जाना होता था, तो हम बच्चे बहुत कुछ भाई, लोअर मिडिल क्लास, कुछ मिडिल क्लास, कुछ अपर क्लास, क्योंकि क्रिकेट तो वहीं खेला जाएगा। तो एक लड़का मेरे साथ जो है वो क्रिकेट खेलता था, तो वो जूता पहन करके आया, उसका जूता हमको दिखने में बहुत अच्छा लगा, तो वुडलैंड का जूता, मतलब उसने कहा देखो इसको पहन के जब बॉलिंग करते हैं या बैटिंग करते उसमें दौड़ते हैं तो बड़ा कंफर्टेबल होता है। तो उससे हमने पूछा कि कौन सी कंपनी का है, तो उसने कहा वुडलैंड का है। तो उस समय मैंने उससे पूछा कि लगभग इसकी कीमत कितनी होगी, तो उसने कहा 4200 रुपये। मैं गोल्ड स्टार पहनता था, 250 रुपये का। हम आए तो हमने अपने पिताजी से कहा कि एक जूता लेना है, तो अपने कहा ठीक है ले लो। हमने कहा कि 4200 रुपये का है, तो मेरे पिताजी ने उत्तर दिया कि बेटे मेरी सैलरी 7000 रुपये है, 4200 रुपये आपके जूते पर कैसे खर्च कर दे, 10th का लड़का, कितनी ही समझ होगी। और अपनी तकदीर को मैंने कोसा कि किस घर में पैदा कर दिया जहाँ पर पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने बेटे को एक अच्छा सा शूज़ दे सके। मंगलवार का दिन था, हनुमानगढ़ी गया था मैं, और प्रसाद चढ़ाकर जब निकला तो मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बैठा हुआ भीख मांग रहा था और उसके पास पैर ही नहीं थे। हमने ऊपर वाले को धन्यवाद दिया, हमने कहा जब तक, मैंने सोचा कि उस समय क्या है, जब मेरी निगाह वहां पर थी जहां पर मेरे पास पैसे नहीं थे जूते खरीदने के लिए, तो मुझको लगता था मेरी तकदीर खराब है। लेकिन जब मैंने ऐसे व्यक्ति को देखा जिसका पैर ही नहीं है, तो मुझे लगा
ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। ऐसे ही मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ज़िंदगी जो दे उसे अगर आप मुस्कुरा कर ले लेते हैं तो आपकी तकदीर अच्छी है, और अगर आपको शिकायतें हैं तो उस तकदीर को आप शायद बुरा कहेंगे। जो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, आशु मिश्रा जी आ चुके हैं मेरे साथ। गुड इवनिंग सर जी। जी हाँ, शुभ संध्या आपको भी। और अच्छी चीज़ों को देखें, पॉजिटिव को देखें, जो हमारे पास है, जो चला गया ठीक है, वो इट्स ओके। वो वहाँ पर मेरी नज़रिया मेरा बदला, ये दुर्भाग्यशाली, मुझसे ज़्यादा तो ये है, बेचारे के पास पाँव ही नहीं है। अगर इसको 42,000 का भी जूता दे दिया जाए तो पहन नहीं सकता, बिकॉज ही हैज़ नो लेग। मेरे पास है तो जूता ही तो नहीं है, तो जूता तो है ही है, बस वो महंगा वाला नहीं है। तो जब हमारी निगाह जाती है उन चीज़ों की ओर जो चीज़ें हमारे पास हैं, तो तकदीर अच्छी हो जाती है। और जब निगाह उन चीज़ों पर जाती है जो नहीं है, तकदीर बुरी हो जाती है। शायद यही तकदीर है मेरे हिसाब से। जी हाँ, घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, और प्रयत्न कीजिएगा कि आसमान, प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो शनिवार को पुनः आपसे मुलाकात होगी आप ही के कार्यक्रम बाहर एक गज़ल में। तब तक सुनते रहिए और रेडियो गन 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलते चलते आपको सुनाते हैं एक प्यारा सा गीत मुकद्दर से जुड़ा हुआ।

हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु। आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे, प्यार भरी कहानियों के साथ ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी नासमझ। मनु एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम पास करके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नायब तहसीलदार बन गया। ये उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। उसे ट्रेनिंग पीरियड के लिए सीधी में रहने का ऑर्डर मिला। उसके पिता बहुत खुश थे। बोले, रामराज और मैं सालों से एक ही स्कूल में टीचर रहे हैं। रिटायर होने के बाद रामराज सीधी में रहने लगे हैं। मनु, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। रामराज जी के मकान के आसपास कुछ ना कुछ बंदोबस्त तुम्हारे रहने का हो ही जाएगा। पिता पुत्र को देखकर रामराज गुरुजी खुश हो गए। मैं मनु के लिए कोई और मकान क्यों ढूंढूं? मेरा मकान क्यों नहीं? वो बोले, तब लड़का आपके हवाले। मैं निश्चिंत हुआ, पिताजी ने कहा। रामराज गुरुजी अपने आधे कच्चे आधे पक्के मकान में अपने प्रिय मित्र के पुत्र के लिए स्थान बनाने में पूरे उत्साह से जुट गए। उत्तर की ओर का आयातकार कमरा जिसकी खिड़की कच्चे आंगन में, एक दरवाजा बाहर दूसरा बीच वाले कमरे में खुलता था, उसके बीच वाले दरवाजे को बंद करके कमरे को अलग सा बना दिया गया। जल्दी ही उसका रूटीन भी फिक्स हो गया। वो सुबह बड़ी फुर्सत से उठता, चाय बनाकर इत्मीनान से पीता, फिर आंगन में खुलने वाली खिड़की में झांकता। आंगन में कुछ काम कर रही गुरुजी की दोनों लड़कियां नीति और निधि कई बार बल्कि अक्सर ही एक साथ कह उठती, आ जाइए बाथरूम खाली है। एक साथ बोलने पर वो झेप जाती और एक दूसरे को देखकर हंसती। नहाने के लिए जाते हुए मनु को लगता दोनों लड़कियां उसे देख रही हैं। तैयार होकर वो घर से निकलता और एक होटल में मंथली पेमेंट पर खाना खाते हुए ऑफिस चला जाता। उसने बिना किराए के रहना तो एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन गुरुजी के बहुत कहने के बावजूद भी उसने उनके घर में फ्री में खाना स्वीकार नहीं किया। शाम को वो ऑफिस से लौटकर सुस्ताता, फिर लाइब्रेरी चला जाता, कुछ बुक्स इशू कराता और रात का खाना खाकर ही वापस आता। इस बीच दूध वाला दूध का पैकेट रामराज गुरुजी के घर पे दे जाता। गुरुजी की पत्नी रुक्मणी, नीति, निधि या सबसे छोटी लड़की जिसको छोटी ही पुकारा जाता था, उसे मनु के आने पर पैकेट देकर उसके पास भेज देती। जब कभी लड़कियों की उंगलियों का स्पर्श हो जाता तो मनु को एक अजीब सा एहसास होता। फिर वो रात को बुक पढ़ते पढ़ते सो जाता।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है नासमझ। अब तक आपने सुना, मनु की नई नई नौकरी लगी थी और ट्रेनिंग वाली प्लेस पर उसके पिताजी के फ्रेंड का घर था, सो पिताजी ने उसे वहीं सेट कर दिया। अब आगे, जब मनु छुट्टियों में घर गया तो पूरा परिवार उसका ब्यौरा लेने लगा। अम्मा बोली, मनु रामराज गुरुजी भले हैं पर ध्यान रहे तुम्हें अपनी लड़कियों के लिए फंसा ना लें। अम्मा की स्पेशलिटी है, वो संभावित असंभावित पर विचार करते हुए अपने दिमाग को हमेशा चौकन्ना रखती हैं। पिताजी का आशय भी वही, मनु रामराज जी से मेरे अच्छे संबंध रहे हैं, तुम ऐसा कोई काम ना करना कि उस पर गलत इम्प्रेशन पड़े। तुमने मनु को लड़की वाले घर में रखा ही क्यों? रामराज जी बड़े चतुर बनते हैं, तभी लड़के को मुफ्त में रख लिया है, आजकल अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं? पिताजी को उलाहना देकर अम्मा मनु से कहने लगी, मनु हम तो परेशान हैं, रोज ही कोई ना कोई तुम्हारे ब्याह की बात लेकर चला आता है। आगे का हाल मनु की बहन दीप्ति ने कहा। हाँ भैया, अभी एक दिन पीएससी के मेंबर अपनी लड़की का प्रस्ताव लेकर आए थे, लाखों की शादी होगी और तुम अगली बार पीएससी में बैठो तो फर्स्ट कैटेगरी में पास होगे। और तुम्हारे कॉलेज के प्रोफेसर आते ही बोले आपका लड़का मांगने आए हैं और रीवा के वो जो सबसे बड़े वकील हैं। पिताजी बोले, इतने बड़े बड़े लोगों को मना करते नहीं बनता, और तुम अभी शादी के लिए तैयार ही नहीं हो। पहले दीप्ति और तृप्ति की शादी हो जाए पिताजी, मैं कह चुका हूं ना। मनु को खुद पर गर्व हो आया, वो कितना खास है। अम्मा गुरुजी की लड़कियों को लेकर बेकार चिंता कर रही हैं। रामराज गुरुजी का स्टैंडर्ड एवरेज है और यहाँ पर तो ऐसा होने वाला भी नहीं है कि लोग कहें कि लड़के ने मामूली घर की लड़की से शादी करके एग्जाम्पल सेट किया है। लोग तो कहेंगे लड़का इश्क में पड़ गया, शादी करनी पड़ी। जो चीज मना की जाती है ना, वो कुछ ज्यादा ही आकर्षित करती है। अम्मा ने रामराज गुरुजी की लड़कियों से सावधान ना किया होता तो शायद मनु का ध्यान उन लड़कियों की तरफ जाता ही नहीं। पर अब उसे लड़कियों की उपस्थिति का बोध अनायास ही होने लगा। वो मोहग्रस्त नहीं था, लेकिन लड़कियों की बातों में वो कहीं होगा, ये विचार उसे अधीर करने लगा। आंगन पार करके नहाने जाते वक्त उसने सतर्कता तो बरती, लेकिन जानबूझकर लड़कियों की ओर देखने की भी कोशिश की। उसकी नजर लड़कियों पर पड़ने से पहले ही छत पर चढ़े मुनगा तोड़ रहे गुरुजी पर पड़ गई। गुरुजी जोर से बोले, मनु पिताजी ठीक है ना? पिताजी आपको याद कर रहे थे। मनु बोला, अच्छा अच्छा, तुमने मुनगे की कढ़ी खाई है? नीति बहुत बढ़िया बनाती है। मनु चौकन्ना हो गया, लड़की की क्वालिटीज बताई जाने लगी हैं।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है नासमझ। अब तक आपने सुना, मनु की नई नई नौकरी लगी थी और वो अपने पिताजी के दोस्त के घर में ही कमरा लेकर रहने लगा था। उनकी तीन लड़कियां थीं और मनु के घर में उसे अच्छी तरह समझाया गया था कि कहीं उन लड़कियों के चक्कर में ना पड़ जाना और इस बात का भी ध्यान रखना कि कहीं वो माता पिता ही तुम्हें अपनी बच्चियों के लिए फुसलाने की कोशिश ना करें। अब आगे, इधर आंगन में खड़ी रुक्मणी ने आदतन कहा, मुनगा बहुत बढ़िया क्यों ना हो, आपके गुरुजी को सब्जी लाने का झंझट जो नहीं करना पड़ता। मनु, इनका बस चले ना तो हम लोगों को दोनों वक्त मुनगा ही खाना पड़े। वो मुस्कुरा दिया। दोनों लड़कियों का मुस्कुराना भी देखा। गुरुजी पत्नी का कमेंट नहीं सुन पाए और बोले, आज छुट्टी है ना तो होटल में क्यों खाओगे, दोपहर का भोजन हमारे साथ करोगे। मनु बोला, आप परेशान ना हो। तो रुक्मणी तुरंत बोल दी, हम तुमको लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होते। खाना खाते हुए मनु को लग रहा था इस साधारण से घर में कुछ नहीं है, लेकिन कुछ पारंपरिक नियम और तरीके हैं। पीढ़े पर रखी भरी हुई थाली भव्य जान पड़ती है। रुक्मणी चाची आग्रह से खिला रही हैं, छोटी मुस्तैदी से परोस रही है, नीति निधि रसोई से गरम गरम फुलके भेज रही हैं। मनु ने रसोई से आहट सुनी, छोटी अपनी अलड़ता और लापरवाही में तेज बोलती है ना, अब नहीं ले रहे हैं। और तब नीति का स्वर सुनाई पड़ा, क्या एक और लेना पड़ेगा। छोटी फुलका लेकर आई और बोली, एक तो लेना ही पड़ेगा। मनु ने ले लिया। मनी मन सोच रहा था, एक फुलका और के बहाने नीति फतह पाना चाहती है। गुरुजी कहने लगे, बेटा कभी फुर्सत में छोटी को गणित पढ़ा दिया करो, इसकी गणित कमजोर है। पढ़ा दूंगा, मनु बोला। छोटी बीच का दरवाजा खोलकर मनु के कमरे में आ जाती। जब तक पढ़ती दरवाजा खुला रहता, खुले दरवाजे से उधर की गतिविधियों का आभास मिलता। नीति और निधि उधर से गुजरती तो मनु को लगता उसे देखने के लिए दोनों इधर उधर हो रही हैं। हाँ, उसका तो अनुमान बल्कि धारणा ये है कि वो इस परिवार के लिए अट्रैक्शन का सेंटर बनता जा रहा है। उसका प्रेजेंस जबरदस्त बदलाव की तरह है। वो खुद से ही बातें करता रहता तो इस साधारण से घर में कच्चे रूप में एक सपना जन्म ले रहा है जो इन्हें किसी मुकाम तक नहीं पहुंचने देगा। ये मुझे कभी भी नहीं फंसा पाएंगे। फिर मनु ने आंगन की खिड़की से सुना, छोटी कह रही थी, दीदी मुझे तो मालूम ही नहीं था कि गणित इतना इंटरेस्टिंग हो सकता है, मैं मैथ सेक्शन ही लूंगी। नीति और निधि ने हाथ के इशारे से छोटी को धीमा बोलने को कहा। फिर छोटी ने क्या बताया, लड़कियों ने क्या पूछा, वो सब मनु नहीं सुन सका। बस अनुमान लगाता रहा कि लड़कियां उसी से संबंधित बातें जानना चाहती हैं।

101.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है नासमझ। अब तक आपने सुना, मनु अपने पिताजी के दोस्त के घर में रहता था। उनकी तीन बेटियां थीं। मनु बहुत अच्छी नौकरी में था, इसीलिए मनु के घर वालों को ये डर था कि गुरुजी कहीं अपनी लड़कियों के लिए उसे फंसा ना लें। और मनु भी पूरी सतर्कता से रहता था कि ऐसा होने ही ना पाए। अब आगे मनु अनायास ही सोचने लगा, अगर चूज करना हो तो नीति सही होगी या निधि? क्या नीति? क्यों? पता नहीं। निधि क्यों नहीं? पता नहीं। लेकिन इस तरह की बेवकूफी भरी बातें क्यों सोचनी चाहिए, जबकि उसके लिए तो इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। मनु ने किताब उठाई और बिस्तर पर अधलेटा होकर पढ़ने लगा। देखा, पेज 84 पर ऊपरी कोना मुड़ा हुआ है। उसे ध्यान आया कि किताब कई बार अलग जगह पर रखी हुई मिलती है। क्या उसके जाने के बाद लड़कियां उसके कमरे में आती हैं, किताबें पढ़ती हैं? कमरे में नीति आती है या निधि, या दोनों? गुरुजी और छोटी तो दोपहर में स्कूल में रहते हैं, चाची सो जाती होंगी और लड़कियां कमरे में आती होंगी। लड़कियां कुछ तो इशारा करना चाहती हैं। उसके अनुमान को स्टैंप करने के लिए ही पढ़ते समय छोटी अप्रत्याशित रूप से बोल पड़ी, भैया आप मानस का हंस वापस कर आए क्या? नीति दीदी पूरा पढ़ भी नहीं पाई। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारी दीदी बुक्स भी पढ़ती है, मैं फिर से ले आऊंगा। मनु दूसरे दिन शाम को किताब लेकर लौटा तो दूध का पैकेट नीति ने पकड़ाया। मानस का हंस, छोटी ने बताया आप पढ़ नहीं पाई थी। वो समझ नहीं सका उसे ये बात बतानी चाहिए थी या नहीं। नीति की आंखें झपक गईं, जैसे चोरी पकड़ी गई हो। हम लोगों को बुक्स नहीं मिल पाती ना, इसलिए ये पढ़ लिया करिए, बुक्स पढ़ने से बहुत खुशी मिलती है, मनु बोला। मनु फिर अपने मन ही मन सोचने लगा, बुक्स का मामला उलझाना दे, हाँ ये तब तक नहीं होगा जब तक वो खुद इस परिवार में इन्वॉल्व ना हो। अगर कहे तो इस परिवार से उसका इन्वॉल्वमेंट बस इतना भर है कि कई बार पीने का पानी खत्म हो जाता है तो उसे मांगना पड़ता है। आज ही शाम को एक दोस्त आया था, घड़ा खाली था। मनु बाहर वाले दरवाजे से निकल के गुरुजी के अहाते में पहुंचा। वो अपने काम से कुछ बीच वाला दरवाजा इस्तेमाल नहीं करता था। नीति अहाते में थी। मनु बोला, चाची नहीं है, पीने का पानी खत्म हो गया है। नीति बोली, आप चलिए मैं लाती हूँ। निधि स्टील की बाल्टी में पानी लिए हुई बीच वाला दरवाजा खोलकर आ गई। मनु ने उसके हाथ से बाल्टी ली, घड़े में पानी डाला, बाल्टी वापस कर दी। निधि दरवाजा उड़काकर चली गई। निधि दरवाजा उड़काकर चली गई और मनु फिर न जाने क्या क्या मनगढ़ंत बातें अपने अंदर ही बनाता रहा।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है ना समझ। अब तक आपने सुना, मनु अपने पापा के दोस्त के घर में रहता था जिनकी 3 बेटियां थीं। मनु को अच्छी तरीके से उसके परिवार में समझा दिया गया था कि तुम्हारी इतनी अच्छी पोस्ट है और वो साधारण स्तर का परिवार है, कहीं तुम्हें अपनी बेटियों के लिए फंसाने की कोशिश ना करे, सचेत रहना। वहां पे ऐसी कोई खास बात नहीं होती थी, फिर भी छोटी छोटी बातों में ही मनु न जाने क्या क्या सोचता रहता और अपने को पूरी सतर्कता से रखता। अब आगे मनु का फ्रेंड बोला, उधर वो चुप, इधर तुम चुप, तुम लोग आपस में बोलते चालते नहीं हो या इशारों में, ये कला मुझे नहीं आती। मनु बोला, पटा लो। दोस्त बोला, ये कला भी मुझे नहीं आती। मनु ने साफ साफ कहा। तो फ्रेंड बोला, उन लोगों को आती होगी, एक ही जाति, अच्छा परिवार, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, ऐसे लड़के को कोई छोड़ता है क्या? मनु बोला, मैं किसी के चक्कर में नहीं आने वाला। मनु अपने फ्रेंड के साथ बाहर चला गया, फिर रात का खाना खाकर ही लौटा। घर में बिजली नहीं थी, बहुत गर्मी थी। आहट पाकर गुरुजी ने छत से नीचे झांका, ऊपर चले आओ मनु। आया चाचा जी। मनु को छत का खुलापन अच्छा लगा। गुरुजी बोले, आओ बेटा, ये छत हमारे लिए एक नियामत है। बिल्कुल, मनु निवाड़ की खटिया पर बैठ गया। बात शायद शादी ब्याह की चल रही थी, क्योंकि गुरुजी उसी तारतम्य में कहने लगे, मनु तुम लोग दीप्ति के लिए लड़का तलाश रहे हो ना? है एक लड़का, फूड इंस्पेक्टर। मैंने नीति से बात चलाई थी, लेकिन हमारा और लड़के वालों का गोत्र एक ही है, इसलिए शादी नहीं हो सकती। दीप्ति के लिए चर्चा की जा सकती है। प्रपोजल तो अच्छा है, कहते हुए मनु ने अनायास नीति की ओर ताका। शादी की चर्चा पर वो कैसा महसूस कर रही है, अंधेरे में उसकी दशा ना जान सका, लेकिन इतना तो समझ में आया कि वो उसे ही देख रही थी और अब आंखें झुका ली हैं। क्या नीति उसके प्रति कुछ अलग भावना रखती है? तब तक बिजली आ गई। मनु अपने कमरे में चला आया। अगर दीप्ति की शादी यहां तय हो गई तो इस परिवार का एक उपकार हो जाएगा, और फिर ये परिवार क्या दबाव बना रहा है, उसे घेर रहा है। गुरुजी नीति या निधि का प्रस्ताव रख दें तो ठीक से मना करना भी मुश्किल हो जाएगा। ये कैसी व्यूह रचना है? कोई 2 दिन को आ जाए तो लोगों को अड़चन होती है, लेकिन ये परिवार उसे बिना पैसों के रख के खुश हो रहा है। पक्का ये कोई ना कोई सपना पाल रहे हैं। हर मेंबर, हाँ छोटी भी, अपने लेवल पर कोशिश कर रही है कि सपना पूरा हो। रामराज जी गुरुजी द्वारा बताए गए फूड इंस्पेक्टर लड़के के साथ दीप्ति की शादी की डेट निकल आई। मनु छुट्टी लेकर घर गया। गुरुजी ने कहा, शादी में पहुंचेंगे। नहीं पहुंचे। मनु वापस लौटा तो गुरुजी ने उसे गुड न्यूज दी। मनु, आयोजन अच्छा रहा ना, मैं पहुंच नहीं सका। उन्हीं दिनों नीति को देखने लड़के वाले आ गए थे। वो लड़की देखने के इरादे से आए थे, पर उन्हें नीति इतना भा गई कि यहीं से बाजार से साड़ी अंगूठी खरीद कर रिश्ता पक्का कर दिया। लड़का ग्रामीण बैंक में ब्रांच मैनेजर है। इसी व्यस्तता से मैं पहुंच नहीं सका। मनु के लिए ये खबर एकदम अनएक्सपेक्टेड थी। उसे तो हथियाने का इन्होंने विचार ही नहीं किया। ये परिवार उससे इम्प्रेस्ड नहीं है,
इन लोगों को उसका एक भी गुण दिखाई नहीं दिया, तो ये लोग उसके प्रति इतना प्यार क्यों रख रहे थे? कैसे? मनु को लगा ठीक इसी पल वो पूरी तरीके से अयोग्य, अकर्मण्य, अक्षम साबित हुआ है। इस लायक भी नहीं कि किसी मामूली परिवार की लड़की के दिल में अपने लिए ललक जगा सके। लगा ये लोग उसे अनदेखा कर रहे हैं। नहीं, अनदेखा नहीं, बल्कि उपेक्षित, अपमानित, खारिज ही कर दिया। वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। पूरी तरह हर्ट होकर अपने कमरे में चला आया। बहुत से सीन उसके सामने आए। फ्री में रहना, मुनगे की कढ़ी, गुलगुले, हलवा, प्यार, सपोर्ट, सौहार्द। इसकी भलमन साहब किसी फल प्राप्ति के लिए नहीं थी, बल्कि उस आत्मीयत के लिए थी जो इनके दिलों में, इनके संस्कारों में है। उसे दम घुटता जान पड़ा। उसने खुली हवा पाने के लिए आंगन की खिड़की खोल दी। सामने नीति थी, छत पे कुछ काम कर रही थी। नीति पूरी

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी नासमझ। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट कर सकते हैं। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: कुछ याद आया? इस सॉन्ग से आपको कुछ तो याद आया होगा। जी हाँ, वक्त हो चुका है आपके अपने वाले शो का, जिसका नाम है भूले बिसरे की। आज हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं उस ऐसे शख्सियत की जिनका नाम है गुलजार। हाँ, गुलजार साहब की, जिनके खाली नाम से ही अपने आप में ही कोई पोइट्री हो, शायरी हो या फिर कोई मतला हो, गुलजार हो जाता है।
1: मैंने

गुलजार, जिनका असली नाम संपूर्ण सिंह कालरा है, गुलजार तो इनका उपनाम है, एक प्रसिद्ध हिंदी कवि, गीतकार, पटकथा लेखक और फिल्म निर्देशक हैं, जिनका जन्म 18 अगस्त 1934 को हुआ था।

जिन्होंने स्लमडॉग मिलेनियर फिल्म के गीत जय हो के लिए ऑस्कर और ग्रैमी पुरस्कार भी जीता था। इसके अलावा ना जाने कितने ही पुरस्कार उनके नाम हुए और ना जाने कितने संगीतों ने प्राण पाया इनकी बदौलत, इनकी लेखनी की बदौलत, इनकी कला की बदौलत, और ये किसी भी प्रसिद्धि या पहचान के मोहताज नहीं है। तो आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं गुलजार साहब की। इससे पहले कि इनके बारे में मैं और आपको बताऊं, चलिए इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ ये सॉन्ग एंजॉय करते हैं।

अब मैं आपको बताऊंगी एक छोटी सी, हाँ जी, किस्से के बारे में। एक फिल्म बन रही थी जिसमें शेखर कपूर ने गुलजार साहब से कहा कि बच्चों के ऊपर एक गाना चाहिए। तो गुलजार साहब ने कहा ठीक है, और ऐसा कह के उन्होंने गाना लिखकर दे दिया। शेखर कपूर साहब को मजा नहीं आया, वो बोले कि नहीं, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था, आप इसको रख लीजिए। गुलजार साहब ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। ये बात पता चली शबाना आजमी जी को। उस समय शबाना आजमी का स्टेचर बहुत बड़ा था। शबाना आजमी गई शेखर कपूर जी के पास और उन्होंने उन्हें डांट लगाई। वे बोली आप उस आदमी से बच्चे के मामले में ना डोंट टीच हिम, वो आदमी जो कुछ भी दे रहा है ना चुपचाप लीजिए और अपनी फिल्म में डाल दीजिए। अब भाई शेखर कपूर जी फिल्म डायरेक्टर थे, वो थोड़ा लोड में आ गए। बोले कि यार मेरे फिल्म की हीरोइन ऐसा बोल रही है, अब तो करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। उन्होंने सॉन्ग लिया और फिल्म में डाल दिया। फिल्म का नाम है मासूम और गाने के बोल है लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा दौड़ा दौड़ा घोड़ा, दुम दबा के दौड़ा। उस वक्त से आज तक हर बच्चा इस सॉन्ग को सुनकर बड़ा हुआ है। ये है हमारे गुलजार साहब का असर, ये है हमारे गुलजार साहब।

दोस्तों, गुलजार साहब के कुछ पसंदीदा वर्ड्स हैं, जैसे अर्थात और एवं। जब गुलजार साहब से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपके हिसाब से गाना कब होता है फिल्म में, तो गुलजार साहब ने बताया कि वो कैसे नेचुरली एक एक सीन से एक गीत की ओर जब जाते हैं तो उसमें कुछ अपनी पसंद होती है और कुछ आपकी पसंद होती है, इस तरह से एक गाना बनता है। जैसे राम लक्ष्मण निकले और चले गए, बेटी लिए हुए एक विधायक आया और उसने कहा अर्थात और कह के गाना शुरू किया, तो उन्हें वो अर्थात कहने का बड़ा शौक है। तो गाना बनना उनकी पसंद पर डिपेंड करता है, जो जैसा सिचुएशन हो और जैसी डिमांड हो। तो गुलजार साहब ने बताया कि मैं गाने से लेकर गुजरूंगा और गाने में कोई कहानी का किस्सा या हिस्सा बना लूंगा, या कोई मिसला दे दूंगा, या फिर पोइटिक मेटाफर और सिमिलीज का यूज कर लूंगा। उनका कामयाब होना ना होना वो अलग विषय है, फिलहाल मैं गाना ऐसे ही बनाता हूँ। फिर उनसे कहा गया कि आपको एवं भी तो बहुत पसंद है, ये जो शब्द है। उनका हंसकर जवाब था कि एवं ही तो बनाई है इतनी सारी फिल्में, तो चलिए हम भी एक और गाने का आनंद उठा लेते हैं गुलजार साहब द्वारा रचित।

अब थोड़ी सी और बात कर लेंगे हम गुलजार साहब के बारे में। गुलजार का जन्म ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है, और वे एक सिख परिवार से थे। फिल्मों में गीत लिखने का उनका सफर एसडी बर्मन की फिल्म बंदिनी, जो कि 1963 से शुरू हुई थी, जो कि 1963 में आई थी, से शुरू हुई थी। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों के लिए पट कथाएं और संवाद लिखे, जैसे आनंद, आंधी और मौसम। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2002, पद्म भूषण 2004 में और सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए ऑस्कर और ग्रैमी पुरस्कार 2009 से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें स्लम डॉग मिलेनियर के लिए जय हो गाने के बोल लिखने के लिए कई अन्य पुरस्कार भी मिले हैं। इनके अलावा भी और भी कई सारे पुरस्कार इनके नाम हैं। वे अपनी गहरी और मार्मिक कविताओं और गानों के लिए जाने जाते हैं, जैसे मोरा गोरंग लैले मुहे श्याम रंग दे दे। उन्होंने मेरे अपने, आंधी और मौसम जैसे फिल्में निर्देशित भी की हैं। साथ ही साथ उन्होंने दूरदर्शन के मशहूर सीरियल जंगल बुक के लिए भी संवाद लिखे हैं। इसके अतिरिक्त इनका साहित्यिक योगदान भी रहा है। गुलजार साहब ने हिंदू, उर्दू, पंजाबी भाषा में कई कविताएं और गजलें लिखी हैं। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं का बंगाली से हिंदी में अनुवाद भी किया है। वे त्रिवेणी छंद के सृजक भी माने जाते हैं। तो इस तरह का कुछ सफर है हमारे गुलजार साहब का, और इस सफर को हम और आगे लेके चलेंगे इस गीत के माध्यम से।

श्रोताओं, अब मैं आपको गुलजार साहब के द्वारा लिखे गए गानों के कुछ कहानियां बताऊंगी, जिसमें से सबसे जो आला वाला मानती मैं ये सॉन्ग है, क्योंकि ये हर एक इंसान के दिल को छू लेता है। वो है, तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। क्या बात है, क्या गीत है, क्या शब्द है, क्या शब्दों का चयन है इस मूवी के इस सॉन्ग का, जिसका नाम है आंधी, जो आई थी 1975 में। इस गाने को लिखते वक्त गुलजार साहब ने अपनी निजी जिंदगी के दर्द को कागज पर उतारा। उनका कहना है कि रिश्तों में टूटने के बावजूद प्यार कहीं खत्म नहीं होता। ये गाना दरअसल उनके और राखी जी, जिनसे उनका वैवाहिक रिश्ता था पर साथ नहीं रह पाया, की हकीकत से जुड़ा हुआ माना जाता है। तो आइए आनंद लेते हैं इसी गीत का।

अब बात करूंगी मैं आपसे फिल्म इजाजत की, जो आई थी 1987 में, और उसका वो फेमस सॉन्ग जिसकी शुरुआत में ही मैंने आपसे चर्चा की थी, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। ये गाना गुलजार साहब ने असल में एक चिट्ठी से बनाया था। उन्होंने राखी जी को एक बार ऐसा खत लिखा था जिसमें उन्होंने बिखरी हुई छोटी छोटी चीजों का जिक्र किया था। बाद में यही चिट्ठी गाने का रूप ले गई। ये गाना आज भी रिश्तों की गहराई को सबसे नाजुक अंदाज में बयां करता है। आइए इस बयाने संगीत को, इस बयाने सॉन्ग को हम भी सुनते हैं और इसका लुत्फ उठाते हैं।

अब एक और गाने की कहानी आपसे बताती जो कि गुलजार जी ने ही लिखी थी। फिल्म है मौसम, जो कि आई थी 1975 में। गाने के बोल हैं, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। कश्मीर की वादियों में शूटिंग के दौरान गुलजार साहब ने देखा कि वहाँ की खामोशी और सुकून इंसान के दिल को ठहरने पर मजबूर कर देती है। उसी अनुभव से ये गाना जन्मा। दरअसल ये उनकी खुद की फुर्सत की तलाश का प्रतीक भी माना जाता है और हर इंसान कहीं ना कहीं इस सॉन्ग से एक जुड़ाव महसूस करता है। तो चलिए हम भी कुछ पल के लिए ही सही इस सॉन्ग से जुड़ जाते हैं।

अब एक और गाने की कहानी आपसे साझा करती हूँ, जो कि गुलजार साहब की है। आने वाला पल जाने वाला है। अच्छा, कितनी बड़ी सच्चाई है ना इस छोटे से टुकड़े में, हाँ इस लाइन में। आने वाला पल जाने वाला है, मतलब कोई भी समय किसी के लिए रुकता नहीं, बस उस पल में हम कितना रुक के अपनी यादें बना लेते हैं, अपना उस पल को बना लेते हैं, ये जानने की बात होती है। फिल्म गोलमाल 1979 की मूवी। ये